0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: Good morning in the night, my little Roshans. Welcome to a brand new edition of Mirchi Insta Pyar on this Thursday. और आज मैं आपको एक शब्द सिखाने वाली हूँ और उसका अर्थ भी consequently. शब्द है blind spot. अर्थ है वो जगह जो more often than not लोगों को नजर नहीं आती है. सामने ही होती है लेकिन लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि आगे कुछ है पीछे कुछ है. और ब्लाइंड स्पॉट एग्जैक्टली वह ही जगह होती है जहां आप और आपके पार्टनर छुप छुप के मेकआउट करते हो, मोस्ट ऑफन द नॉट इन पब्लिक. अब मेरा आपसे सवाल मीठा मीठा ऑन दिस थर्सडे इवनिंग है, कभी किया है आपने ऐसे ब्लाइंड स्पॉट में मेकआउट जहां पकड़े जाने का रिस्क इज 100%, बट अगर रिस्क नहीं लिया तो प्यार क्या किया? अगर आपको भी ऐसी फीलिंग्स होती हैं, व्हाई डोंट यू हिट मी अप डार्लिंग इंस्टा पर या FB पर. एंड व्हाइल यू डू दैट, कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यहीं है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
1: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
0: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
2: Inefficient,
3: very complex,
4: clumsy or
5: confusion ही confusion.
1: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ. अपने business के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं. Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR. काम अनेक, software एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
6: जय गुरुदेव. अवसर आवीने उभो छा आंगणे. चलो भेगा मळी गणेश जी ना आगमन नी तैयारी करिए. आपणे गायत्री चेतना सेंटर ना गणेश उत्सव मा जोडायो, जेमा
7: 13 सप्टेम्बर रविवार
6: सांजे 4 वागे थशे गणेश स्थापना, अने सांजे 7 वागे थशे गणेश आरती, अने 20 सप्टेम्बर सांजे 4 वागे विसर्जन. वधु माहिती माटे कॉल गायत्री चेतना सेंटर विस्काटवे ऑन 7323578200. जय गुरुदेव.
8: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
9: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
8: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
9: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन.
10: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए. आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर. बाय नाउ एंड पे लेटर. आरके ज्वेल्स,
11: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
12: कंडीशंस अप्लाई.

0: only on 92.7 FM Radio Mirchi New Jersey. It's hot.
1: आप ना मतलब बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग और नॉटी टेक्स्ट लिखते हो जो पब्लिश भी हो जाते हैं और आपके पास एक ब्लॉग भी है उसके बारे में, लेकिन आपके बॉयफ्रेंड को इसके बारे में कोई इल्म है नहीं, बेचारे को कोई आइडिया नहीं है, ऐसे गंदे काम.
0: द सीक्रेट बॉक्स.
1: गंदे तो नहीं है, बट लाइक आई एम सेइंग दैट योर बॉयफ्रेंड शुड नो द होल ट्रूथ अबाउट यू, राइट? बट अगर आप उसके साथ शेयर नहीं करना चाहते कि आप कैसे इंसान हो, यू कैन डू इट हियर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी. टाइम फॉर द कन्फेशन बॉक्स, एज यू जस्ट हर्ड. नाम की स्पेलिंग ROCHIE. तो जल्दी से मुझे इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर अपना नंबर और कन्फेशन भेज दो, एंड आई कॉल यू लाइक आई कॉल माई मिस्ट्री कॉलर. हाई नॉटी गर्ल.
2: हाई रोशी,
1: हाउ आर यू?
2: Very good. How are you?
1: Actually, आप गुड से भी बेटर हो, क्योंकि आपने मुझे जब अपना कन्फेशन भेजा ना, तो आई वॉज लाइक कि ये क्या इंसान है, इसका दिमाग कितना खुराफाती है, लाइक इट्स अ लेजिटिमेटली डर्टी माइंड यू गॉट.
2: अब परेशानी है रोशी, परेशानी का सलूशन तो निकालना पड़ेगा ना.
1: और ऐसे देखो कैसे, तो एक्चुअली ओके ठीक है, तो हुआ क्या, लाइक स्टार्ट से बताइए मोहतरमा. स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट.
2: स्टार्ट वहाँ से हुआ कि एक गलत स्वाइप हुआ.
1: हाँ.
2: फिर मैंने सोचा चांस दे देते हैं.
1: हाँ.
2: But clearly not all men deserve a second chance.
1: हाँ, correct.
2: There were too many outbursts, हर बार का निखरे.
1: हाँ.
2: बाहर जाके सीन क्रिएट करना. तो अब विदाउट क्रिएटिंग टू मच ऑफ हैसल, इस प्रॉब्लम को अपनी लाइफ से कैसे हटाओ. तो मैंने सोचा एक आइडिया कि मैं अपने इस डेट को एक अपनी US की रिटर्न फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करूंगी.
1: अच्छा.
2: And this was between her and me. So we decided, she sent him a text. She started flirting with him. He was a little interested. So he flirted back, which she of course told me. And after that, she very clearly asked him if he's seeing someone or not. Obviously, we were seeing each other. He would not tell me that he's flirting with someone else. So she gave him an ultimatum that it's either me or this girl that you're dating. He decided to break up with me. Meri friend chali gayi ek hafte baad US aur problem life se bahar.
1: किस तरह के इंसान हो आप कि आपका दिमाग इतना स्मार्ट कैसे चलता है कि लाठी भी टूट जाए और सांप भी ना. व्हाट एम आई सेइंग कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, है ना?
2: लाठी भी ना टूटे.
1: बेब यू आर सो क्लेवर. आपको तो मतलब मैं रोशिफिकेशन के साथ साथ अपना दिल भी देना चाहती हूँ. विल यू बी एक्सेप्टिंग बोथ ऑफ देम?
2: यस एब्सोल्युटली.
1: ले ले बेबी.
3: यू हैव बीन रोशिफाइड.
1: यू आर अमेजिंग. I mean, I don't know. I'm sure you hear that a lot, but you are amazing. आपसे बात करके ना इतना refreshing feel हो रहा है, जैसे मैंने अभी बस नींबू पानी पी लिया हो.
2: इस गर्मी में नींबू पानी जरूरी है.
1: Actually, इस गर्मी में नींबू पानी जरूरी है. And like to let all of your secrets out so that you feel better about life. तो ऐसे ही मेरी मिस्ट्री कॉलर की तरह अगर आपकी भी जिंदगी में कोई कन्फेशन है, feel free to hit me up Insta पर या FB पर. मेरा नाम छे मिर्ची रोशी. काम छे आपसे प्यार करना. नाम की स्पेलिंग ROCHIE. So do whatever you have to do. लेकिन कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यहीं है आना. सुनते रहो मिर्ची. It's hot.

0: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
1: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
0: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
1: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
0: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
2: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
3: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
2: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
4: Oh no!
1: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
5: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
6: मोदक से लेकर लड्डू तक इस गणेश चतुर्थी हर स्वीट और स्वीट विशेष का भोग चढ़ेगा सिर्फ राजभोग के यहाँ से। राजभोग विशेष यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी। ऑर्डर्स ऑन राजभोग.com और विजिट योर लोकल ग्रोसरी स्टोर।
7: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए। आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर, बाय नाउ एंड पे लेटर। आरके ज्वेल्स,
8: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
9: कंडीशंस अप्लाई।
10: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
11: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
10: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. It's hot.

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई। यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बात देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपने अपनी कालीन अब चद्दर बिछा कर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खून रेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ई भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक कॉल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो। हैं ई का भौकाल मचाए मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां भूलना मत, हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3.5 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
0: जीतूराज Only on Mirchi, it's hot.
2: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
3: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी।
4: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन
5: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
4: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
5: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन।
6: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए। आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर, बाय नाउ एंड पे लेटर। आरके ज्वेल्स,
7: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
8: कंडीशंस अप्लाई।
9: तेरा क्या होगा कालिया?
10: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
9: अब मिर्ची खा।
11: Radio Mirchi, it's hot.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: जब भी हम किसी पार्टी पर जाते हैं और मेरे बॉयफ्रेंड को अटेंशन नहीं मिल रही होती है, मेरा बॉयफ्रेंड ऐसे बोलता है कि उसकी तबीयत बहुत खराब है और हमें चले जाना चाहिए, बिकॉज नहीं तो ही विल थ्रो अप एंड ही एक्सपेक्ट्स दैट आई विल लीव विद हिम. पहले दो तीन बार तो मुझे लगा कि इट वॉज जेन्युइन, बट वो हर बार ये करता है व्हेन ही इज नॉट द सेंटर ऑफ अटेंशन. अब क्या करूं मैं इसके बारे में?
2: रोशी के डीएम से
1: नीलाक्षी ने मुझे ये मैसेज लिखकर भेजा है. नीलाक्षी, स्वीटहार, आई एम रियली सॉरी टू ब्रेक दिस टू यू, लेकिन यू आर डेटिंग अ नार्सिसिस्ट. तो नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी टाइप्स होती है ऐसी हैं कि अगर वो एक ऐसी जगह पर हैं जहां पर उन्हें अटेंशन नहीं मिल रहा होता है या दे फील कि यार हम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, ये एक इमोशनली मैनिपुलेटिव ट्रिक है दैट दे पुल एवरी सिंगल टाइम. और पता है ऐसा भी हो सकता है इन सम सर्कमस्टांसेस कि आप उसका ब्लफ कॉल करने के लिए कहते हो कि हाँ ठीक है तेरी तबीयत अच्छी नहीं है, कोने में बैठ जा, बट घर तो हम तब जाएंगे व्हेन आई डिसाइड. योर पार्टनर कुड एक्चुअली गो टू द लेंथ ऑफ थ्रोइंग अप जस्ट टू मेक यू लुक कि आप एक निग्लेक्टफुल पार्टनर हो. इन दैट सर्कमस्टांस आपको क्या करना चाहिए? यू शुड रीथिंक द इंटायर रिलेशनशिप, क्योंकि आपने तो मुझे सिर्फ इसके बारे में एक फैसेट बताया, बट नार्सिसिस्ट यूजुअली एक रिलेशनशिप में सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं. एंड द बेस्ट इंडेक्स टू लुक एट इज जब आप इकट्ठे होते हो इन अ वेरी रोमांटिक इंटीमेट सेटिंग, क्या वो सिर्फ अपने प्लेजर के बारे में सोचता है और डज ही इवन कंसिडर योर प्लेजर? अगर वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है देन ऑब्वियसली नीलाक्षी यू आर विद अ नार्सिसिस्टिक पर्सन. और अगर आप भी नीलाक्षी जैसे एक ऐसे रिलेशनशिप में हो where you don't think that aapka relationship equal hai, you end up being the giving partner all of the time, then maybe hame baat kar leni chahiye. And to do that you can hit me up insta par ya fb par. Mera naam hai Mirchi Roshi, naam ki spelling hai r-o-c-h-i-e. So do whatever you need to do, hit me up baby, but kahin mat jana jana kyunki wapis to yahi hai aana. Sunte raho Mirchi, it's hot.

0: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
1: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी। स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी।
2: मोदक से लेकर लड्डू तक इस गणेश चतुर्थी हर स्वीट और स्वीट विशेस का भोग चढ़ेगा सिर्फ राजभोग के यहाँ से। राजभोग विशेस यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी। ऑर्डर्स ऑन राजभोग.com और विजिट योर लोकल ग्रोसरी स्टोर।
3: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए। आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर। बाय नाउ एंड पे लेटर। आरके ज्वेल्स,
4: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
5: कंडीशंस अप्लाई।
6: तेरा क्या होगा कालिया?
7: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
6: अब मिर्ची खा।
8: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ऐसा कभी हुआ है इधर आपने एक डेटिंग ऐप डाउनलोड कर लिया, आपको बंदा या बंदी मिल गए एंड देन द फर्स्ट डेट एंडेड अप बीइंग अ डिजास्टर? इफ यस, सेंड मी योर नंबर एंड आई कॉल यू लाइक आई कॉल दिव्यांश. हाय दिव्यांश.
2: हाय रोशी, हाउ आर यू?
1: आई एम वेरी गुड, हाउ आर यू?
2: Well, after this recent disaster with the date, I'm currently just मैं क्या बताऊँ आपको.
1: आपने जो मुझे इंस्टाग्राम पे लिख के भेजा था ना, आई स्वेयर एंड आई हेट टू एडमिट इट, बट मुझे इतनी हंसी आई वो सुन के, बिकॉज मैंने बहुत सारी डेटिंग ऐप स्टोरी सुनी है बट ये स्टोरी अनोखी है. सो एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड?
2: अरे नथिंग, आई जस्ट मेट दिस गर्ल ऑन डेटिंग ऐप एंड हम लोगों की बात चालू हुई. पहले तो बीइंग अ गाय इतना मुश्किल है डेटिंग ऐप चलाना, क्योंकि जो आपको लड़की पसंद है वो आपको नहीं लाइक बैक करती, जो आपको लड़की नहीं पसंद वो लाइक बैक कर देती, लेकिन फिर उसके बाद अगर आपके पास प्रीमियम फीचर ना हो तो फिर आप बस उसी ख्वाहिशों में खोए जाओ कि कब आपके पास वो लकी नंबर आएगा कि आपने राइट स्वाइप मारा और बिल्कुल मैच हो गया. बट थैंकफुली आफ्टर लॉट ऑफ अटेम्प्ट्स फाइनली हुई, फिर हमारी बात हुई एंड वी डिसाइडेड कि चलो ठीक है, टॉकिंग स्टेज से थोड़ा हो गया, 12-1 बज गए, बहुत अच्छे से बातें कर ली, गुड नाइट गुड मॉर्निंग भी हो गया, तो अगले दिन मिलते हैं और मिलने का प्लान भी मेट इन दिल्ली. बट क्या क्या निकली रोशनी, में क्या बताऊं, मतलब एटलीस्ट कुछ तो. अब उसने बायो में लिखा था शी इज 5'5", नाउ बीइंग 6 मुझे वो लगा शी इज नॉट इवन 4.
1: छोटी टिग्गी.
2: क्या हुआ, अपना हम लोगों ने बात बात करी, उसने अपने बताया था शी इज अ मॉडल एंड ऑल, ठीक है, शी वॉज वेरी प्रोमिनेंट अबाउट अ वर्क एंड ऑल, बट द कॉन्वर्सेशन बीच में इतनी ढीली सी हो गई थी दैट आई जस्ट वांटेड टू एस्केप. सो मैंने अपने भाई को बोला कि प्लीज बोल घर में कुछ इमरजेंसी और मेरे को कॉल कर. देन वो मोमेंट आया जल्द से जल्द, अब वो पूरा हाई हेलो हो गया, फिर मैंने वो थैंक यू एक नोट होता है ना, जस्ट बीइंग अ जेंटल कर्टसी की थैंक यू सो मच, इट वाज फन मीटिंग यू, ये वो. फिर दो तीन बारी हमारे बातें और चली. अब उसके बाद उसने बोला लेट्स मीट अगेन. मेरे अंदर अब हिम्मत नहीं थी, मैंने उसे बोला कि देखो लेट्स जस्ट बी फोरफ्रंट, इट्स ओके, आई मीन दिस वाज माय फर्स्ट टाइम यूजिंग अ डेटिंग ऐप एंड लेट्स जस्ट इसको मतलब आगे आई डोंट वांट टू कंटिन्यू दिस. थोड़ा मैंने हम्बल वे में चीज बोल दी उसका. पहले तो मतलब जैसे मेरे ब्लूटूथ थैंकफुली ऑन थे इस बारे में और उसके भी ऑन थे क्योंकि मुझे दिख रहा था, तो उसने पहले आधे घंटे रिप्लाई के लिए, मैं यार इतना गंदा मैसेज कर दिया, मैंने दो तीन दोस्तों को दिखाया, उसने बोला नहीं यार ठीक है. आधे घंटे बाद मेरे को डायरेक्ट बिल का वो आता है कि प्लीज प्लेस दिस अमाउंट, मैंने आपको एक वो भेजा है कि मतलब यू हैव टू पे दिस अमाउंट इंक्लूडिंग द डेजर्ट. आई वाज लाइक व्हाट द. तो उसके बाद से तो मतलब अब डेटिंग तो अब थोड़ा ऐप में तो नहीं करेंगे, आप फिर देखते हैं.
1: वन ऑफ द फनीएस्ट पीपल एवर. And I really hope कि आपके साथ अब कुछ अच्छा हो. Misadventure की जगह
2: अब आपका कॉल आ गया, इससे ज़्यादा क्या ही अच्छा होगा, आप भी मेरे साथ बाहर चल रहे काम करो.
1: इट वॉज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू दिव्यांश. अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसी ही कोई भाषण है विच इज रिलेटेड टू डेटिंग ऐप, दिस वॉज रियली क्यूट. आई डोंट नो स्टिल इफ आई विल गो आउट विद दिव्यांश और नॉट, वी विल स्टिल सी. मैंने उसको होल्ड पे रखा है, लेकिन अगर आपके पास कोई स्टोरी है हिट मी अप विद इट ऑन इंस्टा या FB, वी विल गेट टॉकिंग. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो व्हाइल यू फाइंड मी ऑन इंस्टा या FB, कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर, बाय नाउ एंड पे लेटर। आरके ज्वेल्स,
1: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
2: कंडीशंस अप्लाई। अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com। बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
3: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
2: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
4: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
2: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
5: एक ही होता है।
2: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए। आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर, बाय नाउ एंड पे लेटर। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
0: कंडीशंस अप्लाई।

करती है तू अक्सर, पूरी कयामत होगी ना छोड़ी है कोई कसर। Top to bottom marks, तुझे दिए मैंने 10 out of 10। क्यों नहीं चाहिए, चल ओके देन। भरे क्लब में रह जाएगी बिल्लो, फिर कल ली तू कौन संभालेगा तुझको जब हो

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: मेरे हिसाब से रोशी थ्योरी नंबर 454 ये है कि दुनिया में दो तरह के प्लेयर्स होते हैं. एक तो वो एफ बॉयज जो दूर से ही एफ बॉयज लगता है कि आपको पता है कि भाई दिस इज अ पर्सन यू कैन हैव अ ग्रेट टाइम विद एक रात के लिए, पांच रातों के लिए, बट छठी रात के बाद इसके साथ सपने नहीं देखने बिकॉज दिस का इज गोइंग टू डिसअपियर ऑन यू. लेकिन दूसरी तरह का जो प्लेयर होता है ना वो इतना प्यारा, इतना अमेजिंग, सॉफ्ट हार्टेड, इनोसेंट लगता है कि हर बार उसे देख के आपको लगता है कि यार He cannot be an F boy. कितना शरीफ लड़का है, इसके अंदर तो संस्कार हर जगह से छलक रहा है. लेकिन वो ही तो उनका प्लेइंग कार्ड होता है. They look so cute and so sweet and so gentle that ना चाहते हुए भी आपका उन पर दिल आ जाए. आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक पर्सन इन माई ऑफिस जो दूसरी तरह का प्लेयर है. जितनी बार उसकी शक्ल देखती हूँ बाई गॉड उस पर दिल आ जाता है. फिर मुझे पता चलता है कि इतना स्कैंडल है ऑफिस में उसके बारे में ऑलरेडी. आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट स्कैंडल, बट इफ यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, व्हाई डोंट यू हिट मी अप एंड वी विल कंपेयर नोट्स अबाउट इट. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो हिट मी अप बेबी, लेट्स गेट गॉसिपिंग एंड व्हाटएवर यू डू. कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: जब मैं छोटी थी ना तो मुझे ऐसा लगता था कि प्यार दो तरह के होते हैं। एक तरह का प्यार वो जिसके लिए आप किसी को भी मार दो, और दूसरे तरह का प्यार वो जिसके लिए आप कभी भी किसी भी वक्त मर जाओ। लेकिन एज लाइफ ग्रू लॉन्गर एंड आई मेट मोर पीपल एंड लव मोर पीपल, मुझे ये एहसास हुआ कि एक तरह का प्यार और होता है, और वो प्यार वो होता है जिसके लिए आप जीना चाहते हो। आप चाहते हो कि आपकी उम्र लंबी हो, आप चाहते हो कि आप उस इंसान की हर खुशी, हर माइलस्टोन देखो, आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी लंबी गुजरे उसका हाथ पकड़ के, आप चाहते हो कि जब आप अपनी आखिरी सांस लो आफ्टर लॉट्स ऑफ ईयर्स ऑफ लिविंग टुगेदर, वो उस इंसान की आंखों के सामने हो। और अगर आपको भी इस तरह के प्यार का एहसास हो गया है, देन आई टोटली थिंक वी शुड टॉक अबाउट इट। ऑब्वियो आई एम गेटिंग वेरी रोमानी अबाउट लव टुडे। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है RocHIE। फाइंड मी ऑन द ग्राम और फेसबुक, एंड व्हेन यू डू दैट अपने प्यार की स्टोरी जरूर लिखना। एंड व्हाइल यू डू दैट कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. It's

0: only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: आप ना मतलब बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग और नॉटी टेक्स्ट लिखते हो जो पब्लिश भी हो जाते हैं और आपके पास एक ब्लॉग भी है उसके बारे में, लेकिन आपके बॉयफ्रेंड को इसके बारे में कोई इल्म है नहीं, बेचारे को कोई आइडिया नहीं है ऐसे गंदे काम.
0: द सीक्रेट बॉक्स.
1: गंदे तो नहीं है, बट लाइक आई एम सेइंग दैट योर बॉयफ्रेंड शुड नो द होल ट्रूथ अबाउट यू, राइट? बट अगर आप उसके साथ शेयर नहीं करना चाहते कि आप कैसे इंसान हो, यू कैन डू इट हियर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी. टाइम फॉर द कन्फेशन बॉक्स, एज यू जस्ट हर्ड. नाम की स्पेलिंग ROCHIE. तो जल्दी से मुझे इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर अपना नंबर और कन्फेशन भेज दो. एंड आई कॉल यू लाइक आई कॉल माई मिस्ट्री कॉलर. हाई नॉटी गर्ल.
2: हाई रोशी,
1: हाउ आर यू?
2: Very good. How are you?
1: Actually, आप गुड से भी बेटर हो, क्योंकि आपने मुझे जब अपना कन्फेशन भेजा ना, तो आई वॉज लाइक कि ये क्या इंसान है, इसका दिमाग कितना खुराफाती है. लाइक इट्स अ लेजिटिमेटली डर्टी माइंड यू गॉट.
2: अब परेशानी है रोशी, परेशानी का सलूशन तो निकालना पड़ेगा ना.
1: और ऐसे देखो कैसे. तो एक्चुअली ओके ठीक है, तो हुआ क्या? लाइक स्टार्ट से बताइए मोहतरमा, स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट.
2: स्टार्ट वहाँ से हुआ कि एक गलत स्वाइप हुआ.
1: हाँ.
2: फिर मैंने सोचा चांस दे देते हैं.
1: हाँ.
2: But clearly not all men deserve a second chance.
1: हाँ, correct.
2: There were too many outbursts, हर बार का निखरे.
1: हाँ.
2: बाहर जाके सीन क्रिएट करना. तो अब विदाउट क्रिएटिंग टू मच ऑफ फैसल, इस प्रॉब्लम को अपनी लाइफ से कैसे हटाओ. तो मैंने सोचा एक आइडिया कि मैं अपने इस डेट को एक अपनी US की रिटर्न फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करूंगी.
1: अच्छा.
2: And this was between her and me. So
1: huh.
2: we decided, she sent him a text.
1: Huh.
2: She started flirting with him.
1: Huh.
2: He was a little interested.
1: Huh.
2: So he flirted back,
1: huh.
2: which she of course told me.
1: Huh.
2: And after that,
1: huh.
2: she very clearly asked him if he's seeing someone or not.
1: Huh.
2: Obviously, we were seeing each other. He
1: huh.
2: would not tell me that he's flirting with someone else.
1: Huh.
2: So she gave him an ultimatum that it's either me or this girl that you're dating.
1: Huh.
2: He decided to break up with me. Meri friend chali gayi ek hafte baad US aur problem life se bahar.
1: किस तरह के इंसान हो आप कि आपका दिमाग इतना स्मार्ट कैसे चलता है कि लाठी भी टूट जाए और सांप भी ना. व्हाट एम आई सेइंग कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, है ना?
2: लाठी भी ना टूटे.
1: बेब यू आर सो क्लेवर. आपको तो मतलब मैं रोशिफिकेशन के साथ साथ अपना दिल भी देना चाहती हूँ. विल यू बी एक्सेप्टिंग बोथ ऑफ देम?
2: यस एब्सोल्युटली.
1: ले ले बेबी.
3: यू हैव बीन रोशिफाइड.
1: यू आर अमेजिंग. I mean, I don't know. I'm sure you hear that a lot, but you are amazing. आपसे बात करके ना इतना refreshing feel हो रहा है, जैसे मैंने अभी बस नींबू पानी पी लिया हो.
2: इस गर्मी में नींबू पानी जरूरी है.
1: Actually, इस गर्मी में नींबू पानी जरूरी है. And like to let all of your secrets out so that you feel better about life. तो ऐसे ही मेरी मिस्ट्री कॉलर की तरह अगर आपकी भी जिंदगी में कोई कन्फेशन है, feel free to hit me up इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम छे मिर्ची रोशी. काम छे आपसे प्यार करना. नाम की स्पेलिंग

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: क्या खा लिया
1: सरदार? मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

आई वाज जस्ट थिंकिंग रैंडमली कि पुराने जमाने में कितने रोमांटिक गाने बनते थे कि आजकल पांव जमी पर नहीं पड़ते मेरे, बोलो देखा है कभी मुझे तुमने ख्वाब में उड़ते हुए, और व्हाटएवर. लेकिन आजकल के गाने, वाह वाह मियां का बात करें, इट इज लाइक ड्रॉपिंग योर लोकेशन विदाउट यूजिंग मैप्स. की पनवाड़ी के पीछे वाली पिछली गली में है हमारे सज्जन की कोठरी. सो रोमांटिक नॉट. शायद इसीलिए मैं सिंगल हूँ, क्योंकि अभी भी मेरे रोमांस की जो कंपस की सुई है वो वहां अटकी हुई है कि आजकल पांव जमी पर नहीं पड़ते मेरे. अगर आप भी मेरी तरह एक डाई हार्ड रोमांटिक हो, एंड 2026 हैज डन नथिंग टू चेंज योर परसेप्शन ऑफ लव विच इज रियली ओल्ड फैशन्ड, आई थिंक हमें इसके बारे में कॉन्वर्सेशन कर लेनी चाहिए. एंड टू डू दैट यू कैन हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB. एंड व्हाइल यू डू दैट, जिसके पास लव है बेबी उसके पास सब है, एंड आई लव यू लोड्स.

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Ghana Indie Top 10.
2: Kanika ke saath on Mirchi.
3: Mirchi sun rahe hain aap. Bandi ka naam hai RJ Kanika. It's time for the hottest countdown of the week. This is the Ghana Indie Top 10, only show on Mirchi जहाँ हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों की गिनती हम आपके लिए लेकर आते हैं. हफ्ते के टॉप 10 गानों में दो नई एंट्रीज हैं इस हफ्ते. हम अपना 90s एंड 2000s का कैसेट क्लासिक भी आपके लिए प्ले करने वाले हैं. ऑल दिस एंड मोर एट RJ Kanika on Instagram पर आकर स्टे कनेक्टेड विद मी. कोई गाना बताना है, सजेशन है, बिंदास आके हिट मी अप. शुरुआत करती हूँ इस हफ्ते की विद गाना नंबर 10, बंजारी द आर्टिस्ट का गाना. गाने का नाम है बरसात. दो हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार दिस वीक ऑन गाना नंबर 10. उसके बाद एक नई नवेली एंट्री, हितेन बादशाह का गाना फीचरिंग शर्वी यादव. गाने का नाम ही है बैंगर. दिस न्यू बादशाह ट्रैक डेब्यूज दिस वीक ऑन गाना नंबर 9. ये दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. वती का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 10.

Yeah. भाई तेरा बस लिखता गाने हर दुनिया देती ताने बस इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

0: It's your boy.
1: बादशाह की आवाज फीचरिंग शर्वी यादव, हितेन का प्रोडक्शन, गाने का नाम ही है बैंगर. दिस सॉन्ग डेब्यूज दिस वीक ऑन गाना नंबर 9. एक गाने को बैंगर से वोकलिस्ट नहीं बल्कि प्रोड्यूसर बनाता है अपनी बीट से. इट्स टाइम टू मीट दिस बैंगर प्रोड्यूसर.
2: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
1: Hello, hello. This is the Ghana Indie Top 10. Baddi ka naam hai RJ Kanika. Connect with me Instagram par. Follow kare. Mera handle is @RJKanika. Koi gana share karna hai, baatein batani hai, bindas aake hit me up. Pichle 6 saal se jitne gaane Badshah ke is show par debut karte hain, jo main aur aap sunna band nahi kar paate hain, un gaano mein ek naam common hota hai. Wo naam hai Hiten ka. हितेन इज अ सुपरस्टार प्रोड्यूसर जो बहुत रिपीटेडली बादशाह के साथ काम करने लगे हैं. बट अगर मैं उनका डिस्कोग्राफी देखना शुरू करूं तो इट्स नॉट जस्ट कि वो बादशाह के फेवरेट प्रोड्यूसर हैं. उन्होंने किंग के साथ, एमसी स्क्वायर, पैराडॉक्स, रफ्तार जैसे आर्टिस्ट के साथ गाने प्रोड्यूस करे हैं. तो फिर सोचने वाली बात ये है दैट हम प्रोड्यूसर पे इतना ध्यान क्यों नहीं देते हैं. बीट तो वही बना रहे हैं. उस पूरे गाने को पैकेज करना इस वे में दैट मैं और आप उसे सुनना बंद ना कर पाए, दैट इज द प्रोड्यूसर इन द हाउस. एंड हितेन डिजर्व्स द बिगेस्ट स्पॉटलाइट. साल 2017 में दैट क्रिंज पॉप सॉन्ग बाय ढिंचैक पूजा, सेल्फी मैंने ले ली आज, वो इतना डाइजेस्टेबल वायरल गाना बना था बिकॉज हितेन ने उस गाने का मिक्स बनाया. वहां से लेके अब तक वो किसी एक लेन में स्टिक नहीं करे. बादशाह का गाना अवारा प्रोड्यूस किया एंड उसके बाद बादशाह की पूरी एल्बम एकता राजा इज बीन प्रोड्यूस्ड बाय हितेन, जिसमें करण औजला के साथ गाने हैं, अरिजीत सिंह एंड बादशाह का सोलमेट. This gorgeous song is produced by Hiten. And what's so amusing about all of this is कि वो किसी भी म्यूजिकल बैकग्राउंड से नहीं आते, पंजाब को बिलोंग करते हैं. उन्होंने प्रोडक्शन अपने घर पे वीडियोस देख के हाउ टू मेक बीट्स एक्चुअली सर्च करके सीखना शुरू किया, लोगों को रीच आउट करके फेसबुक पे, प्रॉपर DIY प्रोड्यूसर. पर अपने करियर में वो अपना सबसे बड़ा पिवट पॉइंट ये वाला गाना मानते हैं. साल था 2021, बादशाह ने हितेन को एक इंस्टाग्राम रील भेजी एक वॉइस नोट के साथ कि यार कुछ बीट बनाना इस पे. दिस वायरल ऑडियो बचपन का प्यार जो हर जगह चल रहा था, हितेन ने 30 से 40 मिनट में पूरा ऑडियो बनाया, भेज दिया बादशाह को एंड रेस्ट इज हिस्ट्री. द सॉन्ग ब्लू अप लाइक क्रेजी. सो इन अ वे इसीलिए हितेन कहीं ना कहीं बादशाह को अपना गाइड मानते हैं, मोर देन एन आर्टिस्ट जिनके साथ वो काम करते हैं. बट माई फेवरेट क्वालिटी अबाउट हितेन एज अ प्रोड्यूसर इज दैट ही लेट्स अ सॉन्ग बी. वो गाने को सांस लेने देते हैं एंड दैट्स व्हाई ही इज द चोजन प्रोड्यूसर फॉर बादशाह, किंग. काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है वो गाना भी इज व्हाट इट साउंड्स लाइक बिकॉज ऑफ इट्स प्रोड्यूसर. गाना संजू राठौड़ का है पर उसके प्रोड्यूसर हैं जी स्पार्क, जिन्होंने गुलाबी साड़ी भी प्रोड्यूस किया था संजू के साथ. हम रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. संजू राठौड़ की आवाज में जी स्पार्क की प्रोडक्शन. गाने का नाम है बैंगल्स. 13 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. बैंगल्स इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
3: Number 8.

0: अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
2: एक ही होता है।
1: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

के लफ्ज कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के, पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है।

0: अरूप खान की आवाज है, गाने का नाम है गुच्ची। ऑल्दो हमारे दिमाग में अलग वीडियो चल रही है, दिस सॉन्ग डेब्यूज दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उससे पहले हमने फरक का गाना सुना तारे, 5 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार दिस वीक ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो हेलो, स्वागत है आपका, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। इंस्टाग्राम पर जाओ, फॉलो करो, फॉलो करना बिल्कुल फ्री है। मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई गाना शेयर करना हो, बिंदास आके हिट मी अप। गाना नंबर 6 पर हमने सुना गुच्ची बाय अरूप खान, जिसको एक्चुअली हम सब ने इंस्टाग्राम से ही डिस्कवर किया है। बट द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस सॉन्ग इज कि गाइस, ये गाना 2020 में आया था, लेकिन 2026 में ओनली बिकॉज ऑफ रवि किशन दिस सॉन्ग फाउंड इट्स मोमेंट। वो एक इवेंट पे स्टेज पर जा रहे थे और वहां जगह नहीं थी, तो एक बहुत ही क्वर्की साइड वॉक करी रवि किशन ने, वो एडिट विद गुच्ची ऑन टॉप ऑफ इट, वो हर जगह वायरल हो चुका है। एंड उस मीम की वजह से एक 6 साल पुराना गाना वापस हमारे काउंटडाउन में आ गया है। और ऐसा होता है, लाइक सोशल मीडिया वंस इन अ वाइल एक गाने को, एक आर्टिस्ट को हमारे ऑर्बिट में लाके खड़ी कर देती है, एंड दैट बिकम्स अ वेरी डिफाइनिंग मोमेंट फॉर एनी आर्टिस्ट। सारा प्रेशर उन पे है, सारी आंखें उनकी तरफ है कि क्या ये वन हिट वंडर रह जाएंगे या ये इसके बाद कुछ करेंगे। एंड एक आर्टिस्ट के लिए बहुत प्रेशर वाला जोन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई रियली डोंट थिंक वन हिट वंडर इज अ बैड थिंग टू से। अगर आप उस गाने के रिस्पेक्ट में देखो तो वो गाना इतना अच्छा है कि कोई उसको इग्नोर नहीं कर पाया। बट यस, ऑब्वियसली इट रेजेस क्वेश्चंस कि इसके आगे क्या होगा। आई थिंक बहुत सारे आर्टिस्ट इस सवालों से गुजरे हैं, एंड वन ऑफ द नेम्स व्हिच आई थिंक इज अ पोस्टर बॉय ऑफ इट इज एपी टिल्लो। साल था 2020, ब्राउन मुंडे वाज एवरीवेयर। अचानक उस गाने की वजह से पूरी दुनिया उन्हें जानती थी, एंड हर किसी का यही सवाल था कि क्या ये वन हिट वंडर है या इसके बाद ये कुछ और बना पाएंगे। एंड फिर जो हुआ, दैट्स फॉर द हिस्ट्री बुक्स, राइट? आई डोंट थिंक एपी ने किसी भी सवाल का जवाब दिया, उन्होंने सिर्फ नए गाने रिलीज किए। इवन इफ ही वॉज बींग कॉल्ड वन हिट वंडर, तो उन्होंने वो उसको अपने फेवर में लिया और दिल नू समर हाई जैसे गाने बैक टू बैक रिलीज करे। एंड एवरी सॉन्ग जस्ट प्रूव दैट ही इज सो इन इट, एंड जनता ने भर भर के प्यार दिया उनके नए गानों को। सो यार, बीइंग कॉल्ड वन हिट वंडर इज नॉट अ बैड थिंग। ऑफ कोर्स द प्रेशर देन बिगिंस कि इसके बाद क्या करना है। अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। एपी टिल्लो का हिट मोमेंट अलोंग विद गुरिंदर गिल, शिंदा कालो, जी माइनर, 2020 में आया ये गाना ब्राउन मुंडे, टिल डेट इज लाइक एन एंथम फॉर एवरीवन। ब्राउन मुंडे इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।

0: मैड वाइब, मैड सॉन्ग, गुरिंदर गिल, एपी टिल्लों, शिंदा कालो, जी माइनर का गाना, गाने का नाम है ब्राउन मुंडे. दिस वॉज अ बिगिनिंग ऑफ मेनी ग्रेट थिंग्स फॉर पंजाबी म्यूजिक, जहां पे फीलिंग बहुत देसी है पर प्रोडक्शन बहुत इंटरनेशनल था. आई थिंक दैट्स समथिंग आई कैन से अबाउट द नेक्स्ट सॉन्ग ऑन द काउंटडाउन एज वेल. अनीश सरकार हृदय का गाना, गाने का नाम है उड़ी उड़ी. एक फोक मेलेडी को इतनी ऊबर कूल प्रोडक्शन में पैकेज किया है. पिछले हफ्ते से दो पोजीशन ऊपर जंप करके उड़ी उड़ी इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 5. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 5.

लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. It's

0: बंजारे की आवाज, उन्हीं के लिरिक्स, उन्हीं की कॉम्पोजिशन। गाने का नाम है बैरन। जब भी गाना चल रहा होता है मुझे लगता है ये गाना बंद ही ना हुए। सच इज द इफेक्ट ऑफ दिस सॉन्ग। 23 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन नीचे ड्रॉप हुआ है। दिस वीक ऑन गाना नंबर 4।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: शो का नाम है गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर, मेरा हैंडल इज @RJKanika। दिस इज द शो व्हिच इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। पर कुछ गाने ऐसे होते हैं ना जो नए नहीं होते हैं, लेकिन जब हम सुनते हैं तो बहुत फेमिलियर साउंड करते हैं। दैट हैज टू बी अ क्लासिक। इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कैसेट क्लासिक, जहां पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज एंड द सॉन्ग वी गोइंग टू फीचर दिस वीक इज गाने का नाम है सानी धापा बाय द वन एंड ओनली कलोनियल कजिन्स। गाना 1996 में आया था बाय द सेल्फ टाइटल्ड डेब्यू एल्बम कॉल्ड कलोनियल कजिन्स। दिस एल्बम वाज सच अ रेजर। दिस वेंट प्लैटिनम, ये चार्ट्स पे रहा एंड कलोनियल कजिन्स इंडी पॉप स्पेस में घर घर का नाम बन गए थे। बट व्हाट्स वेरी इंटरेस्टिंग इज दैट अगर आप इन दोनों आर्टिस्ट को देखें, हरिहरन जी एंड लेस्ली लुइस, ये दोनों म्यूजिक के इतने डिफरेंट स्पेक्ट्रम से आते हैं, दैट मेड कलोनियल कजिन्स सो इंटरेस्टिंग एंड टिल डेट वन ऑफ द मोस्ट फ्रेशेस्ट एक्ट जो हमने पॉप सीन में देखा है। एक तरफ है हरिहरन जी, अ क्लासिकल सिंगर, दूसरी तरफ यू गॉट लेस्ली लुइस हु इज ऑल अबाउट द रॉक एंड रोल। लेस्ली लुइस ने बहुत सारे वेस्टर्न प्रोडक्शन एंड साउंड से इंट्रोड्यूस करवाया एंड हरिहरन जी इज द मोस्ट ग्राउंडेड क्लासिकल वॉइस दैट वी हैड नोन। एंड इन दोनों ने मिलके जब कलोनियल कजिन से सानी धापा किया, एवरीबडी जस्ट सैट एंड आज तक भी आई एम इन ओ। मैं जितनी बार ये गाना सुनती हूँ इट स्टिल साउंड सो फ्रेश कि बिल्कुल अभी प्रोडक्शन हुआ है इस गाने का। अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। वन थिंग आई एब्सोल्युटली लव अबाउट दिस सॉन्ग इज कि ये एक बॉक्स में नहीं बैठा है, क्लासिकल एंड रॉक के फ्यूजन की जगह है एंड सानी धापा इज अ प्रूफ ऑफ दैट। कलोनियल कजिन्स का 1996 का गाना सानी धापा इज अ कैसेट क्लासिक ऑफ द वीक। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

पहले कोई गाना 1996 में आया था, लेकिन आज 2026 में also I can say that it is one of the most experimental pop sounds out there. Hariharan ji and Leslie Lewis sir की आवाज में that was Sani Dhapa by Colonial Cousins on our cassette classic this week. At RJ Cunning on Instagram पर आओ और बताओ मुझे यार 90s 2000s के यही वाले गाने which still makes us feel like इंडी पॉप का गोल्डन एरा तो 90s एंड 2000s में था. Which is your favorite? मुझे आके बताओ. We might feature your song next week. Now back to the countdown. अगले वाले गाने की बारी. मिट्टा रॉर की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स, मिट्टा रॉर एंड स्वरा वर्मा की आवाज में. गाने का नाम है शीशा. 23 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. शीशा इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 3. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय. नंबर 3.

बस तेरा चले तो ले ले पूरा दिन, हो तैयार तू घंटे न गिन, मैं हूँ यही एच सर्विस, टेक योर टाइम शॉरी यू डिजर्व इट, हाथ मेरा थाम, लेट मी मेक यू स्माइल, आई लाइक योर स्वैग, यू लाइक माय स्टाइल, देती मुझे विंडो सीट खुद लेती आ, जब भी होती लो तू मेरा नंबर

0: Rana Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi.
1: Mirchi par, this is the Ghana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. This is the show where we bring to you the hottest pop songs of the week. हफ्ते के टॉप 10 पॉप गानों में दो नई एंट्रीज थी. हमारा 90s 2000s का इंडी पॉप क्लासिक भी हमने आपके लिए प्ले किया. गाना नंबर 10 से गाना नंबर 3 का सफर हम पूरा कर चुके हैं. बिफोर वी मूव ऑन टू द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, एक क्विक रीकैप लेते हैं राइट फ्रॉम द टॉप. बंजारे का बरसात दिस वीक ऑन गाना नंबर 10.
2: प्यारे सा मिलना नहीं, कौन मेरे जैसा जावेगी.
1: उसके बाद एक नई नवेली एंट्री हुई बादशाह हितेन शर्वी यादव का बैंगर डेब्यूज दिस वीक ऑन गाना नंबर 9. संजू राठौर का बैंगल्स 13 हफ्तों से गोइंग स्ट्रॉन्ग दिस वीक वॉज ऑन गाना नंबर 8. कहने तो नहीं चाहिए बट दिस सॉन्ग इज लाइक अ फेवरेट. फरक का तारे 5 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर गोइंग स्ट्रॉन्ग दिस वीक. तारे वाज़ ऑन गाना नंबर 7. अरूब खान का गुच्ची हैज मेड अ डेब्यू एंट्री मारी है सीधा ऑन गाना नंबर 6. अनी सरकार हृदय का उड़ी उड़ी स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग 13 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. उड़ी उड़ी दिस वीक वाज ऑन गाना नंबर 5. बंजारे का बैरन 23 हफ्तों से गोइंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग दिस वीक ऑन गाना नंबर 4.
2: मुन्ने साम साम रखे तेरे झांझरा के जोड़े मेरी गेल.
1: मिट्टा रॉर का शीशा स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग दिस वीक ऑन गाना नंबर 3. It's time for the top 2 songs of the week. And इस बार वाले जो टॉप दोनों गाने हैं आपने एक्सपेक्ट नहीं करे हैं बिकॉज काफी रीशफल हुआ है. पिछले हफ्ते से एक पोजिशन ऊपर जम करके हर्ष नुस्सी का गाना, गाने का नाम है साडी सुन. हर्ष नुस्सी दीप क्लेयर के लिरिक्स सुनी की कॉम्पोजिशन. ये गाना एक पोजिशन ऊपर जम्प मार के दिस वीक इज ऑन गाना नंबर 2. उसके बाद द न्यूमेरो ऊनो सॉन्ग ऑफ द वीक इज अ OTT रिलीज. गाने का नाम है दरमिया, रेखा भारद्वाज, राघव कौशिक की आवाज. राघव कौशिक का म्यूजिक. दिस इज फ्रॉम मुसाफिर कैफे. अ वेरी क्यूट लव स्टोरी बट अ इवन क्यूटर सॉन्ग. दरमिया डेब्यूज दिस वीक ऑन गाना नंबर 1. तो ये दोनों गाने बैक टू बैक. साडी सुन नंबर 2 पे है, फिर दरमिया नंबर 1 पे. ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
3: हाउ चुप कर लंघ जावे कोल दी तू संघ जावे को तकनी च तेरे रंग विच रंग जावे.

0: मिर्जापुर आ गई, मिर्जापुर आ गई। यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बात देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपने अपनी कालीन अब चद्दर बिछा कर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खून रेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ये भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक और त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो। हैं ये का भौकाल मचाए मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां, भूलना मत हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3.5 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है जीतूराज। Only on Mirchi, it's hot.
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
1: अब मिर्ची खा।
3: Radio Mirchi, it's hot.

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Purani Jeans, Mirchi Shreya ke saath, only on Mirchi. It's hot.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

मुझे लगता है हर किसी के अंदर एक बावर्ची होता है। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया। और सबने ना कभी कुछ ना कुछ तो कुक किया होता है, फिर चाहे वो हॉस्टल में तुम्हारे 2 मिनट नूडल्स हो या फिर चाय। तो हम सब कहीं ना कहीं तो बावर्ची होते ही हैं। इसी टाइटल को रखकर ऋषिकेश दा ने उस जमाने की एक बड़ी ही खूबसूरत फिल्म बनाई विथ राजेश खन्ना एस बावर्ची एंड जया बच्चन जी। इस फिल्म में बहुत सारे कैरेक्टर्स थे, एके हंगल साहब, असरानी साहब, दुर्गा खोटे। तो आज ना इसी मूवी की कहानियां बताऊंगी जो कि मैं कुक नहीं करके आई हूँ, वो सच में ये खट्टी मीठी किस्से एक्चुअली में ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ दिस फिल्म हुए थे। शुरुआत करेंगे फिल्म की कास्ट और क्रेडिट से। वापस आओ श्रेया के साथ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ।

इससे पहले तक किसी भी फिल्म में ऐसा नहीं हुआ था। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया और आज ना ऋषिकेश दा, राजेश खन्ना, जया भादुड़ी जी की फिल्म बावर्ची की बात हो रही है। आपको पता है इससे पहले किसी भी इंडियन फिल्म में ऐसा नहीं हुआ था कि कास्ट और क्रेडिट को ना दिखाया जाए। हर फिल्म में जैसे क्रेडिट दिए जाते हैं ना, ये फिल्म पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें क्रेडिट्स फिल्म के शुरुआत में नहीं दिए गए। फिर क्या किया गया, अगर आपने ये फिल्म देखी है तो पता होगा, और अगर नहीं देखी है या फिर बहुत पहले देखी थी तो मैं याद दिलाऊंगी। कम राइट बैक विद मी श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ये यूनिक आइडिया फिल्म के डायरेक्टर ऋषिकेश दा का था। पुरानी जींस पर हाय, मैं हूँ श्रेया एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द लेजेंडरी फिल्म बावर्ची, जो कि ऋषिकेश मुखर्जी ने बनाई थी। राजेश खन्ना थे, जया बच्चन थी और भी बहुत सारे एक्टर्स थे। अब इस फिल्म में पहली बार ऐसा हुआ कि क्रेडिट्स नहीं दिए गए, यानी देयर वर नो टाइटल कार्ड्स। तो फिर क्या किया गया था, इसमें अमिताभ बच्चन जी के वॉइस ओवर ने हर एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया था और ये यूनिक आइडिया पहली बार किसी फिल्म में देखा गया था। अच्छा, अमिताभ बच्चन उस टाइम पे बहुत बिजी थे, लेकिन अपने बिजी स्केड्यूल में से क्यों उन्होंने टाइम निकाला, ये अभी बताऊंगी श्रेया के साथ। वापस आओ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
1: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

आइडल्स के साथ एक्सपेरिमेंट ये पहले कभी किसी ने नहीं सोचा था। इट वॉज द फिनोमिनल ऋषिकेश मुखर्जी जिन्होंने ये सोचा भी और अपनी फिल्म बावर्ची में किया भी। पुरानी जीन्स पर हाय, मेरा नाम है श्रेया और मैं बात कर रही थी द लेजेंडरी फिल्म बावर्ची की, ऋषिकेश दा की डायरेक्टेड, जिसमें बावर्ची बने थे राजेश खन्ना, उनकी लव इंटरेस्ट बनी थी जया बच्चन जी, और इस फिल्म में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि कास्ट एंड क्रू के नाम नहीं दिए गए थे, बल्कि एक बहुत यूनिक आइडिया सोचा ऋषिकेश दा ने, एंड दैट वाज कि हर एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने के लिए अमिताभ बच्चन का वॉइस ओवर यूज किया गया। अब अमिताभ बच्चन उस टाइम पे बहुत बिजी थे, तो ऋषिकेश दा उनसे ये फेवर मांगने में थोड़ा कतरा रहे थे। उन्होंने जया जी से वाइल्ड शूटिंग द फिल्म ऐसे ही मुस्कुरा के बात बात में कह दिया कि काश अमित ये काम कर पाता। ये बात जया जी ने घर जा करके अमित जी को डिनर पे बताई। अमिताभ बच्चन और जया जी के लिए ऋषिकेश दा फादरली फिगर थे, हमेशा से एक बड़े भाई थे। जैसे ही अमित जी ने ये बात सुनी, वो ऋषिकेश दा के घर पहुंच गए और उनसे नाराज होके कहा, दादा ये बात आप मुझसे आके नहीं कह सकते थे, आपको जया की जरूरत पड़ी इसके लिए। ऋषिकेश दा ने मुस्कुरा दिया और उसके बाद तो वी ऑल नो व्हाट हैपेंड। पुरानी जीन्स पर ऐसे बहुत सारे किस्से हैं मेरे पास, तो बस वापस आओ श्रेया के साथ।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Purani Jeans, Mirchi Shreya ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ना ये दोनों डेटिंग फेज में थे। पुरानी जीन्स पर उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें, इस जमाने की श्रेया के साथ। अच्छा, तो मैं बात कर रही थी बावर्ची की थोड़ी देर पहले। तो इस फिल्म के दौरान अमिताभ बच्चन और जया जी ना एक दूसरे से मिलजुल रहे थे, एक दूसरे को समझ रहे थे, वो प्यार में धीरे धीरे पड़ रहे थे। तो क्या होता था कि अमित जी जया जी को मिलने फिल्म के सेट पे जाते थे। अब सेट पे तो उनको उस टाइम के सुपरस्टार काका यानी राजेश खन्ना भी मिलते थे, जिन्हें अमिताभ बच्चन थोड़े अखरते थे। अच्छा, काका उस टाइम पे अपने स्टारडम के खुमार में भी थे। अमिताभ बच्चन बिजी जरूर थे, उनके पास फिल्में बहुत थीं, लेकिन जनरली उनकी फिल्में इतनी खास चल नहीं रही थी। ऐसे में काका उनको ताने मारा करते थे, रिमार्क्स पास किया करते थे। क्या अमिताभ बच्चन को गुस्सा आया या फिर उनकी तब की गर्लफ्रेंड जया जी को, बताऊंगी थोड़े से गानों के बाद। मुझे बहुत मजा आता है आपको ऐसे सस्पेंस में छोड़ के जाने में, क्योंकि फिर मुझे यकीन होता है कि आप वापस यहाँ होंगे। सो कम राइट बैक पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ श्रेया।

लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Ah, आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

काका बोले तो राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन जी को बहुत सारे ताने मारते थे। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया और आज बात हो रही है ऋषिकेश दा द्वारा डायरेक्टेड फिल्म बावर्ची की। तो मैं कहाँ पे छोड़ के गई थी बात? हाँ, मैं ये बता रही थी कि ये वो टाइम था जब अमिताभ बच्चन एंड जया जी वर डेटिंग। वो एक दूसरे को मिल रहे थे, जान रहे थे, समझ रहे थे, धीरे धीरे प्यार में पड़ रहे थे। तो अमित जी के पास बड़ी सारी फिल्में थी, वो बिजी भी थे लेकिन उनकी फिल्में इतनी चल नहीं रही थी। ऐसे में द सुपर सक्सेसफुल राजेश खन्ना जब उनको सेट पे देखते तो ऑफकोर्स उन्हें वो कॉम्पिटिशन लगते और वो उनको बहुत सारे ताने मारते। अमिताभ बच्चन भी सुन लेते, जया बच्चन भी सुन लेती। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब काका ने एक बहुत ही खराब शब्द कहा। इस शब्द को सुन करके जया जी का सब्र का बांध टूट पड़ा और उन्होंने काका को जाकर के उनके कान में एक ऐसी बात बोली जिसके बाद से उन्होंने कभी भी अमिताभ बच्चन को कुछ नहीं कहा। वो शब्द क्या था अभी बताऊंगी। श्रेया के साथ वापस आओ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: मनहूस, ये कह के बुलाया था काका ने अमिताभ बच्चन जी को। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया और आज बात हो रही है बावर्ची फिल्म की। इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले ऋषिकेश दा, फिल्म के मेन लीड राजेश खन्ना और फिल्म की हीरोइन जया बच्चन। ये वो टाइम था जब जया बच्चन जया बहादुरी थी और अमिताभ बच्चन बहुत सारी फिल्में कर रहे थे लेकिन उनकी फिल्म सक्सेसफुल नहीं हो रही थी, वो फिल्में फ्लॉप होती जा रही थी एक के बाद एक। ये वो टाइम था जब जया जी और अमिताभ बच्चन प्यार करने लगे थे एक दूसरे से, तो अमित जी ना बावर्ची के सेट पे उनसे मिलने जाते थे और हाँ ऋषिकेश दा तो उनके दोस्त ही थे। ऐसे में राजेश खन्ना को बहुत अखरते थे। राजेश खन्ना चलते फिरते अमिताभ बच्चन को कोई ना कोई ताना मार ही देते थे। पर एक दिन ऐसा आया जब जया जी के सब्र का बांध टूट गया और वो था जब राजेश खन्ना ने अमिताभ बच्चन को कहा, मनहूस, तुम मनहूस हो, जिस भी फिल्म में जाते हो वो फ्लॉप हो जाती है। ये बात जया जी के दिल पे सीधे जाके चुभी। उनको इतना गुस्सा आया कि अमित जी उन्हें चाय पे वापस बैठाते रहे, बैठ जाओ छोड़ो जाने दो। जया जी गुस्से में उठी, राजेश खन्ना के पास गई और उनके कान में कहा, एक दिन पूरी दुनिया देखेगी कि ये आदमी क्या बनेगा और आप क्या रह जाएंगे। इस एक लाइन के बाद वो वापस आके चाय पीने लगी एंड आफ्टर दिस काका ने अमिताभ बच्चन को कभी ताना नहीं मारा। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ श्रेया और भी किस्से हैं उस जमाने के, तो गाने सुन करके यहीं वापस आना।
1: होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई। यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बा देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपनी अपनी कालीन अब चद्दर बिछाकर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खूनरेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ई भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक कॉल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो। हैं ई का भौकाल मचाया मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां, भूलना मत हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते हैं ना भैया, अमा पनवा चटाई के जब धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगा है कि ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3:30 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है।
0: Only on Mirchi, it's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

अच्छा एक और चीज में ये फिल्म बावर्ची खास थी, पुरानी जीन्स पर। हाय, मेरा नाम है श्रेया और आज मूवी बावर्ची की बात कर रहे हैं। राजेश खन्ना, जया बच्चन एंड ऑफ कोर्स डायरेक्टेड बाय ऋषिकेश मुखर्जी। राजेश खन्ना यानी काका उस टाइम पे ना सुपरस्टार थे, बल्कि कहा जाता है कि इंडिया के वो फर्स्ट सुपरस्टार थे। उनके साथ हर हीरोइन ने कई सारी फिल्मों में काम किया था, फिर चाहे वो शर्मिला टैगोर हो, मुमताज जी हो, आशा पारेख हो, जीना तमानो हो, तनुजा जी हो, ऑल ऑफ देम। लेकिन सिर्फ एक हीरोइन थी जो उस टाइम पे अपने स्टारडम के पीक पे थी, पर काका से थोड़ी दूरी बना के चलती थी। उन्होंने राजेश खन्ना के ऑपोजिट एज इज लव इंटरेस्ट सिर्फ एक ही फिल्म में काम किया और वो थी बावर्ची। जया जी और राजेश खन्ना की ये रोमांटिकली पेयर अप होने वाली पहली और आखिरी फिल्म थी, इसीलिए है ना ये यूनिक फिल्म, क्योंकि ऋषिकेश दा इन दोनों को एक साथ ले आए थे इस पिक्चर में। पुरानी जीन्स पर मेरा नाम है श्रेया, वापस आओ, बातें तो अभी बहुत सारी बाकी हैं उस जमाने की।

0: 92.7 FM. Radio Mitri, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Purani Jeans. Mirchi Shreya ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

एक ऐसी फिल्म जिसने हमें जम करके हंसाया और बहुत सारे सीन्स में इमोशनल भी कर दिया, आज उसी की बात हो रही है, बावर्ची। पुरानी जीन्स पर मेरा नाम है श्रेया और मैं बात कर रही हूँ ऋषिकेश दा द्वारा डायरेक्टेड फिल्म बावर्ची की। अच्छा, जो रेट्रो फैंस हैं उन्होंने डेफिनेटली ये फिल्म देखी होगी, और जिन्होंने नहीं देखी उन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि इस फिल्म में राजेश खन्ना बावर्ची बने थे, एक जॉइंट फैमिली के लिए खाना बनाया करते थे। पर अगर जब आप फिल्म देखोगे ना तो वो खाने से ज्यादा वो पूरी फैमिली का ख्याल रखते थे। सबके सीक्रेट्स भी इसी बावर्ची के पास होते हैं। जब ऋषिकेश दा ने ये अलग हट करके कैरेक्टर, एकदम अलग हट करके फिल्म काका को सुनाई ना, उन्हें बड़ा पसंद आया। सबसे ज्यादा एक्साइट उनको किया था बावर्ची की कॉस्ट्यूम, हाफ पैंट्स, एक शर्ट और सर पे टोपी। अब ये जो टोपी थी ना, इसकी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। इस टोपी को दो वजहों से पहना था राजेश खन्ना ने, एंड वो दो रीजंस क्या थे? आहा, अब तो आप मुझे जान गए हो, ऐसे कहां बताती हूँ मैं आपको। ऐसे सस्पेंस में छोड़ के जाने में श्रेया को तो बड़ा मजा आता है, तो गाने सुन करके जल्दी से वापस आओ, फिर बताती हूँ इस टोपी के पीछे की कहानी। ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब मिर्ची खा।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
3: आप सुन रहे हैं पुरानी जींस, श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

लोगों को लगा कि ये टोपी राजेश खन्ना ने फिल्म के कॉस्ट्यूम के चक्कर में पहनी है, लेकिन इसका रीजन तो कुछ और ही था। हाय, मैं हूँ श्रेया और आप सुन रहे हैं मुझे पुरानी जीन्स पे, और आज बात हो रही है द फिनोमिनल फिल्म बावर्ची की। अच्छा, ऋषिकेश दा जब ये रोल लेकर के पहुंचे राजेश खन्ना के पास, तो उन्हें लगा था कि शायद काका मना कर दें, क्योंकि तब काका इमोशनल रोल्स तो कर रहे थे, लेकिन उनको साथ में अच्छा दिखना बहुत पसंद था, गुड लुक्स। सो राजेश खन्ना अपने कपड़ों को लेकर के, अपने कॉस्ट्यूम्स को लेकर के बहुत पर्टिकुलर होते थे। जब उन्हें पता चला कि इस फिल्म में वो बावर्ची का रोल प्ले करेंगे और उन्हें एक बावर्ची जैसे कपड़े पहनने हैं, तो उन्होंने हामी भर दी। ऋषिकेश दा को बड़ा अचंभा हुआ। फिर राजेश खन्ना ने एक बात कही कि उनके सर से बावर्ची की टोपी, अगर आप देखो ना, एक पॉइंटेड सी टोपी पहने हैं वो, जिसे उन्होंने एक सेकेंड के लिए भी फिल्म में नहीं उतारा। सो काका ने कहा कि इस पूरी फिल्म में वो ये टोपी पहने रहेंगे। तो ऋषिकेश दा ने आंखें छोटी करते हुए उनको शक की निगाहों से देखते हुए पूछा कि राजेश, तुम ये टोपी कॉस्ट्यूम के लिए पहनना चाहते हो या फिर कोई और रीजन है? काका ने मुस्कुरा के पता है क्या कहा? कि उनके बाल कम हो रहे हैं और टोपी की वजह से वो छिप जाएंगे। पुरानी जीन्स पर मेरा नाम है श्रेया, और भी बातें बताऊंगी ना, वापस तो आओ।

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
2: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड।
1: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
3: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
4: एक ही होता है।
1: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ऋषिकेश दाना बंगाली फिल्मों से बहुत इंस्पायर होते थे, बहुत इम्प्रेस होते थे और इसीलिए उनकी कई सारी फिल्में बंगाली फिल्म से ही इंस्पायर थी। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया। बावर्ची की बात हो रही है। ऋषिकेश दा ने बनाई थी, राजेश खन्ना और जया बच्चन थी विद अ लॉट ऑफ अदर एक्टर्स। ए के हंगल थे, असरानी साहब थे, दुर्गा खोटे थी। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि बावर्ची भी एक बंगाली फिल्म से इंस्पायर्ड थी और इसका नाम था गोलपो होलियो सोटी। ये फिल्म तपन सिन्हा ने बनाई थी। बनी तो ये 1966 में थी, लेकिन जब ये ऋषिकेश मुखर्जी ने देखी थी उन्होंने तभी सोच लिया था कि वो ये फिल्म राजेश खन्ना के साथ हिंदी में बनाएंगे। पुरानी जीन्स पर आज इसी फिल्म की बातें चलती रहेंगी, तो श्रेया के साथ वापस आओ।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
2: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
1: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
3: Ah, ah,
0: ah, आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: पर आफुश्रेया के साथ। मेरा जाने का टाइम तो हो गया है, पर आपको पता है ना मैं अकेले नहीं जाती हूँ। इस समय एक गाना चूज करके मैं और आप मिल करके हाईवे तक घूम के आते हैं। तो चलो गाड़ी में जल्दी से बैठो। तो आज का मेरा हाईवे हिट पहली मुलाकात पे, एंड स्पेशली जब आप उनसे फर्स्ट टाइम मिलने वाले होते हो ना, तो वो जो एक्साइटमेंट होता है ना कि क्या बातें होंगी, वो मुझसे क्या कहेगा, मैं उससे क्या पूछूंगी, आगे कॉन्वर्सेशन कैसे बढ़ाएंगे, अच्छा हम कैसे लग रहे होंगे एक दूसरे को, ये सब सवाल होते हैं ना। तो आज उसी एक्साइटमेंट पे
1: आज उनसे पहली मुलाकात होगी।
0: यही गाना सुनते हुए चलते हैं। On that note, this is Shreya signing off. आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो फेसबुक और इंस्टा पे, RJ Shreya with love. ये है मेरा हैंडल, that's RJ SHREYA Shreya with love.

0: क्या खा लिया
1: सरदार? मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मैं खत्म तो खेल खत्म.
1: मिर्जापुर आ गई, मिर्जापुर आ गई. यानी 2018 में जिन लोगों ने ये सीरियल बात देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपनी अपनी कालीन अब चद्दर बिछाकर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है. सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं. इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी. भाई जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए. बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौज है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खूनरेजी है. बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट. बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है. एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है. कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है. ये भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक और त्योहार है. हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो है. ये का भौकाल मचाया मिर्जापुर द मूवी ने. एंड हां, भूलना मत हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते हैं ना भैया, अमा पनवा चटाई के जब धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी. वो फुल एंटरटेनमेंट है यार. 3:30 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से. देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतूराज. समझे कि नहीं समझे, सही है.
2: Only on Mirchi, it's hot. 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot. Radio Mirchi, it's hot. 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: रस है।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: सुनता है सबकी, करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shivani. Only on Mirchi. It's hot.
1: 100 तारीफों के बीच एक क्रिटिसिज्म ही हमें क्यों याद रह जाता है? आइए इस माइंडसेट को समझें मिर्ची रिचार्ज मंत्रा के इस स्पेशल एपिसोड में ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी और विशाल सेठिया के साथ।
2: सिस्टर, मेरे साथ कई बार क्या होता है कि मैं लोगों से मिल रहा हूँ और बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स हैं और लेट्स से मैंने एक प्रेजेंटेशन किया, बोलते हैं अरे बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन होता है कि मैं लोगों से मिल रहा हूँ और बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स हैं और लेट्स से मैंने एक प्रेजेंटेशन किया, बोलते हैं अरे बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था।

0: जी
1: लेकिन जो वो एक था उसने ऐसा हैमर मारा तो चोट लगी।
0: हाँ।
1: तो चोट लगी तो वो चोट दर्द हो रही है, दर्द को आपने ठीक नहीं किया है।
0: हाँ।
1: अगर आप दर्द को ठीक कर देंगे तो वो हैमर भी भूल जाएगा, लेकिन अगर मुझे यहाँ चोट लगी है और वो दर्द हो रहा है तो मुझे चोट मारने वाला याद आएगा ना, जितनी देर वो दर्द होगा। तो वो सिर्फ उस दिन नहीं याद आएगा, वो हफ्ते भी याद आएगा, अगली बार दिखेगा तो भी चोट याद आएगी। इम्पोर्टेंट ये है कि जब वो मिल रही है क्रिटिसिज्म, उसी टाइम अगर हम उसको हील कर लेंगे ना तो वो घाव नहीं बनेगा। और हम सिर्फ घाव बनने नहीं देते, हम उस घाव को बार बार रिपीट भी करते हैं। तो वो घाव क्या होता है, सिर्फ माइंड में नहीं करते, हम किसी से बात भी करते हैं, हम कहते हैं पता है उसको क्या आता है, कुछ आता तो है नहीं, आके अपना देके चला गया,
0: मैंने ये किया वो ऐसा बोल
1: फिर
0: रहा है।
1: सामने वाला उस पे और आपको एंडोर्स करता है, हाँ वो तो है ही ऐसा, तो हम अपने को और अलाउ करते हैं। ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। हमेशा हमें याद रखना है सामने वाला जो कह रहा है वो उसका नजरिया है और उनका नजरिया उनके संस्कारों से बनता है
0: जी।
1: और हर सोल की लंबी जर्नी है तो अलग अलग संस्कार है। वो रोल कोई भी प्ले कर सकते हैं आपके ऑफिस में, लेट से कोई आपका सीनियर है या कोई आपका जूनियर है, रोल अलग अलग है, लेकिन डिफरेंट जर्नी डिफरेंट संस्कार। तो जब आपको कोई अप्रिसिएशन देना तब याद रखना कि मेरे बारे में नहीं है, ये इनके प्यारे प्यारे संस्कार हैं जो ऐसा बोल रहे हैं।
0: प्यारे प्यारे,
1: हाँ प्यारे है ना, वो अच्छा दिख रहे हैं, वो अच्छा बोल पा रहे हैं आपको।
0: हाँ।
1: कि उनके अच्छे संस्कार है ना, इसलिए वो कर पा रहे हैं।
0: हाँ।
1: और अगर कोई ऑपोजिट देगा तब भी याद रखना इट्स नॉट अबाउट मी, ये उनका संस्कार है। थोड़ा सा कड़वाहट भरी है मन के अंदर, कोई चोट लगी होगी कभी, इस वजह से वो ऐसा बोल रहे हैं। जिसको अगर किसी को वायरल होता है ना तो उसको मीठी खीर भी अच्छी नहीं लगती है।
0: बिल्कुल,
1: अगर मेरे पास वो संस्कार है ना, वो चाहे कभी भी बना हो वो संस्कार, तो आप बेस्ट पर्सन ऑन द प्लैनेट हो सकते हैं। लेकिन मुझे फिर भी कुछ ना कुछ आपके अंदर गलती दिखाई देगी, नॉट बिकॉज आप गलत हैं, क्योंकि मेरे पास वो संस्कार है। तो प्रैक्टिस निंदा में नहीं करनी है, प्रैक्टिस स्तुति में करनी है।
0: अच्छा,
1: अप्रिसिएशन में करनी है।
0: बिल्कुल।
1: तो पुराने जमाने में वो घड़ी थी ना जो पेंडुलम ऐसे घूमता था,
0: बिल्कुल।
1: तो मेडिटेशन हमें सिखाता है पेंडुलम को बस सेंटर में रखना। जब अप्रिसिएशन मिले तब भी सेंटर में रखना। अगर अप्रिसिएशन में सेंटर में रख लिया तो क्रिटिसिज्म में सेंटर में रहेगा वो
0: जी।
1: लेकिन अगर अप्रिसिएशन में वो 60 डिग्रीज इस तरफ गया टू द लेफ्ट, तो वो क्रिटिसिज्म में 60 डिग्रीज टू द राइट जाएगा।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए. इट्स अ जर्नी. चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची. इट्स ऑल.

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shivani. Only on Mirchi. It's hot.
1: वैलिडेशन से ज्यादा इनर इवैल्यूएशन क्यों जरूरी है, आइए जानते हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा के इस स्पेशल एपिसोड में ब्रह्म कुमारी, सिस्टर शिवानी और विशाल सेठिया के साथ।
2: ये बहुत जरूरी, क्योंकि जब कोई अप्रिशिएट करता है हमको बड़ा अच्छा लगता है।
3: हाँ, तो फिर आप डिपेंडेंसी क्रिएट कर ली ना दूसरों के शब्दों के ऊपर। जो अप्रिशिएट करे उसको प्यार से शुक्रिया दुआएं, लेकिन याद रखना ये उनका संस्कार है। और ऐसे भी हो सकता है कि कोई मन में आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा है
2: लेकिन बोल में कर रहा है,
3: शब्दों में कर रहा है, तो वो भी हमें पता नहीं। लेकिन हम कितना किसी की भी वाहवाही लेकर अपने आप को बहुत ज्यादा वो कर लेते हैं। हमें खुद को इवैल्यूएट करना चाहिए
2: जी।
3: हमें खुद डिटैच्ड होकर अपने आप को इवैल्यूएट करना चाहिए कि कैसा था वो प्रेजेंटेशन, या और फिर जो क्रिटिसाइज कर रहा है उसका आप फीडबैक ले लीजिए। फीडबैक आपके लिए है, क्रिटिसिज्म उनका संस्कार है,
2: वो बहुत जरूरी है, इनको सेपरेट करें।
3: लेकिन जब हम वो क्रिटिसाइज करके फीडबैक देते हैं ना,
2: हाँ।
3: तो हम फीडबैक भी नहीं लेते हैं, क्योंकि हम क्रिटिसिज्म से ही हर्ट होते हैं। तो सपोज मेरे पास आपके लिए गिफ्ट है, वो गिफ्ट बहुत रियली वैल्यूएबल है आपके लिए, लेकिन मेरा देने का तरीका ठीक नहीं था। मैं आपके पास आई और मैंने कहा ये लो, तो वो मैंने दिया इतना गलत तरीके से कि आपने गिफ्ट खोल के ही नहीं देखा।
2: सही बात।
3: दिस इज व्हाट हैपेंस स्पेशली इन एन ऑफिस।
2: यस।
3: यू नो, सामने वाला बहुत आपके फायदे के लिए कोई आपको बात कहता है, लेकिन अगर उसका मन परेशान है, अगर कोई कड़वाहट भरी हुई है, तो उसका कहने का तरीका उतना रिस्पेक्टफुल नहीं होगा। तो तरीका उनका है, फीडबैक हमारे लिए है। तो सेपरेट द फीडबैक फ्रॉम द संस्कार ऑफ क्रिटिसिज्म। तो फिर आप फीडबैक को नहीं खोएं, क्योंकि वो मेरी गिफ्ट थी, देने का तरीका उनका संस्कार।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी, सिस्टर शिवानी, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: मॉर्निंग ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shivani. Only on Mirchi. It's hot.
1: क्या आप भी नो नहीं बोल पाते? तो ये कॉन्वर्सेशन आपके लिए है. आइए जानते हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा के इस स्पेशल एपिसोड में ब्रह्म कुमारी, सिस्टर शिवानी और विशाल सेठिया के साथ.
2: सिस्टर, क्योंकि हम ऑफिस की बात कर रहे थे, एक सिचुएशन के बारे में बात करते हैं. हमारे ऑफिस में एक बहुत सीनियर बंदे हैं और वो मुंह पे हमेशा हाँ बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे जाके बिल्कुल उसका उल्टा. सीनियर बंदे हैं, उनसे बहुत बार फीडबैक उनको दे दिया गया इस बारे में. और शायद कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है ना कि कुछ लोग होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप उनको परे कर सकते हैं. और सारी चीजों के बीच में भी बात, ऐसे लोगों से क्या करें? क्योंकि कई बार जब मैं सोचता हूँ कि चलो उनका संस्कार उनको फॉरगिव कर देते हैं, लेकिन मेरी ड्यूटी भी अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, मुझे भी अपना काम करना है, उनके साथ मेरे डिपार्टमेंट को काम करना है. ऐसे लोगों को कैसे हैंडल किया जाए?
3: वो ना नहीं बोल पाते, वो जानबूझ के नहीं कर रहे हैं.
2: अच्छा.
3: क्योंकि बहुत लोग ना नहीं बोल पाते हैं और बहुत लोग ना सुन नहीं पाते हैं.
2: हाँ.
3: है ना, कुछ लोग ना सुन के भी ऑफेंड हो जाते हैं.
2: हाँ.
3: कुछ लोग ना इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि वो दूसरे को ऑफेंड नहीं करना चाहते.
2: बिल्कुल.
3: एंड दिस इज अ संस्कार ऑफ सीकिंग वैलिडेशन. अगर मैंने आपको किसी चीज के लिए ना बोला, फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा कि मैंने ना बोला. और अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो फिर आपके अनुसार मैं अच्छी नहीं हूँ, ये मेरा बिलीफ सिस्टम है. तो इसीलिए भले मुझे वो ना लगता है लेकिन मैं अच्छी हूँ, ये आपके माइंड में फिक्स होना चाहिए. इसके लिए मैं आपको हाँ बोलती हूँ. वो आपके लिए है ही नहीं एक्चुअली, वो मेरी नीड है ऑफ वैलिडेशन. तो ये सामने वाले को पता भी नहीं होता कि ये क्यों कर रहे हैं ये सब कुछ, लेकिन वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो हर एक से एक अच्छी वो क्रिएट करना चाहते हैं. और उसमें उनकी गलती नहीं होती है, ये कभी कभी बहुत पुरानी रिकॉर्डिंग हो गई होती है. मोस्ट केसेस में इट इज अ चाइल्ड.
2: Okay.
3: एक बच्चा है.
2: हाँ.
3: जिसका पेरेंट या
2: हाँ.
3: जिसका टीचर बहुत क्रिटिकल या बहुत स्ट्रिक्ट या बहुत डिफिकल्ट टू प्लीज. जिसको आप खुशी नहीं कर सकते हो. आप कितना भी परफॉर्म कर लो, आप 99/100 लिया, वो बोलेगा लेकिन
2: हाँ.
3: आपका ये एक नंबर नहीं है. जब बच्चा छोटा होता है ना, उसके लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो अभी तक वो सीख कर रहा है कि कब एक दिन
2: कोई अप्रिशिएट
3: वो मेरा पेरेंट या वो मेरा टीचर कहेंगे तो बहुत अच्छे हो. तो वो जो सीकिंग का संस्कार है ना, वो बहुत पुराना होता है. और वो इतना पुराना होता है कि हमको भी नहीं पता हमारा वो संस्कार कैसे बन गया है, लेकिन हम आज भी वो सीकिंग के मूड में हैं कि लोग मुझे कहें कि मैं अच्छी हूँ. वो बहुत डीप प्रोग्रामिंग होती है. तो वो अभी नहीं समझेंगे लेकिन हमें समझ लेना चाहिए कि ये उनका संस्कार है.
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी, सिस्टर शिवानी. ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: वर्कप्लेस में ओपन कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है,
3: आइए जानते हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा के इस स्पेशल एपिसोड में
2: ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी और विशाल सेठिया के साथ।
4: सिस्टर, क्योंकि हम ऑफिस की बात कर रहे थे, एक ऑर्गेनाइजेशन जब आप चलाते हैं तो सिर्फ समझने से तो काम नहीं चलता, हमको काम भी करवाना है।
5: आप उनसे ओपनली बोल सकते हैं कि हम तो रेडी है। आप बताओ अगर ये गलत है तो हम अभी छोड़ देते हैं इसको। हम अभी इसको चेंज, गिव द पर्सन दैट थिंग कि आप सेम रहेंगे दिस वे और दैट वे। अगर आपने हमें अच्छा बोला या राइट बोला तो भी हम ठीक हैं। अगर आपने बोला कि हमने जो गलत किया उसको पूरा बदलना, हम भी ठीक। आप उनको ना, हम रोल को देखते हैं ना, तो हमें बहुत डिफिकल्ट होता है ये करना। ओ ये तो इतने बड़े हैं, इनको हम ऐसे क्यों बात करें। हम रोल को नहीं देखते हैं, हम व्यक्ति को देखते हैं, और हमें दिखता है कि ये छोटा सा बच्चा अभी तक वो घाव लेके चल रहा है। तो बस उसको उस नजरिए से देखकर एक तब ओपनली बोल दो कि आई एम परफेक्टली ओपन, आप बस मुझे बता दो कौन सी गलतियां। तो सामने वाले को शक्ति देनी पड़ेगी कि वो हिम्मत कर सके आपको डिसप्लीज करने के लिए, बाय अश्योरिंग हिम कि हम ऑफेंड नहीं होंगे, हमारी रिस्पेक्ट आपके लिए अभी भी उतनी है, आप हमारी गलतियां निकालोगे तभी भी उतनी ही है, आप हमें गलत कहोगे तो भी उतनी है। ये अश्योरेंस उस बच्चे को नहीं मिली थी। तो जब हमें दूसरों के संस्कार और मन की स्थिति समझ में आती है ना, भले वो हमारे रोल में सीनियर होंगे लेकिन मन अभी भी वो बच्चे का ही है। तो वो मन,
6: यू आर लिस्निंग टू 103.3 FM HD2 WPRB प्रिंसटन न्यू जर्सी एंड 92.7 W224 CW फ्रैंकलिन पार्क न्यू जर्सी, रेडियो मिर्ची।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shivani. Only on Mirchi. It's hot.
1: कॉर्पोरेट दुनिया में ढाल क्या है और क्या हम अपनी प्रोटेक्शन के लिए इस ढाल का इस्तेमाल करते हैं? आइए जानते हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा के इस स्पेशल एपिसोड में ब्रह्म कुमारी, सिस्टर शिवानी और विशाल सेठिया के साथ।
2: कभी कभी सिस्टर क्या होता है, कुछ लोग ढाल का इस्तेमाल करते हैं, तो हमने एक बात की कि चलो कोई बच्चा बचपन में शायद बहुत एक परफेक्शनिस्ट बाप या गुरु के साथ पला बड़ा है, तो इसलिए उसको वैलिडेशन चाहिए। बट कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग होते हैं कॉन्फिडेंट होते हैं, सीनियर होते हैं एक्सेट्रा, वो बोलते हैं हाँ ठीक है, और जैसे उनको ईमेल का ढाल मिल जाता है ना, फिर वो बोलते हैं नहीं ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तुमको ऐसा करना चाहिए वैसा। वो बहुत जो वर्ड्स भी यूज करते हैं वो डरने वाले नहीं है, वीक वाले नहीं है, वो है कि भैया मुझे लगता है हमको ऐसा करना है, फिर आपको लगता है लेकिन हमने अग्री तो ये किया था, हाँ हमने अग्री किया था लेकिन ये सही नहीं है। सो दे आर नॉट इवन सेइंग कि हमने अग्री नहीं किया था, वो कह रहे हैं हमने किया था लेकिन मैंने अपना मन बदल लिया। और रेगुलरली जब हो तब कैसे हैंडल करें?
3: लैक ऑफ क्लैरिटी है ना थिंकिंग के अंदर, क्लैरिटी नहीं है थिंकिंग के अंदर और डिसीजन मेकिंग की शक्ति नहीं है, तो उसको हम कहेंगे फिकल माइंड, मतलब चेंज होता रहेगा ना बहुत बार मन। कॉन्फिडेंस नहीं है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, और आपने जो डिसाइड लिया, डिसीजन लिया, उसके ऊपर सर्टेनिटी भी नहीं है, फेथ भी नहीं है कि ये राइट होगा, तो दिस इज अ साइन ऑफ अ लिटिल, थोड़ा सा कमजोर मन है।
2: और
3: मन
2: को शक
3: नहीं, आपको उनके साथ तो काम ऑब्वियसली करते ही जाना है, करते ही जाना है, बट ये भी हो सकता है कि जो डिसीजन लिया था कल उसको फटाफट से राइटिंग में डाल देना चाहिए। अब सपोज मेरी आज आपसे कोई बात हो रही है और मुझे पता है ये कल ना चेंज हो जाएगी, तो फिर मैं आज उसको राइटिंग में डाल के कि आज हमने ये डिस्कस किया था। इवन विद फैमिली, ये जरूरी नहीं है वर्क प्लेस पे होता, कोई भी हो सकता है ना कहीं पे, तो अपना फैमिली का व्हाट्सएप ग्रुप होता है ना उस पे डाल देना आज हमने ये डिस्कस किया 1 2 3 4, तो सामने वाला जान पूछ के भी कई बार नहीं करता है, उसकी थॉट चेंज हो गई है अगले दिन, या उसको फेथ नहीं है उस डिसीजन के अंदर, एंड इट डजंट मैटर कि हम चेंज करें अगली बार, लेकिन अगर वो हर बार हो रहा है तो देन इट्स नॉट अबाउट व्हाट वी आर डूइंग, इट्स अबाउट माय संस्कार। इसीलिए लिखत में रखना सामने वाले के लिए भी अच्छा होता है कि ये मेरी कल की थॉट थी और ये सबने एक्सेप्ट किया। एक बार, दो बार, 10 बार करेंगे, धीरे धीरे वो चेंज हो जाएंगे।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी, सिस्टर शिवानी, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर, बाय नाउ एंड पे लेटर। आरके ज्वेल्स,
1: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस,
2: कंडीशंस अप्लाई।
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
5: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे।
6: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
7: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
6: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
8: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
9: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
10: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इजलिन, न्यू जर्सी।
11: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। It's a journey. Chalo is journey pe with Mirchi Recharge Mornings. Subah 6 se 8. Only on Mirchi. It's hot.

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shivani. Only on Mirchi. It's hot.
1: Spirituality में empathy का क्या role है? और दूसरों को समझना हमारे inner growth का हिस्सा कैसे बन सकता है? आइए जानते हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा के इस स्पेशल एपिसोड में ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी और विशाल सेठिया के साथ।
2: सिस्टर, जब मैं आपसे बात करता हूँ ना तो ऐसा लगता है कि हर चीज का बहुत सिंपल सलूशन है। हम इतने वर्क्ड अप क्यों हो जाते हैं? हमको लगता है वो बदमाश है, वो करना नहीं चाहता, वो मुझे पसंद नहीं करता। आपसे जब बात करता हूँ तो आप बोलते हैं यार ये ऐसा है, अब लगता है हाँ ये कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम क्यों नहीं कर पाते?
3: जो भी आपको कुछ परफेक्ट नहीं करता हुआ दिखाई दे रहा, हम सब लोग कुछ कुछ चीजें परफेक्ट नहीं कर रहे हैं ना, वो हमारे अपने संस्कार है। कोई जान पूछ के गलत नहीं करता है। कोई डेलिब्रेटली किसी को तंग करने के लिए गलत नहीं करता है। अगर आज कोई किसी पे जोर से चिल्ला रहा है, वो अपना दर्द बाहर निकाल रहा है, वो खुद उसके ऊपर घाव लगा हुआ है, उसका अंदर का कोई बहुत डीप वैक्यूम है। लेकिन जो वो चिल्लाना या डांट सुन रहा है, उसको ये नहीं लगता कि सामने वाले के अंदर कोई दर्द है। कहता है आप मेरे दर्द का कारण हो। तो हम हमेशा लोगों को ऐसे लेते हैं कि यू आर डूइंग दिस टू मी, आप मेरे दर्द का कारण हो, आप मुझे तंग कर रहे हो, आप मुझे डोमिनेट कर रहे हो। स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाता है उनके बारे में सोचो पहले, एम्पैथी, कि वो ऐसा कर क्यों रहे हैं
2: जी।
3: तो उनके माइंड में घुस के चेक करो कि ये कौन सा संस्कार होगा जिसकी वजह से ये इस तरह से बात करते हैं, इस तरह से डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो कोई भी नेगेटिव संस्कार, नेगेटिव मतलब अनकंफर्टेबल, हमारी कोई ना कोई पुरानी कमजोरी ही है। तो सामने वाला हमें नहीं तंग कर रहा है, वो खुद से बहुत तंग है। अगर हम दोनों हाथ ऐसे रखें, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, आप लेफ्ट हैंड पे उनको रखें जो कुछ ऐसा कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, उनकी शक्ति थोड़ी सी कम है,
2: ठीक है।
3: लेकिन हम उनके उस व्यवहार से डिस्टर्ब हो जाते हैं ना जब, तो फिर हमारी भी एनर्जी डाउन हो जाती है। अब जैसे ही हमारी भी एनर्जी डाउन होगी और हम उनको ब्लेम करेंगे उसके लिए, इनकी वजह से मेरा मन डिस्टर्ब्ड है, तो हमारी नेगेटिव एनर्जी उनको जाएगी, वो और डाउन जाएंगे, और डाउन जाएंगे। हमें यहाँ होने की जरूरत है, हमें ऊपर होने की जरूरत है, हमें उनको शक्ति देनी है, हमें उनके संस्कार की वजह से अपनी शक्ति

0: घटानी नहीं है।
1: हाँ
0: और सबसे पहले उसके लिए बस इतनी सी प्रैक्टिस करनी है कि वो गलत कर सकते हैं लेकिन वो मेरी मन की स्थिति को नहीं डिस्टर्ब कर सकते। वहां कोई किसी की एंट्री नहीं है, उसका रिमोट कंट्रोल किसी के पास नहीं है। इतना याद आएगा, आई विल टेल यू स्मॉल एग्जांपल। एक नर्सेस का प्रोग्राम था, सब नर्सेस थे, उनको कहा, उनका टॉपिक स्ट्रेस मैनेजमेंट था। उनको पूछा क्या कॉज ऑफ स्ट्रेस, मुझे लगा इतने सारे रीजंस होते हैं नर्स के पूरे दिन के अंदर। तो उन्होंने कहा नहीं, जब डॉक्टर गुस्सा करते हैं। मैं कहा वो कोई रीजन है स्ट्रेस का, पेशेंट इतना गुस्सा करते हैं? उन्होंने बहुत प्यार से कहा, सिस्टर उनका ना बिल्कुल बुरा नहीं लगता, वो बीमार है। परफेक्ट। तो मैंने कहा कल जब वो डॉक्टर आपको गुस्सा करेंगे, आप मन में एक थॉट क्रिएट करना, वो बीमार है। तो उन्होंने कहा बट वो तो बीमार नहीं है। मैंने कहा इमोशनली तो बीमार है ना, तभी तो कड़वा बोल रहे हैं ना, तो बीमार है। तो अगले दिन एक नर्स ने फोन किया, कहती वो बहुत अच्छे डॉक्टर है लेकिन उनको इतना परफेक्ट चाहिए होता है ओटी में कि कुछ भी, इंटेंशन बहुत अच्छी है लेकिन तरीका। शीजर आज फिर से आके उन्होंने जोर से चिल्लाया और मैंने फर्स्ट थॉट क्रिएट की, वो बीमार है। शीजर मैं ठीक रही क्योंकि अभी तक मैं बोलती थी इतनी मेहनत की, आए और मुझ पर चिल्लाया। यू नो हम अपने पे ले लेते हैं। बट ब्यूटिफुल थॉट था उनका सेकेंड वाला।
1: क्या बात।
0: उसके बाद मैंने थॉट क्रिएट की मैं इनके लिए क्या कर सकती हूँ।
1: वाह।
0: जब आप पेन कंज्यूम नहीं करेंगे ना दूसरे का, और आप खुद पेन नहीं क्रिएट करेंगे, आप दूसरे को शक्ति देने वाले बन जाते हैं। दैट्स एम्पैथी। तो लेकिन हम सबका अपने पे ले लेते हैं, ये मेरे साथ गलत कर रहे हैं, ये मुझे तंग कर रहे हैं, ये मुझे, और हम सबकी वजह से अपने माइंड को डिस्टर्ब कर लेते हैं और फिर हमारे से भी उनको वो नेगेटिव एनर्जी जाती है। तो हम सब एक दूसरे को एक्चुअली डिप्लीट करते जाते हैं, हम एक दूसरे को एनर्जाइज कर रहे हैं।
2: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर, बाय नाउ एंड पे लेटर। आरके ज्वेल्स,
1: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
2: कंडीशंस अप्लाई।
3: द मॉर्गेज इंडस्ट्री हैज चेंज्ड ओवर द इयर्स, पर हमारी ऑनेस्ट एडवाइस आज भी वही है।
4: जेसन एंड समीर आर ऑफिशियली रीलॉन्चिंग एसडी कैपिटल फंडिंग विद अ रिन्यूड फोकस ऑन यू।
5: बाइंग अ होम, आवर रेट सेवर विल बीट योर लॉक्ड रेट।
4: ऑलरेडी अ होम ओनर? ड्रॉप योर मंथली पेमेंट्स विद आवर फ्री रेट अलर्ट सिस्टम। एसडी कैपिटल फंडिंग सर्विस जिस पर सब करे भरोसा।
6: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
7: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
6: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
7: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
8: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लायन मॉर्गेज, the king of mortgage industry.
9: Since over 15 years, Lion Mortgage has been assisting first-time home buyers with loan. Their experience and knowledge of mortgage industry really helps clients to get the best possible deals on refinance. A professional service with quick, accurate and impressive follow-up. Lion Mortgage offers special zero closing cost on refinance options.
0: For more information, call 732-339-3155. That is 732-339-3155.
10: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
11: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
10: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.

0: इट्स हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: 20 minutes of back-to-back music brought to you by RK Jewels. Best quality, best price. Only on Radio Mirchi 92.7 FM and 103.3 FM HD2. It's hot.

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्र विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी क्यों कहती है कि अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल किसी और को नहीं देना चाहिए?
2: आइए जानते हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा के इस स्पेशल एपिसोड में
1: ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी और विशाल सेठिया के साथ।
3: आपने बीच में एक बात कही और मैंने आपको एक वीडियो भी देखा था जहां आपने बहुत खूबसूरती से कहा कि अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल किसी और को मत दो। मुझे वो बात इतनी अच्छी लगी बिकॉज बड़े संक्षेप में आपने बहुत खूबसूरत सी बात कह दी। तो ज्यादातर हम बहुत सारी चीजें करते हैं और दूसरों को ब्लेम करते हैं, सिचुएशन को, इंसान को। ये जो खूबसूरत जो आपने बात कही कि दूसरों को रिमोट कंट्रोल मत दो, ये एमिनेट कहाँ से होता है और ये करना कैसे है?
4: एक्चुअली रिमोट कंट्रोल है ही नहीं किसी और के हाथ में। कोई मुझे तंग कर सकता है
3: जी।
4: कोई मेरे साथ झूठ बोल सकता है।
3: हाँ।
4: कोई मुझे धोखा भी दे सकता है। कोई मुझे एक्सप्लॉइट भी कर सकता है। ये पावर दूसरों के पास है, लेकिन कोई मेरे मन में घुस के मेरी सोच नहीं बना सकता है। वहां कोई नहीं, कोई मुझे फिजिकली भी हिट कर सकता है, लेकिन यहाँ मेरे मन में घुस के कोई मेरी सोच नहीं बना सकता है। लेकिन ये हमको बचपन से किसी ने सिखाया नहीं, तो हमारी वोकैबुलरी बन गई। उन्होंने मुझे हर्ट किया, उन्होंने मुझे अपसेट किया, उन्होंने मुझे गुस्सा किया, उन्होंने ये किया, हमने सब कुछ उन पर डाला। तो ऐसे करते करते हमारा माइंड सिचुएशन और लोगों के बिहेवियर पर डिपेंडेंट होने लगा, ये हमें लगा, क्योंकि हमने अपने माइंड की पोटेंशियल को यूज ही नहीं किया। हमने कहा उन्होंने गुस्सा किया, बुरा तो लगना ही था। अच्छा नहीं लगता तो चार लोग आसपास बोलते तुम्हें बुरा नहीं लगा, उन्होंने कितना गुस्सा किया। ये हमारी कंडीशनिंग हो गई। बट एक्चुअली आंख बंद करो, लास्ट टाइम देखो किसी ने आपको गुस्सा किया या आपने किसी को किया, आपके पास पांच ऑप्शन है आप कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते थे। आप चुप रह सकते थे, आप प्यार से जवाब दे सकते थे, कुछ नहीं तो आप कमरे से, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो वो ऑप्शंस कौन क्रिएट कर रहा है? हम क्रिएट करें, स्टार्ट क्रिएटिंग द ऑप्शन। हम ऑप्शन सोचते ही नहीं क्योंकि हम कहते हैं उन्होंने मुझे हर्ट किया। लोग हमें तंग कर सकते हैं, फिजिकली भी तंग कर सकते हैं, हिट कर सकते हैं, मन में कोई नहीं घुस सकता है। तो रिमोट कंट्रोल देने का मतलब ही नहीं है, रिमोट कंट्रोल है ही नहीं किसी के पास। एक्चुअली हमारी ये भाषा है जो हम इसको रिपीट रिपीट रिपीट करते जाते हैं। एक बहन आई सेंटर पर 40 इयर्स ओल्ड राइट नाउ। जब वो 5 साल का बच्चा थी तो उसके पेरेंट्स को कहीं बाहर जाना था, तो उन्होंने अपने किसी फैमिली फ्रेंड के साथ उस 5 साल की लड़की को छोड़ा। वहां कुछ गलत हुआ बहुत। तो जब वो आए वापस, वो 5 साल का बच्चा नहीं समझता बात को, तो वो 5 साल के बच्चे ने पेरेंट के अगेंस्ट होल्ड कर लिया कि मेरे पेरेंट ने वहां छोड़ा है ना। तो उसका पेरेंट के साथ रिलेशनशिप कभी अच्छा नहीं रहा। And because of what happened, उसके अंदर इतनी कड़वाहट भरी about the world, उसने कोई रिश्ते नहीं जोड़े, लोगों पर विश्वास करना बंद कर दिया, बस अकेले अकेले अकेले, the world is not nice. ऐसे 35 साल बीत गए। तो एक दिन वो मेडिटेशन रूम में बैठी थी और बाहर आई, एंड आई एम गिविंग यू हर एग्जैक्ट वर्ड्स, शी सेड, सिस्टर उस व्यक्ति ने जो किया उसने मेरे शरीर को अब्यूज किया एक बार 35 साल पहले। मैं 35 साल से अपने आप को अब्यूज कर रही हूँ और आज I let that person go. Life changed after that. उसका अपना पेरेंट्स के साथ रिश्ता चेंज हो गया, उसका खुद खुद की बॉडी के साथ रिश्ता चेंज हो गया, उसका everything changes. तो इसका मतलब ये नहीं कि जिसने वो किया वो गलत नहीं था, वो तो गलत था ही, उस पर तो कोई डिस्कशन ही नहीं है। लेकिन हम मन पर उसको कितना पकड़े, कैसे पकड़े, उसकी वजह से हम खुद के साथ गलत करते। तो खुद से प्यार करना सीखें, खुद का ध्यान रखना सीखें, बी काइंड टू योरसेल्फ, लव योरसेल्फ, डोंट सिट एंड वेट फॉर द वर्ल्ड टू बी नाइस टू यू। अगर आप अपने आप के साथ अच्छे होते हैं ना, कोई आपके साथ गलत नहीं कर सकता।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए। आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर, बाय नाउ एंड पे लेटर। आरके ज्वेल्स,
6: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
7: कंडीशंस अप्लाई।
8: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
9: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
10: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
11: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
12: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
11: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
12: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
11: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
7: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
13: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
7: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
14: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: चार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: याद रखिए, डर आपको अच्छे काम करने से रोक सकता है, लेकिन इस डर से आगे कैसे बढ़ें?
2: आइए जानते हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा के इस स्पेशल एपिसोड में
1: ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी और विशाल सेठिया के साथ।
3: सिस्टर, हाल फिलहाल में ना बॉम्बे की लोकल ट्रेन में एक बहुत बुरा हादसा हुआ। दो लोग गेट पे खड़े थे चलती ट्रेन में और बारिश हो रही थी। एक ने कहा दरवाजा बंद करते हैं, दूसरे ने कहा नहीं करते। झगड़ा हुआ, लोगों ने उनको अलग किया। एक बंदा गया, उसके पास चाकू था, वो आया, उसको दूसरे वाले को खून कर दिया। ये सारी चीजें होती हैं, पढ़ते हैं आप, आपको ऐसा लगता है कि कैसे हो रहा है। मेरा सवाल थोड़ा सा अलग है कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उनको अलग पहली बार किया था, लेकिन जब वो बंदा वापस चाकू लेके आया और जब वो उस पे वार कर रहा था, उस समय लोगों ने वीडियो बनाया, हेल्प नहीं किया। एक शायद सोच ये है कि इसके पास चाकू है, मुझे भी मार सकता है, शायद इस वजह से लोगों ने इंटरवीन नहीं किया, लेकिन बहुत सारे लोग थे। ऐसा सिचुएशन अगर हो, क्योंकि हो कुछ भी सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है, जब मैं उस लोकल ट्रेन में हूँ, मैं क्या करूँ उस वक्त?
4: अगर इतने सारे लोग थे तो आसानी से एक व्यक्ति को ओवरपावर कर सकते थे। फियर ना,
3: हाँ,
4: तो फियर का संस्कार है, बट फोन निकाल के उसको रिकॉर्ड करना, ऑफ कोर्स, बट मे बी ये पर्सपेक्टिव से भी रिकॉर्ड हो रहा है कि उसको प्रूफ की तरह दिखाना है, देन दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर उसको सोशल मीडिया पे डालने के लिए रिकॉर्ड हो रहा है तो वो इंटेंशन ही पूरी तरह से गलत है। बट फियर, तो वो फियर हमारी अपनी स्ट्रेंथ हमें यूज करने नहीं देता ना, क्योंकि हम अज्यूम करते हैं कि मेरे साथ नुकसान होगा। अगर कोई अकेला होता तो हो भी सकता है, लेकिन इतने सारे लोग अगर इकट्ठे थे वो इजीली उस व्यक्ति को ओवरपावर कर सकते थे, बट फिर वो यूनाइटेड होकर करना पड़ता है ना।
3: तो इसके बाद ना मैंने कई लोगों से पूछा कि आप होते तो क्या करते। आप होते, कुछ लोग थे बिल्कुल मैं हेल्प करता, और कुछ लोग बिल्कुल चांस ही नहीं, भैया मेरे को कुछ हो जाएगा, मेरे को कौन देखने आएगा। तो when we are divided as a society in one small little thing,
4: yes,
3: how do we bring people together for a good cause?
4: Divided to hamesha honge kyunki har ek ki soch alag hogi. It's not society, aapke ghar pe bhi har ek ki soch alag
3: hai. Bilkul.
4: तो क्योंकि दो लोग एक जैसा नहीं सोच सकते, किसी भी एक चीज के बारे में दो लोग एक जैसा नहीं सोचेंगे, क्योंकि दोनों के जो इंटरनल संस्कार रिकॉर्डेड हैं, आप हर सिचुएशन को उसी नजरिए से देखेंगे। तो नो टू पीपल एक जैसा सोचेंगे हमेशा। हाँ, कोई चीजों पे हमारी सोच मैच कर सकते है, कोई पे नहीं, क्योंकि वो हमारे संस्कारों पे डिपेंडेंट है। तो इकट्ठे आना फॉर अ गुड कॉज डजंट मीन कि हमारी सोच एक जैसी है हर टॉपिक के ऊपर। इट जस्ट मीन्स हमारे पास एक प्योर इंटेंशन है। सोच अलग होगी लेकिन एक प्योर इंटेंशन है कि हमें ये अच्छा काम करना है। अब वो काम करते समय हम सबकी सोच अलग अलग होगी, डिफरेंसेस भी आएंगे, मतभेद भी होगा, लेकिन जब इंटेंट एक होता है ना, तो वो इंटेंट वो धागा बन जाता है जो सबको जोड़ के मैजिक क्रिएट कर लेता है। सिर्फ ये चेक करना है इनका और मेरा इंटेंट एक है ना, तो उसके लिए मैं अपनी एक सोच को छोड़ने के लिए भी रेडी हूँ, मैं अपने ईगो को बेंड करने के लिए भी रेडी हूँ। इंटेंट सेम होना चाहिए, तो फिर सोच को चेंज मोल्ड एक्सेप्ट किया जा सकता है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: काफी हो।
1: कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: You are listening to 103.3 FM HD2 WPRP Princeton, New Jersey and 92.7 W224 CW Franklin Park, New Jersey. Radio

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
4: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए। आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर, बाय नाउ एंड पे लेटर। आरके ज्वेल्स,
5: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
6: कंडीशंस अप्लाई।
7: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट एसडी कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आर रेट सेवर टुडे।
8: बेटा, शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
9: अरे माँ, अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना। इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में।
8: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
10: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS, NMLSID 2108069।
11: इट्स 2 AM, हर फीवर इज क्लाइंबिंग एंड अ पीडियाट्रिशियन्स ऑफिस इज क्लोज्ड टिल मंडे। व्हाट डू वी डू?
12: Don't worry, I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
11: Wait, they can see us on Sunday?
12: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
13: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
14: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
13: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
15: Hidda!
16: Hi everybody, New Jersey is where we're going to be.
17: Sneakers, Kanjivaram sari, aur wahi electrifying vibe. Experience the queen of pop, Usha Uthup, live and up close. October 11th, Agrani Durga Puja, New Jersey. Book on agranish.booktix.com or Sulekha. Call 954-918-8589.
18: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
19: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
20: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
21: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
0: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
21: Explore our stunning bridal lehengas aur exclusive reception wear.
0: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
21: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islin.
22: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
23: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
22: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। आज है सितंबर द 11th एंड व्हाइल वी होल्ड अ लॉट ऑफ लव, रिस्पेक्ट एंड डीप सॉलम थॉट्स फॉर आवर होम ग्राउंड, लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट एल्स वेंट डाउन ऑन दिस डेट इन हिस्ट्री। बैक इन 1841 एन इन्वेंटर पेटेंटेड द कोलैप्सिबल पेंट ट्यूब बिकॉज कैरियिंग रॉ पेंट इन पिग ब्लैडर्स वॉज नॉट गिविंग एस्थेटिक वाइब्स। Fast forward to 1997, Scotland voted to establish its own parliament. And 2007 May, Russia tested the father of all bombs by what a name. Definitely sounds like an angry Desi dad returning home. And then came 2001, a date that changed the world forever. 19 Al-Qaeda militants hijacked 4 commercial planes, 2 crashed into New York's World Trade Center, 1 hit the Pentagon, and United Flight 93 crashed in Pennsylvania after passengers and crew fought back against the hijackers. Total 2,977 innocent people were killed. And today we remember the lives lost and the courage of those who fought back. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और हमने देखा आज का दिन हिस्टोरिकली क्यों सिग्निफिकेंट है। तो मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर, 9033 मिर्ची इज माय नंबर, दैट्स 9033647244, एंड इंस्टाग्राम और एक्स पर मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। अभी फिलहाल सुनते रहो मिर्ची, स्टे विथ मी, स्टे ट्यून्ड।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Jai Gurudev. અવસર આવીને ઉભો છે આંગણે. ચલો ભેગા મળી ગણેશજીના આગમનની તૈયારી કરીએ. આપણે ગાયત્રી ચેતના સેન્ટરના ગણેશ ઉત્સવમાં જોડાયો, જેમાં
3: 13 સપ્ટેમ્બર રવિવાર
2: સાંજે 4 વાગે થશે ગણેશ સ્થાપના અને સાંજે 7 વાગે થશે ગણેશ આરતી અને 20 સપ્ટેમ્બર સાંજે 4 વાગે વિસર્જન. વધુ માહિતી માટે કોલ ગાયત્રી ચેતના સેન્ટર, વિસ્કાટવે, ઓન 732-357-8200. જય ગુરુદેવ.
4: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए. आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर. बाय नाउ एंड पे लेटर. आरके ज्वेल्स,
5: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
6: कंडीशंस अप्लाई.
7: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
8: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
7: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
8: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन.
9: बेटा, शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है.
10: अरे माँ, अभी भेजता हूँ. टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे. टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में.
9: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट.
11: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे. टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069.
12: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
13: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
14: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
15: Famous Indian astrologer Pandit Ram Dev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ram Dev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
16: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
17: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
16: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
17: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
16: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़िलिन.
18: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं. ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स.
19: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल. ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का. सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी. स्टेप इन टू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़िलिन, न्यू जर्सी.
20: मोदक से लेकर लड्डू तक इस गणेश चतुर्थी हर स्वीट और स्वीट विशेस का भोग चढ़ेगा सिर्फ राजभोग के यहाँ से. राजभोग विशेस यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी. ऑर्डर्स ऑन राजभोग.com और विजिट योर लोकल ग्रोसरी स्टोर.
3: 20 मिनट्स ऑफ बैक टू बैक म्यूजिक ब्रॉट टू यू बाय आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस, ओनली ऑन रेडियो मिर्ची 92.7 FM एंड 103.3 FM HD2. इट्स हॉट.
21: Let's go crazy.

0: साथ जीतू राज, only on मिर्ची, it's hot.
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बा देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपनी अपनी कालीन चद्दर बिछाकर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज दिन तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खूनरेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ये भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक और त्योहार है। हम तो हका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो हैं, ये का भौकाल मचाया मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां भूलना मत, हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते हैं ना भैया, अमा पनवा चटाई के जब धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगा है कि ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3:30 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर, आए @ मिर्ची जीतूराज, समझे कि नहीं समझे, सही है।
0: साथ जीतूराज, only on मिर्ची, it's hot.
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
5: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
4: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
6: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
7: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर, बाय नाउ एंड पे लेटर। आरके ज्वेल्स,
8: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस,
9: कंडीशंस अप्लाई।
10: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
11: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
10: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
11: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड इजलिन।
12: मोदक से लेकर लड्डू तक इस गणेश चतुर्थी हर स्वीट और स्वीट विशेस का भोग चढ़ेगा सिर्फ राजभोग के यहाँ से। राजभोग विशेस यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी। ऑर्डर्स ऑन राजभोग.com और विजिट योर लोकल ग्रोसरी स्टोर।
13: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
14: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
13: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
15: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
16: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
15: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
16: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
15: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
17: तेरा क्या होगा कालिया?
18: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
17: अब मिर्ची खा।
19: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

नी तू झट नू पसंद होगी, गर्मी च ठंड होगी, मैं तेरा चॉकलेट तू मेरी खंड होगी, मैं भी मलंग होया तू भी मलंग होगी, तिरछी नजर तेरी आशकां ली पंग होगी।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Welcome to Mirchi Hour 3. मैं हूँ Priscilla तुम्हारे साथ में. This is Mirchi Mornings. सबसे पहले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस्ड प्रपोज्ड $5,000 डिविडेंड फॉर अमेरिकन एडल्ट्स एंड नेचुरली सोशल मीडिया स्टार्टेड डूइंग व्हाट सोशल मीडिया डज बेस्ट कंपैरिजन शॉपिंग सम यूजर्स कंपेयर्ड द आइडिया विद कैश ट्रांसफर स्कीम्स अनाउंस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया पॉलिटिक्स का यूनिवर्सल फॉर्मूला है कैश की बात हो तो पब्लिक सडनली बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाती है नंबर टू पर द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हैज प्रपोज्ड रिमूविंग द एग्जिस्टिंग 60-day ग्रेस पीरियड फॉर फॉरेन वर्कर्स इंक्लूडिंग H-1B employees after they lose their jobs. That could have a significant impact on Indian professionals in the US. Now understand this is a proposal. Right now it's not a final rule. And lastly, Apple ne foldable phones nikale hain aur wallet ne kaha hai main fold kar raha hoon. Apple's new iPhone duo reportedly starts at 2,000, 99,000 and 900 rupees in India while the 256GB model is listed at 1,999 in the US. And that's it for Mirchi Hour 3. At this hour, मैं हूँ Priscilla तुम्हारे साथ में. मुझसे कनेक्ट करो Insta और X पर. मेरा हैंडल है Mirchi Pris and WhatsApp का नंबर है 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: Mirchi.
1: Escabana, pues cabana, sacabana.
2: ¡Cabana!
1: ¡Murga, murga! ¡La vieja la murga!
2: ¡Mirchi, murga!
3: हेलो
4: मिल गया मैडम, आप मयूर विहार में हमारा रक्षा पे बैठ के मयूर विहार फेज वन से फेज टू गई थी, याद आया आपका?
3: नहीं, नंबर कहाँ से मिल गया?
4: वही आपको बता रहे हैं, आप जब उतर के गई है ना अपने घर, और घर के जो आपके पड़ोसी हैं, हम उनसे नंबर आपका लिए हैं, मोबाइल नंबर जो आप बोले हैं दाए को मुड़ने के लिए, जब दाए मुड़े हैं ना हम, मैडम आपका रास्ते में फोन भी आया था, जब आपका फोनवा बजा है तो आपकी आवाज सुने हैं हम, बहुत अच्छा लगा है आवाज सुन के। आज जब रिक्शा पे बैठी है ना, मैं हम कसम खा रहे हैं, हम जब से आप बैठे हो उस सीट को हम कि छूने भी नहीं दिए, हम धुलाए भी नहीं है।
3: क्या तुझे पागल लगा?
4: नहीं, वो मैडम हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे।
3: क्या कहना है?
4: मैडम आई लव यू, हम आपको देख के इतना मेरी बात है। चारू चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना, चारू चारू चलो। हेलो हेलो हेलो हेलो चारू, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे किसी ने तुम्हारा नंबर लिया था, उसने मुझे बताया कि तुमने रिक्शा पे ट्रैवल किया था, रिक्शा पे बैठ के गई थी, मैंने तो मजाक किया, तुम्हारा मुर्गा बना दिया। आई लव यू बट मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ यार, आई लव यू, मैं रिक्शा नहीं चलाता हूँ। चारू प्लीज बुरा मत माने यार, थोड़ा सा नहीं, रिक्शा मैं चलाने को तैयार हूँ यार तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम प्लीज जरा थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो, मेरे साथ प्यार से हंस के बोल दो।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: It's 2 a.m. Her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
8: Don't worry. I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
7: Wait, they can see us on Sunday?
8: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
9: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर, बाय नाउ एंड पे लेटर। आरके ज्वेल्स,
10: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस,
11: कंडीशंस अप्लाई।
12: तो हो जाइए तैयार एक ऐसी यादगार शाम के लिए जहां होगा संगीत, मस्ती, नॉस्टैल्जिया और उषा उथुप का वही लेजेंडरी इलेक्ट्रिफाइंग अंदाज। इस दुर्गा पूजा न्यू जर्सी झूमेगा एक लेजेंड के साथ।
13: अक्टूबर 11th अग्रणी दुर्गा पूजा NJ, टिकट सेलिंग फास्ट ऑन सुलेखा, कॉल 9549188589।
14: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
15: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
14: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
13: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
16: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
17: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
16: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
17: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
18: फेमस इंडियन एस्ट्रोलॉजर पंडित रामदेव इज नाउ इन न्यू जर्सी, एक्सपर्ट इन पाम रीडिंग, फेस रीडिंग, हॉरोस्कोप्स एंड बर्थ चार्ट। कॉल पंडित रामदेव फॉर ऑल योर एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस ऑन लव, रिलेशनशिप्स, बिजनेस एंड करियर। कॉल 732-366-6777।
19: मोदक से लेकर लड्डू तक इस गणेश चतुर्थी हर स्वीट और स्वीट विशेष का भोग चढ़ेगा सिर्फ राजभोग के यहाँ से। राजभोग विशेष यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी। ऑर्डर्स ऑन राजभोग.com और विजिट योर लोकल ग्रोसरी स्टोर।
20: Inefficient,
21: very complex,
22: clumsy or
23: confusion ही confusion,
19: disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं। टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ, अपने business के लिए Zoho One ले आओ। Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं। Yes, you heard that right, you can run your entire business, sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR, काम अनेक, software एक, Zoho One। Get your free trial at zoho.com/one।
0: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
11: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
0: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
20: Batting to kafi sare karte hain. Virat ek hi hota hai.
21: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
20: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
22: Ise apni jeb mein rakh le Peter. अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
20: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है.
24: एक ही होता है.
20: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची. बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: यार इस वीकेंड कोई जबरदस्त प्लान बताना।
3: अरे मेरा बच्चा है तू, चल तुझे हंसी की फुल डोज दिलवाता हूँ यार।
4: प्रयोग थिएटर ग्रुप के 50th फेस्टिवल में धुरंधर फेम राकेश बेदी और अनंत महादेवन का प्ले लास्ट ओवर और साथ में कलरफुल नौटंकी आला अवसर भी है।
5: संडे सितंबर 27th 4 PM जोएन मजेस्ट्रो परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर ईस्ट ब्रंसविक। बुक योर सीट्स एट प्रयोगथिएटर.com।
6: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए। आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर। बाय नाउ एंड पे लेटर। आरके ज्वेल्स,
7: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
8: कंडीशंस अप्लाई।
9: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
10: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
11: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
12: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
13: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
12: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
13: विजिट टुडे 1358 ओक री रोड, इज़िलिन।
14: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
15: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना। इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
14: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
16: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
17: The mortgage industry has changed over the years, par hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
18: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
17: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
18: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
19: देसी खाना,
20: देसी शॉपिंग,
19: देसी कल्चर
20: और देसी एंटरटेनमेंट,
19: बस एक ही डेस्टिनेशन,
20: इंडो अमेरिकन कम्युनिटी फेयर सितंबर 12th और 13th, श्री कृष्णा मंदिर मॉर्गनविल।
21: फॉर वेंडर्स एंड इन्फॉर्मेशन विजिट www.krishnatemple.org।
22: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
23: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
22: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
23: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
22: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
24: मोदक से लेकर लड्डू तक इस गणेश चतुर्थी हर स्वीट और स्वीट विशेस का भोग चढ़ेगा सिर्फ राजभोग के यहाँ से। राजभोग विशेस यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी। ऑर्डर्स ऑन राजभोग.com और विजिट योर लोकल ग्रोसरी स्टोर।
25: तेरा क्या होगा कालिया?
26: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
25: अब मिर्ची खा।
27: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: नहीं लेकिन दिमाग खराब तू झरना कहीं तेरी दुकान पे पंगा ना लूं मेरे साथ काफी हो गई बक बक
1: बाकी बातें पीने बाद
0: शुभ हुए बादशाह।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: बेटा, शादी next week है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
4: अरे माँ, अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना। इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटेटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
3: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
5: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
6: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए। आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर, बाय नाउ एंड पे लेटर। आरके ज्वेल्स,
7: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
8: कंडीशंस अप्लाई।
9: It's 2 a.m. Her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
10: Don't worry. I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
9: Wait, they can see us on Sunday?
10: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
11: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
12: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
11: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
13: Listener mein back to back gana sunega.
14: Back to back gana sunega.
13: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: Energy Mornings with Priscilla. It's hot.
1: हेलो जी, टाइम आ चुका है पता करने का कि गोल्ड का क्या हाल चाल चल रहा है। मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में ये है मिर्ची मॉर्निंग्स।
2: Rajjewels.com wishes everyone happy and healthy morning. Gold trading at $4,325. $4,325 पर ट्रायंस के साथ आज सुबह गोल्ड के प्राइस ट्रेड कर रहे हैं। कल से मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड पर है और एक डेफिनेटली एंट्री पॉइंट बढ़ता है इन्वेस्टमेंट गोल्ड बार्स के लिए। 1 ounce, 10 ounce, 100 grams, किलो बार, पैम सर्टिफाइड गोल्ड एंड सिल्वर बार अवेलेबल एट राज ज्वेल्स। आइए गोल्ड में इन्वेस्ट करें Rajjewels.com के साथ। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू।
1: सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स विद मी प्रिसिला। कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर 9033647244। स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट।
0: दिस गोल्ड अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय राज ज्वेल्स, किंगडम ऑफ ज्वेल्स, वेयर ट्रेडिशन मीट्स स्टाइल।

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virpa la burga.
1: Mirchi, burga.
2: हेलो,
3: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
2: हाँ जी
3: यार, कमाल कर दिया आपने। जो फोटो खींचे थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
2: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
3: अरे फोटो आके देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार। सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
2: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
3: फोटो? बहुत अच्छा है। सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बकवा दिए यार। सारे दिमाग
2: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
3: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
2: मैंने देखी खुद अपने हाथ से। सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए एक से बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
3: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
2: अरे शर्म की क्या बात है सर,
3: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार। तूने किया क्या ये?
2: किसी का
3: कपड़े गायब है? एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
2: लगाया नहीं।
3: क्या कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े
2: गायब
3: नहीं। मैं कल को
2: फोटो।
3: अरे लेंस ऐसे
2: पूरे
3: कपड़े कौन से? मैंने शेरवानी पहन रखी थी, शेरवानी गायब है, अंदर से सब दिख रहा है यार। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी।
2: अरे
3: मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
2: नहीं साहब, देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसने हमारा नाम है इलाके में।
3: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे हैं।
2: सर क्या बात, चुन के बनाया है?
3: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया। मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू, उसका चलो छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं है। वो खड़ा है, जितने बराती आए हैं सबके कपड़े गायब है। ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
2: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे।
3: गड़बड़
2: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
3: यार। इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है
2: नहीं।
3: दिखाइए आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार।
2: कोई सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए।
3: ऐसा सिस्टम है, एक जगह होता है।
2: कहाँ होता है बताइए?
4: रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: कि जसनीत नू निहाल सिंह वापस पिंड लेके आ पाएगा?
9: जे तू जसनीत नू वापस ना लेके आया पुत, तो मेरा भी मरीदा मुंह देखेगा।
8: कि पिंड वाले जसनीत नू वापस पिंड देख पाएंगे? वेखो सिंह वर्सेस कौर 2 रिलीजिंग ऑन 11 सितंबर, स्टारिंग गिप्पी गरेवाल, शहनाज गिल, डायरेक्टेड बाय नवनीत सिंह, प्रोड्यूस्ड बाय गिप्पी गरेवाल, रवनीत कौर गरेवाल, श्रीकांत मोहता एंड महेंद्र सोनी।
10: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर, बाय नाउ एंड पे लेटर। आरके ज्वेल्स,
11: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
12: कंडीशंस अप्लाई।
13: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
14: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
15: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
16: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
17: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
16: Buying a home? Our rate saver will beat your locked rate.
17: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding. Service jis par sab kare bharosa.
18: It's 2 a.m. Her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
19: Don't worry. I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
18: Wait, they can see us on Sunday?
19: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
12: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
20: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
21: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
20: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
21: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
20: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
22: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
23: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
22: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
24: Tera kya hoga, Kalia?
25: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
24: Ab, mirchi kha.
26: Radio Mirchi, it's hot.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: हेलो, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में राशि जोन नंबर वन में तुम्हारा स्वागत है ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग
2: मिर्ची राशि जोन।
1: एरीज यानी मेष राशि, कॉन्फिडेंस इज अप, बस कॉन्फिडेंस को ईगो का कजन मत बनने देना। स्टे ओपन, पर्सनल लाइफ में कुछ एक्साइटिंग डायनामिक्स डेवलप हो सकते हैं। लकी कलर इज कोरल, लकी नंबर इज 17। टॉरस यानी वृषभ राशि, किसी की इंटेंशन समझ नहीं आ रही, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, तुम्हारी मेहनत का रिवॉर्ड और रिलीफ दोनों स्लोली कमिंग योर वे है। लकी कलर इज सेज ग्रीन, लकी नंबर इज 6। जेमिनी यानी मिथुन राशि, कम्युनिकेशन इज योर सुपर पावर टुडे, क्रिएटिव आइडियाज शेयर करो बिकॉज फ्रेश डोर्स कैन ओपन एंड home priorities, time for a little reset. Lucky color is sky blue, lucky number is 23. Cancer yani karak rashi, heart feeling heavy lately, fresh emotional energy is coming in, family matters mein warmth or renewal, bas dil ko thoda sa breathing space do. Lucky color is pearl white, lucky number is 9. Leo yani ki siha rashi, today putting yourself first is not selfish, it's smart. प्रायोरिटीज सेट करो, रूटीन फिक्स करो और अपनी वेलबींग को वीआईपी ट्रीटमेंट दो। लकी कलर इज मैरी गोल्ड, लकी नंबर इज 31। वगो यानी खन्या राशि, रेस्ट एंड रिफ्लेक्ट मोड से अब ऑर्गेनाइज एंड एक्शन मोड में आ जाओ। प्रैक्टिकल हेल्थ रूटीन्स बनाओ एंड आउटडेटेड एक्सपेक्टेशंस को पोलाइटली अनसब्सक्राइब करो। लकी कलर इज लैवेंडर, लकी नंबर इज 14। एंड दैट वाज योर राशि जोन पार्ट वन। अभी तो मिर्ची दार बैंगर्स सुनो और मुझे जाकर फॉलो करो। मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, एंड व्हाट्सएप करो 9033647244 पर। मैं लेकर आती हूँ मिर्ची का राशि जोन पार्ट टू इन जस्ट अ व्हाइल, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: यार इस वीकेंड कोई जबरदस्त प्लान बताना।
3: अरे मेरा बच्चा है तू, चल तुझे हंसी की फुल डोज दिलवाता हूँ यार।
4: प्रयोग थिएटर ग्रुप के 50th फेस्टिवल में धुरंधर फेम राकेश बेदी और अनंत महादेवन का प्ले लास्ट ओवर और साथ में कलरफुल नौटंकी आला अवसर भी है।
5: संडे सितंबर 27th 4 PM जोएन मजेस्ट्रो परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर ईस्ट ब्रंसविक। बुक योर सीट्स एट prayogtheatre.com।
6: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए। आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर। बाय नाउ एंड पे लेटर। आरके ज्वेल्स,
7: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
8: कंडीशंस अप्लाई।
9: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
10: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
9: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
10: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन।
11: जय गुरुदेव। अवसर आवी ने उभो छा आंगणे, चलो भेगा मड़ी गणेश जी ना आगमन नी तैयारी करिए। अपने गायत्री चेतना सेंटर ना गणेश उत्सव मा जोड़ायो, जेमा
12: 13 सितंबर रविवार
11: सांजे 4 वागे थशे गणेश स्थापना, अने सांजे 7 वागे थशे गणेश आरती, अने 20 सितंबर सांजे 4 वागे विसर्जन। वधु माहिती माटे कॉल गायत्री चेतना सेंटर, विस्काटवे, ऑन 732-357-8200। जय गुरुदेव।
13: Did you see my new couch? We picked it up from Incanto in Italy. And that dining table? It's from Catalan, Italia.
14: Ye Mrs. Chopra na keeps showing off her furniture just because her husband's business picked up recently. When did she visit Italy? Chopra saab, so how was Italy?
15: Italy? Oh, all the stylish furniture is from Italmode Furniture on 685 New Jersey, 17 South in Paramus, New Jersey. They carry stylish premium Italian brand like Estero Milano, Pietro Costantini and much more.
14: What? Italmode Furniture in Paramus? Aji sunte ho? To abhi chalo, Italmode Furniture pe. Agli party, hamare ghar pe.
16: Italmode Furniture, 685 New Jersey, 17 South, Paramus, New Jersey. Or shop online at italmodefurniture.com and have it delivered anywhere in the US.
17: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
18: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इजलिन, न्यू जर्सी।
9: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
10: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
9: Explore our stunning bridal lehengas or exclusive reception wear.
10: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
9: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islington.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: Hey there, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। बकल अप फॉर योर राशि जोन पार्ट टू ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स।
2: मिर्ची राशि जोन।
1: लिब्रा यानी कि तुला राशि, रीसेंट ड्रामा ने दिमाग का वाईफाई स्लो कर दिया है और मैच्योर पर्सन की एडवाइस क्लैरिटी ला सकती है। कीप इट प्रैक्टिकल ग्राउंडेड एंड ड्रामा को सीन पर छोड़ दो। लकी कलर इज टील, लकी नंबर इज 28। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, मल्टीपल प्रायोरिटीज, यू हैव गॉट दिस बेबी, प्लस अ कैजुअल न्यू कनेक्शन और अ पॉजिटिव शिफ्ट इन फ्रेंडशिप कुड मेक योर डे इंटरेस्टिंग। लकी कलर इज बर्गंडी, लकी नंबर इज 11। सैजिटेरियस यानी धनु राशि, योर अनयूजुअल अप्रोच कुड कैच द अटेंशन ऑफ समवन हायर अप, नाइस। बस कोवर्कर्स के कमेंट्स को पर्सनली नहीं लेने का एंड प्रोटेक्ट दैट मेंटल पीस। लकी कलर इज इलेक्ट्रिक ब्लू, लकी नंबर 35। Capricorn yani Makar Rashi, today is about compassion and emotional awareness. Recent challenges may be changing how you see the bigger picture and honestly, growth ka yahi to point hai. Lucky color is forest green, lucky number is 19. Aquarius yani Kumbh Rashi, surprise, an unexpected gift or helpful offer could brighten your day. The responsibilities thodi si heavy hai, lekin hey, free help ko universe ka accept button samjho. Lucky color is peach, lucky number is 42. And last but not the least, Pisces yani ki Meen Rashi, romance and emotions are swimming around today. Very on brand Pisces, say what you feel, clear the air and maybe finally get that closure you've been waiting for. Lucky color is rose pink, lucky number is 7. And there you have it, your Rashi Zone part 2 is done. Lekin Mirchi Mornings is still on. Main hoon Prisila tumhare saath mein. Mujhe follow karo Insta aur X pe, mera handle hai Mirchi Pris and WhatsApp par mera number hai 9033647244. Abhi ke liye suno Mirchi Dar bangers, stay tuned and stay hot.
0: Na chuskiyon mein, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: क्या आपको हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकेयर या गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स को लेकर कोई सवाल है? तो यूनाइटेड हेल्थकेयर प्राउडली अनाउंस करता है हमारा नया एडिसन एशियन रिसोर्स सेंटर की ओपनिंग।
6: ये सेंटर कन्वीनियंटली लोकेटेड है 561 US Highway 1 एडिसन विक शॉपिंग मॉल के अंदर।
5: यहाँ आपको अपने हेल्थ केयर बेनिफिट्स और कवरेज ऑप्शंस समझने के लिए पर्सनलाइज सपोर्ट मिलेगा। हमारी प्रोफेशनल टीम आपको फ्री कंसल्टेशन देगी ताकि आप मेडिकेयर, इंडिविजुअल और फैमिली हेल्थ प्लान्स और गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स को बेहतर समझ सके। तो आज ही विजिट कीजिए एडिसन एशियन रिसोर्स सेंटर।
7: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए। आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर, बाय नाउ एंड पे लेटर। आरके ज्वेल्स,
8: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस,
9: कंडीशंस अप्लाई।
10: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
11: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
10: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
11: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
10: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
12: मोदक से लेकर लड्डू तक, इस गणेश चतुर्थी हर स्वीट और स्वीट विशेस का भोग चढ़ेगा सिर्फ राजभोग के यहाँ से। राजभोग विशेस यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी। Orders on Rajbhog.com or visit your local grocery store.
13: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
14: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
13: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
15: Suno brides, agar apni shaadi mein lagna hai ekdam queen,
11: to aaiye fashion queen. Yahan milega royal bridal lehenga collection, stunning sangeet aur party wear dresses, aur grooms ke liye stylish sherwanis.
15: Shaadi shopping ka complete destination, fashion queen.
11: Visit today, 1358 Oak Tree Road, Izzelin.
16: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
17: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
16: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
18: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
16: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है।
9: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: Yeah. Meaty Mitchy. Brighten up your day, we will find a way. On Meaty Mitchy, एक ट्रेंड फॉलो करने की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू?
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: अब देखो इंस्टाग्राम पे हर दूसरे दिन एक नया ट्रेंड ही आ जाता है। जैसे फिलहाल चल रहा है कि भाई अपनी पिक्चर्स आप 80s रेट्रो फॉर्म में पोस्ट कीजिए, और ऐसा करने के लिए हम किस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, यानी AI का। तो जहाँ एक तरफ हम मजे मजे में इंस्टाग्राम पे अपनी फोटोज को 80s रेट्रो स्टाइल में चेंज करके पोस्ट कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक अलग रियलिटी भी है। सो AI मॉडल्स को रन करने वाले जो डेटा सेंटर्स होते हैं, वहाँ थाउजेंड्स ऑफ पावरफुल GPUs होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, और इन सर्वर्स को कूल रखने के लिए भी बड़े अमाउंट में पानी का इस्तेमाल होता है। हाँ जी, वही पानी जो हमारी पृथ्वी से गायब होता जा रहा है। और ये इम्पैक्ट ना सिर्फ डेटा सेंटर्स तक नहीं, इनफैक्ट AI चिप्स बनाने के लिए मिनरल्स की माइनिंग और एनर्जी इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग भी इन्वॉल्वड है। अब आप सोचेंगे कि यार एक इमेज से ऑब्वियसली कोई बड़ा एनवायरमेंटल क्राइसिस तो नहीं हो जाएगा ना, बट फैक्ट तो ये भी है ना कि हर दूसरा इंसान यही सोच रहा है। इन शॉर्ट यहाँ कंसर्न है स्केल का। जब मिलियंस ऑफ यूजर्स एक ट्रेंड के चक्कर में बार बार इमेजेस जनरेट करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और हार्डवेयर की डिमांड कलेक्टिवली काफी बढ़ जाती है। तो मुद्दे की बात यह है बाबू मोशाय कि ट्रेंड का हिस्सा बनो, सही है, बट हर दूसरे ट्रेंड को फॉलो करने से पहले थोड़ा माइंडफुल होना भी जरूरी है। बाकी तो जैसे बच्चे को गुब्बारा काफी, वैसे समझदार को इशारा काफी। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Milchi.
1: Escabana, pues cabana, sacabana.
2: ¡Rambala!
1: ¡Burga, burga! ¡La virtual la burga!
2: ¡Milchi, burga! ¡Acá!
3: हेलो
4: मिल गया
5: मैडम, आप मयूर विहार में हमारा रक्षा पे बैठ के मयूर विहार फेज वन से फेज टू गई थी, याद है आपका?
3: नहीं, नंबर कहाँ से मिल गया?
5: वही आपको बता रहे हैं, आप जब उतर के गई हैं ना अपने घर, और घर के जो आपके पड़ोसी हैं, हम उनसे नंबर आपका लिए हैं, मोबाइल नंबर, जो आप बोले हैं दाएं को मुड़ने के लिए, जब दाएं मुड़े हैं ना हम, मैडम आपका रास्ते में फोन भी आया था, जब आपका फुनवा बजा है तो आपकी आवाज सुने हैं हम, और बहुत अच्छा लगा है आवाज सुन के। आप जब रिक्शा पे बैठी है ना, मैं हम कसम खा रहे हैं, हम जब से आप बैठे हो उस सीट को हम छूने भी नहीं दिए, हम धुलाए भी नहीं है।
3: क्या तुझे पागल लगा?
5: नहीं, वो मैडम हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे।
3: क्या कहना है?
5: मैडम आई लव यू, हम आपको देख के इतना
6: मेरी बात है। चारू चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना, चारू चारू चलो। हेलो हेलो हेलो हेलो चारू, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे किसी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने मुझे बताया कि तुमने रिक्शा पे ट्रैवल किया था, रिक्शा पे बैठ के गई थी, मैंने तो मजाक किया, तुम्हारा मुर्गा बना दिया। आई लव यू बट मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ यार, आई लव यू, मैं रिक्शा नहीं चलाता हूँ। चारू प्लीज बुरा मत मान यार, थोड़ा सा नहीं, रिक्शा मैं चलाने को तैयार हूँ यार तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम प्लीज जरा थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो, मेरे साथ प्यार से हंस के बोल दो।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
7: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
8: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
9: क्या आपको हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकेयर या गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स को लेकर कोई सवाल है? तो यूनाइटेड हेल्थ केयर प्राउडली अनाउंस करता है हमारा नया एडिसन एशियन रिसोर्स सेंटर की ओपनिंग।
10: ये सेंटर कन्वीनियंटली लोकेटेड है 561 US Highway 1 एडिसन विक शॉपिंग मॉल के अंदर।
9: यहाँ आपको अपने हेल्थ केयर बेनिफिट्स और कवरेज ऑप्शंस समझने के लिए पर्सनलाइज्ड सपोर्ट मिलेगा। हमारी प्रोफेशनल टीम आपको फ्री कंसल्टेशन देगी ताकि आप मेडिकेयर, इंडिविजुअल और फैमिली हेल्थ प्लान्स और गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स को बेहतर समझ सके। तो आज ही विजिट कीजिए एडिसन एशियन रिसोर्स सेंटर।
11: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर, बाय नाउ एंड पे लेटर। आरके ज्वेल्स,
12: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस,
13: कंडीशंस अप्लाई।
14: फेमस इंडियन एस्ट्रोलॉजर पंडित रामदेव इज नाउ इन न्यू जर्सी, एक्सपर्ट इन पाम रीडिंग, फेस रीडिंग, हॉरोस्कोप्स एंड बर्थ चार्ट। Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
15: It's 2 a.m. Her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
16: Don't worry. I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
15: Wait, they can see us on Sunday?
16: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
17: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
18: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
17: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
18: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
17: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
19: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
3: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
19: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
0: Tera kya hoga, Kalia?
7: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
0: Ab, mirchi kha.
8: Radio Mirchi, it's hot.

0: दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इन्फॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। From glam to guru avatar, और ये हो रहा है एक्टर रजनीश दुग्गल के साथ, जो फिजिक्स वाला के वन ऑफ द रेनाउंड टीचर्स पंकज सजारिया के ऊपर बन रही बायोपिक में लीड रोल निभाने वाले हैं। माइंड यू, फिजिक्स वाला एक रेनाउंड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म रहा है फाउंडेड बाय अलख पांडे, एंड उनके ऊपर ऑलरेडी एक सीरीज बन चुकी है विद द नेम हेलो बच्चों। नहीं देखी तो प्लीज देख लो, यू लव इट। बट अब जब उनके ही इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के वन ऑफ द रेनाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टीचर्स दैट इज पंकज सजारिया के ऊपर ये फिल्म बन रही है, देन आई एम डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वन। मनोज बाजपेयी इज महात्मा गांधी, सो फिल्म मेकर सुधीर मिश्रा की अपकमिंग डायरेक्टोरियल में मनोज बाजपेयी महात्मा गांधी के रोल में नजर आएंगे, जिस फिल्म का बैकड्रॉप है इंडिया के इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के लेसर नोन 21 डेज पीरियड की कहानी। वैसे अभी तक इस फिल्म को लेकर सारी डिटेल्स अंडर रैप्स रखी गई हैं, बट अभी वाजपेयी साहब का एक लुक जो है वो ऑनलाइन सरफेस हो रहा है, विच डेफिनेटली इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ बज। अर्शद वारसी स्टारर पॉपुलर साइकोलॉजिकल सीरीज असुर की बात करना चाहती हूँ, जिसका थर्ड सीजन इज अंडर मेकिंग, बट इस बार सीरीज के डायरेक्शन का कमाल ओनी सेन ने नहीं उठाया है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम उनके पास कुछ फ्रेश नहीं था टू ऑफर, एंड नाउ द हैट हैज बीन ट्रांसफर्ड टू डायरेक्टर गौरव शुक्ला, जो इस सीरीज के लीड राइटर और शो रनर रहे हैं ऑन द प्रीवियस सीजंस। वैसे अनदर अपडेट इज कि एक्टर एहसान चन्ना ने भी इस सीरीज के स्टारकास्ट को ज्वाइन कर लिया है। और अगर आपको ओनी सेन के बारे में नहीं पता, देन ब्रो उनकी रिसेंटली आई ऑपरेशन सफेद सागर सीरीज तो आपने देखी होगी। नहीं देखी तो प्लीज देख लो यार, यू विल नॉट रिग्रेट इवन अ बिट ऑफ इट। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Oh no!
4: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
5: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर, बाय नाउ एंड पे लेटर। आरके ज्वेल्स,
6: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस,
7: कंडीशंस अप्लाई।
8: द मॉर्गेज इंडस्ट्री हैज चेंज्ड ओवर द इयर्स, पर हमारी ऑनेस्ट एडवाइस आज भी वही है।
9: जेसन एंड समीर आर ऑफिशियली रीलॉन्चिंग एसडी कैपिटल फंडिंग विद अ रिन्यूड फोकस ऑन यू
10: बाइंग अ होम। आवर

0: your locked rate.
1: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding. Service jis par sab kare bharosa.
2: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
3: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
3: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
2: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू हिजलिन।
4: मोदक से लेकर लड्डू तक इस गणेश चतुर्थी हर स्वीट और स्वीट विशेष का भोग चढ़ेगा सिर्फ राजभोग के यहाँ से। राजभोग विशेष यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी। Orders on Rajbhog.com or visit your local grocery store.
5: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
6: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी। स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी।
7: 20 minutes of back-to-back music brought to you by RK Jewels. Best quality, best price. Only on Radio Mirchi 92.7 FM and 103.3 FM HD2.

0: जी आहा। खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: किसी के दिल या जज्बात से खेलने की बात नहीं, मैं तो अपने मिर्ची फिल्म ची गेम खेलने की बात कर रही हूँ। बाबू शाय हेलो जी हाय। सो द ड्रिल इज कि आपको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल मिर्ची श्रुति पे जाके अपना नंबर डीएम करना होता है, फिर मैं कॉल करके आपके साथ इस गेम की शुरुआत करती हूँ। तो आज हमारे साथ सबसे पहले टेलीफोन लाइन पे है मनोज जी।
3: हाय श्रुति, हाउ आर यू?
0: मैं बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे हैं?
3: फर्स्ट क्लास एकदम। रहे
0: तो क्या आज आप हमारे फिल्मची बनना चाहते हैं?
3: अरे मेरा नंबर आ गया क्या? Absolutely, why not?
0: All right, तैयार हैं आप?
3: जी।
0: रवीना टंडन पीली साड़ी में बारिश वाला डांस किस फिल्म में करती हैं?
3: मोहरा।
0: यस इट इज। मोहरा में तू चीज बड़ी है मस्त मस्त कौन करता है?
3: अक्षय कुमार।
0: अक्षय कुमार की फिल्म जिसमें उनको चाइना के एक वॉरियर का रीइंकार्नेशन समझा जाता है?
3: चांदनी चौक टू चाइना।
0: क्या बात। चांदनी चौक टू चाइना में जुड़वा कैरेक्टर किसका है?
3: दीपिका पादुकोण।
0: दीपिका पादुकोण की फिल्म जिसमें वो अपने ऑनर के लिए खुद को जौहर कर देती हैं?
3: पद्मावत।
0: पद्मावत में राजपूत राजा कौन है?
3: शाहिद कपूर।
0: शाहिद कपूर की फिल्म जिसमें वो एक अनलकी आर्किटेक्ट हैं जो फिल्म की हीरोइन को अपना लकी चार्म समझते हैं?
3: किस्मत कनेक्शन।
0: यस। किस्मत कनेक्शन की फीमेल लीड कौन है?
3: जो कहानी की एक्ट्रेस है।
0: हाँ।
3: विद्या बालन।
0: विद्या बालन की फिल्म जिसमें वो अमिताभ बच्चन की मम्मी बनी है?
3: पा।
0: यस। पा में असली पापा कौन है?
3: अभिषेक बच्चन।
0: अभिषेक बच्चन की फिल्म जिसमें पेटीकोट बाबा कौवा बिरयानी खाते हैं?
3: रन।
0: यस। रन की फीमेल लीड कौन है?
3: रन की फीमेल लीड ये तो है।
0: कोई बात नहीं बट आपने बहुत तो मस्त गेम खेला है।
3: अरे थैंक यू सो मच, मेरे को लग रहा था मैं टाइम भी नहीं पहुंच पाऊंगा,
0: बट आपकी इस मेहनत से ये गेम काफी अच्छे लेवल पे पहुंच गया है। इसी के साथ मैं आपको बनाना चाहूंगी आज के हमारे पहले
1: मिर्ची फिल्म ची।
0: बाकी इस गेम को अगर आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं देन यू ऑलरेडी नो द ड्रिल। मिर्ची श्रुति के इंस्टाग्राम पे अपना नंबर डीएम कीजिए एंड रेस्ट आई विल टेक केयर ऑफ। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ स्टे ट्यून्ड। इट्स ऑल मिर्ची
4: साथ जीतूराज।
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स ऑल।
5: ओ यार मिर्जापुर आ गई। यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बा देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपनी अपनी कालीन अब चद्दर बिछाकर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खूनरेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ई भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक ऑल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो का भौकाल मचाया मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हाँ, भूलना मत हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते हैं ना भैया, अमा पनवा चटाई के जब धमाल करे कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3:30 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @ मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे? सही है
4: साथ जीतूराज। Only on Mirchi, it's hot.
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: हेल्थकेयर में एक सक्सेसफुल करियर की तरफ आपके हर कदम पर एम्स कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज हमेशा आपके साथ है।
9: चूज करियर फोकस सर्टिफिकेट एंड डिग्री प्रोग्राम्स इन MRI, अल्ट्रासाउंड, कार्डियोवैस्कुलर, न्यूरोडायग्नोस्टिक, एनेस्थीजिया, सर्जिकल टेक्नोलॉजी और मेनी मोर विद हैंड्स ऑन क्लिनिकल एक्सपीरियंस।
8: एम्स एजुकेशन इज नाउ वेलकमिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड ऑफरिंग I-20 टू एलिजिबल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स परस्यूइंग एन F1 स्टूडेंट वीजा। विजिट aimseducation.edu। योर हेल्थकेयर फ्यूचर स्टार्ट्स विद एम्स।
10: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए। आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर, बाय नाउ एंड पे लेटर। आरके ज्वेल्स,
11: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
12: कंडीशंस अप्लाई।
11: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
12: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
13: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
12: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
13: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
14: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com। फूड
15: यस,
14: शॉपिंग
15: यस,
14: एंटरटेनमेंट
15: डबल यस,
14: और हेल्थ फेयर
15: ऑफ कोर्स, सब कुछ एक ही जगह। इंडो अमेरिकन कम्युनिटी फेयर सितंबर 12th और 13th, श्री कृष्ण मंदिर मॉर्गनविल।
16: फॉर वेंडर्स एंड इन्फॉर्मेशन विजिट www.krishnatemple.org।
17: विजिट Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
18: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
17: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
0: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ। इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, मैं तो मिर्ची फिल्म से गेम की बात कर रही हूँ। एनीवे, सो द ड्रिल इज कि आपको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल मिर्ची श्रुति पे जाके अपना नंबर भेजना होता है, फिर मैं आपको कॉल करके इस गेम की शुरुआत करती हूँ जो आज मैंने मनोज जी के साथ की। बट ही गॉट स्टक एट अ पॉइंट, और उसके आगे का गेम खेलने के लिए मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे है संदीप जी। हेलो, कैसे हैं सर?
2: मैं बढ़िया, आप कैसे?
0: मैं बिल्कुल बढ़िया। क्या तैयार है गेम खेलने के लिए?
2: हाँ जी, हाँ जी।
0: तो आपके पहले इस गेम की शुरुआत मनोज जी ने की, बट ही गॉट स्टक एट अ पॉइंट, वो जिस सवाल पे अटके हैं उसके आगे से मैं ये गेम आपके साथ खेल रही हूँ। सो द क्वेश्चन वॉज, फिल्म रन की फीमेल लीड कौन है?
2: भूमिका चावला।
0: भूमिका चावला की फिल्म जिसमें उनसे हीरो को ऑब्सेसिव प्यार हो जाता है?
2: तेरे नाम।
0: तेरे नाम में राधे कौन है?
2: सलमान खान।
0: सलमान खान की फिल्म जिसमें वो टांगों के बीच टावल डाल के डांस करते हैं?
2: ये मुझे बहुत पसंद है, मुझसे शादी करोगी।
0: यस, मुझसे शादी करोगी में सलमान को किससे शादी करनी है?
2: प्रियंका चोपड़ा।
0: प्रियंका चोपड़ा की फिल्म जिसमें वो मॉडल बनी है?
2: फैशन।
0: फैशन में इवी वी वी वी वी कौन करता है?
2: कंगना।
0: यस इट इज कंगना रनौत की फिल्म जिसमें उनका पति अदरक के जैसे हर जगह से बढ़ता जा रहा है?
2: तनु एट्स मनु रिटर्न्स
0: में उनका पति कौन है?
2: आर माधवन।
0: आर माधवन की फिल्म जिसमें वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है?
2: थ्री इडियट्स
0: में प्रिंसिपल की बेटी कौन है?
2: करीना कपूर।
0: करीना कपूर की फिल्म जिसमें वो अपनी फेवरेट है?
2: जब भी मेट।
0: यस एंड वी हैव मेट अनदर मिर्ची फिल्म जी फॉर द डे।
2: थैंक यू
0: सो मच। आई जस्ट होप आपको मजे आए हो।
2: बहुत मजा आया श्रुति, थैंक यू सो मच।
0: तो इसी बात पे मजे को चार गुना करते हैं विद दिस टैग
1: मिर्ची फिल्म जी।
0: नहीं नहीं नहीं, आपको फोमो में जाने की जरूरत नहीं है यार, बस मिर्ची श्रुति के इंस्टा पे जाके अपना नंबर डीएम कीजिए। रेस्ट आई विल टेक केयर ऑफ। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।
1: यू आर लिसनिंग टू 103.3 एफएम एचडी2 डब्ल्यूपीआरबी प्रिंसटन न्यू जर्सी एंड 92.7 W224 CW फ्रैंकलिन पार्क न्यू जर्सी। रेडियो

0: यार डुएट्स का मतलब हमेशा रोमांटिक गाने तो नहीं होते ना।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हो आप, और आज अगर मैं किसी से भी पूछूं कि भाई अच्छा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में डुएट्स कौन से पसंद है तुझे, तो लोग रोमांटिक नंबर्स की बात करेंगे जहाँ हीरो हीरोइन, बारिश, एक अम्ब्रेला और बैकग्राउंड में वायलेंस बज रही हो। बट आज ना मैं अपने पांच कपंच की लिस्ट के थ्रू उन गानों की बात करूंगी जहाँ रोमांस से ज्यादा दोस्ती, मस्ती, कॉम्पिटिशन और ब्रोमांस है, क्योंकि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के मेल डुओज ने हमें कुछ ऐसे सॉन्ग्स दिए हैं जो सुनते ही मूड ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। कभी सलमान गोविंदा की मस्ती, कभी अक्षय सैफ का अनाड़ीपन, और कभी अमिताभ बच्चन गोविंदा का लार्जर देन लाइफ स्वैग। तो लिस्ट की शुरुआत करना चाहूंगी विद द सॉन्ग डू यू वांट अ पार्टनर फ्रॉम द फिल्म पार्टनर। नंबर दो से विल डिस्कस अबाउट स्टूडेंट ऑफ द ईयर का गाना वेल्ले। नंबर तीन पे फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी का टाइटल ट्रैक। नंबर चार पे फिल्म देसी बॉयज का टाइटल ट्रैक। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, नंबर पांच पे फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ का टाइटल ट्रैक। सो लेट्स बिगिन 2007 में आई फिल्म पार्टनर के इस गाने से।
3: Do you wanna partner? Oh, partner. Do you wanna partner? Love me, love me, say. Wanna partner? Oh, partner. Do you wanna partner?
0: सलमान खान और गोविंदा की कॉमेडी केमिस्ट्री का परफेक्ट कॉम्बिनेशन और इसी एनर्जी को कैप्चर करता है ये पर्टिकुलर गाना, जहां साजिद वाजिद का सुपर पेपी कॉम्पोजिशन है, उदित नारायण और वाजिद की इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेबल वॉइसेस हैं, और ऊपर से शान और क्लिंटन सरेजो जैसे वॉइसेस का कॉन्ट्रीब्यूशन। एंड यू नो इस गाने की सबसे खास बात क्या है, ये सिर्फ एक सॉन्ग नहीं लगता, एक बॉयज नाइट आउट का साउंड ट्रैक लगता है। एंड ऑनेस्टली अगर इसका हुक सुनते ही आपके पैर थिरकने लगते हैं तो ये आपकी गलती नहीं, दिस इज नॉस्टैल्जिया हिटिंग यू ब्रो। वैसे इस गाने को लेकर आपकी कोई मेमोरी रही है, देन डू शेयर दैट विद मी। मिर्ची श्रुति के नाम से हम फेसबुक या इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हैं। और बाकी के चार गानों के डिस्कशन के लिए स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, pues cabana, sacabana.
2: ¡Cámbala!
1: ¡Murga, murga! ¡La vieja la murga!
2: ¡Mirchi, murga!
3: हेलो
4: हेलो मुकेश जी.
3: कौन
4: मुकेश जी? मैं ये प्रताप बोल रहा हूँ राणा मोटर से. आपने जो 1000 दी थी ना उसका हाँ, वो जो कार्बोरेटर साफ होना था वो सर हो नहीं पाया एक्चुअली. थोड़ा
3: नहीं हो पाया भाई?
4: हाँ वो नहीं हो पाया सर.
3: हाँ नहीं हो पाया
4: सर, वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी. अच्छा सर, आप बता रहे थे ना पीछे बोनट से आवाज आ रही है आपकी गाड़ी की. सर वो भी हो नहीं पाई है, वो उसमें थोड़ा हो नहीं पाया हमसे अभी.
3: नहीं क्या नहीं पाया तुम्हारे यार, रोज गए तुम्हें जब भी गाड़ी पे नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया, क्या मजाक ही क्या है ये?
4: नहीं मुकेश जी मैं समझ रहा हूँ वो एक
3: क्या समझ रहे हो भाई.
4: नहीं नहीं आप सही कह रहे हैं. अच्छा मुकेश जी आपने एक बताया था ना ब्रेक ऑयल डलना है, ब्रेक काम नहीं कर रहे. सर वो ऑयल डल नहीं पाया थोड़ा.
3: अरे तो हो क्या पाया है तुमसे
4: सर? वो
3: ये नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया, मुझे फोन करना है, मुझे फोन इसलिए कराया कि ये नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया.
4: नहीं सर एक्चुअली
3: आपको तो फोन इसलिए करना था कि भाई ये जो काम दिया गया आपको वो कर दे.
4: नहीं सर कुछ हो नहीं पाया.
3: क्यों नहीं हो पाया
4: सर? वो रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी.
3: है
4: सर रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी?
3: अरे तेरा दिमाग खराब है क्या?
4: अरे सर मैं वही आपसे कह रहा हूँ, मतलब हम
3: क्या करा दू
4: सर, मतलब आप ये आप आके FIR लिखवा देंगे अपनी गाड़ी की?
3: कैसी FIR? दिमाग खराब हो गया तेरा, पागल तो नहीं है तू?
4: अरे सर जितने की गाड़ी थी इतना दे देंगे, आप गुस्सा तो मत करिए कम से कम.
3: क्या गुस्सा ना करूं, नई गाड़ी थी हमारी.
4: नहीं सर आप आपकी नई गाड़ी थी तो सर हमारा भी तो उसमें कुछ गया है, हमने भी तो ग्रीस व्रीस लगाया.
3: उसमें
4: ग्रीस ग्रीस लगाया, उसमें हमने पेट्रोल डाला है.
3: ग्रीस कितने का? 5 रुपए का लगाया. आग लगा दूंगा मैं तुम्हारे शोरूम में, तुम्हारे वर्कशॉप में.
4: अच्छा सर
3: मुझे चाहिए अपनी वापस.
4: सर आप इतना गुस्सा ना करें,
3: जिम्मेदारी तुम्हारी है FIR वगैरह कराने की.
4: सर बिल्कुल आप गुस्सा ना करें. अच्छा सर ऐसा चल सकता है जैसे आप गाड़ी ना लेके कॉम्पोजिट कर दें, हम आज शाम आपको मुर्गा खिला दें और मुकेश वो बन भी गया मुर्गा.
5: मुकेश मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, छोटा सा मजाक किया तुम्हारे साथ, मुर्गा बना दिया तुम्हारा.
3: तो जान निकाल दी हमारी.
5: मुकेश आपकी गाड़ी वही खड़ी है आपकी वर्कशॉप में, बस उसको धक्का लगाना है और आपको धक्का हम लगा देंगे. मेरे साथ जरा प्यार से कह दीजिए, गुस्सा खत्म करिए.
3: कुकड़ू कू
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
7: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
8: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
9: Inefficient.
10: Very complex.
11: Clumsy hoy.
12: Confusion hi confusion.
7: Disjointed software ko use karna utna easy nahi jitna aap samajh rahe hain. Toote phoote software se chhutkara pao. Apne business ke liye Zoho One le aao. Zoho One is an all-in-one integrated software suite jisse aap apna pura business chala sakte hain. Yes, you heard that right. You can run your entire business. Sales, marketing se leke customer support, accounting, operations ya HR. Kaam anek, software ek, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
13: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए. आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर. बाय नाउ एंड पे लेटर. आरके ज्वेल्स,
14: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
7: कंडीशंस अप्लाई.
15: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
7: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
15: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
7: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
15: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू हिजलिन.
16: मोदक से लेकर लड्डू तक इस गणेश चतुर्थी हर स्वीट और स्वीट विशेस का भोग चढ़ेगा सिर्फ राजभोग के यहाँ से. राजभोग विशेस यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी. ऑर्डर्स ऑन राजभोग.com और विजिट योर लोकल ग्रोसरी स्टोर.
17: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
18: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
17: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
19: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं. ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स.
7: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल. ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का. सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी. स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी.

0: कुछ गाने ना आपको याद नहीं आते, वो आपको आपकी पुरानी जिंदगी में टेलीपोर्ट कर देते हैं।
1: श्रुति, मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: और आज अपने पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसे ही गानों को डिस्कस कर रही हूँ, स्पेसिफिकली मेल डुओ डांस नंबर्स, क्योंकि इसकी चर्चा ज्यादा नहीं होती है यार। सो लिस्ट में सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट द सॉन्ग डू यू वांट अ पार्टनर फ्रॉम द फिल्म पार्टनर। अब नंबर दो पे लेट्स टॉक अबाउट सिद्धार्थ मल्होत्रा, वरुण धवन और आलिया भट्ट स्टारर 2012 में रिलीज हुई फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर का ये गाना। जहाँ वेले का मतलब ये नहीं कि आप जॉबलेस हैं, इट्स अबाउट बीइंग ग्लोरियसली केयरफ्री। एंड बेसिकली इस गाने के थ्रू ना उस फेस को सेलिब्रेट किया गया है जब लाइफ का बिगेस्ट टेंशन होता था कि भाई आज क्लास अटेंड करना है या बंक करना है, मतलब दोस्तों के साथ बिना किसी रीजन के घूमना, स्टूपिड प्लान्स बनाना, एक दूसरे की टांग खिंचाई करना एंड व्हाट नॉट। बाकी इस गाने को और भी ज्यादा एजी बना दिया रियल लाइफ सिंगर म्यूजिशियन डुओ विशाल ददलानी और शेखर रावजियानी की एनर्जेटिक वॉइसेस ने। चलो अब आगे बढ़ते हुए नंबर तीन पे लेट्स टॉक अबाउट 1994 की फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी का ये टाइटल ट्रैक। अक्षय कुमार और सैफ अली खान की पेयरिंग, जिसपे अभिजीत और उदित नारायण की वॉइसेस ने एकदम परफेक्ट म्यूजिकल आइडेंटिटी दे दी। सो ये गाना बेसिकली दो कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सनालिटीज को डेडिकेटेड है, जो इन जनरल हर दोस्तों के बीच देखी ही जाती है, बट व्हेन दे कम टुगेदर इट इज अ फुल पैसा वसूल। बाकी अनु मलिक का एनर्जेटिक कॉम्पोजिशन और माया गोविंद के सुपर कैची लिरिक्स ने इस गाने को 90s का प्रॉपर सिग्नेचर ट्रैक भी बना दिया था। वैसे मेरी इस लिस्ट में अभी और दो ऐसे ही गानों की बातें बाकी हैं, बट अगर आप इसमें अपना कोई एडिशन करना चाहें देन फील फ्री टू डू दैट। मिर्ची श्रुति के नाम से हम फेसबुक या इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।
1: Wanna natural night?

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Jai Gurudev. અવસર આવીને ઉભો છે આંગણે. ચલો ભેગા મળી ગણેશજીના આગમનની તૈયારી કરીએ. આપણે ગાયત્રી ચેતના સેન્ટરના ગણેશ ઉત્સવમાં જોડાયો, જેમાં
3: 13 સપ્ટેમ્બર રવિવાર
2: સાંજે 4 વાગે થશે ગણેશ સ્થાપના અને સાંજે 7 વાગે થશે ગણેશ આરતી અને 20 સપ્ટેમ્બર સાંજે 4 વાગે વિસર્જન. વધુ માહિતી માટે કોલ ગાયત્રી ચેતના સેન્ટર, વિસ્કાટવે ઓન 7323578200. જય ગુરુદેવ.
4: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए. आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर. बाय नाउ एंड पे लेटर. आरके ज्वेल्स,
5: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
6: कंडीशंस अप्लाई.
7: क्या आपको हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकेयर या गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स को लेकर कोई सवाल है? तो यूनाइटेड हेल्थ केयर प्राउडली अनाउंस करता है हमारा नया एडिसन एशियन रिसोर्स सेंटर की ओपनिंग.
8: ये सेंटर कन्वीनियंटली लोकेटेड है 561 US Highway 1 एडिसन विक शॉपिंग मॉल के अंदर.
7: यहाँ आपको अपने हेल्थ केयर बेनिफिट्स और कवरेज ऑप्शंस समझने के लिए पर्सनलाइज्ड सपोर्ट मिलेगा. हमारी प्रोफेशनल टीम आपको फ्री कंसल्टेशन देगी ताकि आप मेडिकेयर, इंडिविजुअल और फैमिली हेल्थ प्लान्स और गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स को बेहतर समझ सके. तो आज ही विजिट कीजिए एडिसन एशियन रिसोर्स सेंटर.
9: नो
10: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट. ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
11: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
12: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
11: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
13: Yeah. Me, Michi. Brighten up your day, we will find a way. On Me, Michi.
14: अच्छा, बी टाउन के डांस डुओ नंबर्स के नाम पे आपके दिमाग में कौन सा गाना आता है?
15: श्रुति, श्रुति, श्रुति.
16: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ.
14: Maybe a song like डोला रे डोला रे डोला रे डोला. बट यार, आज मैं अपने पांच के पंच की लिस्ट के थ्रू बी टाउन के मेल डुओ डांस नंबर्स को डिस्कस कर रही हूँ, जिसमें सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट द सॉन्ग डू यू वांट अ पार्टनर फ्रॉम द फिल्म पार्टनर. नंबर दो पे वेले फ्रॉम द फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर. नंबर तीन पे मैं खिलाड़ी टू अनाड़ी का टाइटल ट्रैक. और अब नंबर चार पे बारी है टू टॉक अबाउट द सॉन्ग देसी बॉयज का टाइटल ट्रैक, जिसका सिंबल सा फंडा है वर्क हार्ड एंड पार्टी हार्डर. दो हजार ग्यारह की फिल्म देसी बॉयज और उसका एंथम मेक सम नॉइस फॉर द देसी बॉयज. केके और बॉब की वॉइसेस, प्रीतम का म्यूजिक और कुमार के लिरिक्स. और भाई, पूरा गाना बेसिकली एक सेलिब्रेशन है मेल फ्रेंडशिप, फ्रीडम और अपनी लाइफ को अपने रूल्स पे जीने का. वेल, इस सॉन्ग की एनर्जी का कमाल देखिए. आपको लिरिक्स याद हो ना हो, मेक सम नॉइस ये आते ही ना आपके हाथ ऑटोमेटिकली हवा में चले जाते हैं. वेल, लिस्ट में आगे बढ़ते हुए नंबर पांच पे लेट्स टॉक अबाउट दिस आइकॉनिक सॉन्ग. भाई, आज भी एक 90s का बच्चा जब ये गाना सुनता है तो उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ गोविंदा और अमिताभ बच्चन ही चल रहे होते हैं. 1998 में आई थी ये फिल्म, जहां अमिताभ बच्चन और गोविंदा की लार्जर देन लाइफ केमिस्ट्री को उदित नारायण और सुदेश भोसले ने अपनी आवाजें दी थी. गाने में विजू शाह का म्यूजिक था, समीर के लिरिक्स थे और डेविड धवन का फुल ऑन कॉमेडी यूनिवर्स विद एवरीथिंग लार्जर देन लाइफ. बेसिकली दो सुपरस्टार्स प्लस दो पावरफुल मेल वॉइसेस प्लस 90s बॉलीवुड मैडनेस इज इक्वल्स टू वन अनफॉरगेटेबल एंथम. वैसे आप मेरे मेल डुओ डांस नंबर्स वाली इस लिस्ट में और कोई नाम ऐड करना चाहें, देन फील फ्री टू डू दैट. मिर्ची श्रुति के नाम से हम फेसबुक या इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हैं. टिल देन स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट.
3: 20 minutes of back-to-back music brought to you by RK Jewels. Best quality, best price. Only on Radio Mirchi 92.7 FM and 103.3 FM HD2. It's hot.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू हिजलिन।
5: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर। बाय नाउ एंड पे लेटर। आरके ज्वेल्स,
6: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
7: कंडीशन अप्लाई।
0: मोदक से लेकर लड्डू तक इस गणेश चतुर्थी हर स्वीट और स्वीट विशेष का भोग चढ़ेगा सिर्फ राजभोग के यहाँ से। राजभोग विशेष यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी। ऑर्डर्स ऑन राजभोग.com और विजिट योर लोकल ग्रोसरी स्टोर।
8: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे।
9: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
10: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
9: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
11: Yeah. Meethi Mirchi. Brighten up your day, we will find a way. On Meethi Mirchi, aha.
12: दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। फ्रॉम ग्लैम टू गुरु अवतार, और ये हो रहा है एक्टर रजनीश दुग्गल के साथ, जो फिजिक्स वाला के वन ऑफ द रिनाउंड टीचर्स पंकज सजारिया के ऊपर बन रही बायोपिक में लीड रोल निभाने वाले हैं। माइंड यू, फिजिक्स वाला एक रिनाउंड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म रहा है फाउंडेड बाय अलख पांडे, एंड उनके ऊपर ऑलरेडी एक सीरीज बन चुकी है विद द नेम हेलो बच्चों। नहीं देखी तो प्लीज देख लो, यू लव इट। बट अब जब उनके ही इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के वन ऑफ द रिनाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टीचर्स दैट इज पंकज सजारिया के ऊपर ये फिल्म बन रही है, देन आई एम डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वन। मनोज बाजपेयी इज महात्मा गांधी। सो फिल्म मेकर सुधीर मिश्रा की अपकमिंग डायरेक्टोरियल में मनोज बाजपेयी महात्मा गांधी के रोल में नजर आएंगे, जिस फिल्म का बैकड्रॉप है इंडिया के इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के लेसर नोन 21 डेज पीरियड की कहानी। वैसे अभी तक इस फिल्म को लेकर सारी डिटेल्स अंडर रैप्स रखी गई हैं, बट अभी वाजपेयी साहब का एक लुक जो है वो ऑनलाइन सरफेस हो रहा है, विच डेफिनेटली इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ बज। अर्शद वारसी स्टारर पॉपुलर साइकोलॉजिकल सीरीज असुर की बात करना चाहती हूँ, जिसका थर्ड सीजन इज अंडर मेकिंग। बट इस बार सीरीज के डायरेक्शन का कमाल ओनी सेन ने नहीं उठाया है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम उनके पास कुछ फ्रेश नहीं था टू ऑफर, एंड नाउ द हैट हैज बीन ट्रांसफर्ड टू डायरेक्टर गौरव शुक्ला, जो इस सीरीज के लीड राइटर और शो रनर रहे हैं ऑन द प्रीवियस सीजंस। वैसे अनदर अपडेट इज कि एक्टर एहसान चन्ना ने भी इस सीरीज के स्टारकास्ट को ज्वाइन कर लिया है। और अगर आपको ओनी सेन के बारे में नहीं पता, देन ब्रो उनकी रिसेंटली आई ऑपरेशन सफेद सागर सीरीज तो आपने देखी होगी। नहीं देखी तो प्लीज देख लो यार, यू विल नॉट रिग्रेट इवन अ बिट ऑफ इट। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।
13: यू आर लिसनिंग टू 103.3 FM HD2 WPRP प्रिंसटन न्यू जर्सी एंड 92.7 W224 CW फ्रैंकलिन पार्क न्यू जर्सी रेडियो।

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

जनरली ना गुलजार साहब आंखों से बहुत खिलते थे, लेकिन इस गाने में, और मुझे लगता है कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस सॉन्ग्स ऑफ आंखें, ये आनंद बख्शी साहब ने लिखा है, गुलाबी आंखें। नोबडी एवर थॉट कि आंखें भी गुलाबी हो सकती हैं। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, हेलो हेलो वेलकम। ये जो गाना है इज फ्रॉम द फिल्म द ट्रेन, एंड ये काका की यानी राजेश खन्ना साहब की कंसेक्यूटिव 17th फिल्म थी, विच वाज अ सुपर डुपर हिट। उस समय ना काका का सिक्का एकदम बॉक्स ऑफिस पे चल रहा था, एवरीबडी वांटेड टू वर्क विद राजेश खन्ना। सो इस फिल्म को राजेंद्र कुमार ने प्रोड्यूस किया था और नंदा जी ने इसमें काम किया। सो नंदा जी उस टाइम पे ना राजेश खन्ना के साथ काम कर रही थी, एक फिल्म आई थी इत्तेफाक पे, लेकिन उनके बहुत सारे सीन्स नहीं थे, बट शी अंडरस्टूड कि ये लंबी रेस का घोड़ा है। तो उन्होंने ना जाकर के बात राजेंद्र कुमार को कही कि अब ये जो फिल्म बना रहे हो ना द ट्रेन, इसमें भाई इन्हीं को लो, यानी काका राजेश खन्ना को लो, वो बॉक्स ऑफिस पे इस समय धमाल कमाल मचा रहा है। सो दैट वॉज हाउ राजेश खन्ना केम इन द पिक्चर। एंड देन जब ये फिल्म रिलीज हुई, ओहो द ट्रेन, इट वॉज अ सुपर डुपर मैसिव हिट। इसी फिल्म का गाना श्रेया ने आते ही सुनाया। अगले कौन से गाने, सब एक एक करके सुनाऊंगी, जल्दी किस बात की है। ये पूरे 3 घंटे पुरानी जीन्स के ऑन मिर्ची, आपके नाम मेरे नाम, सो कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नबीत वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
2: हेलो, दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
3: हाँ जी।
2: यार कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचे थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
3: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
2: अरे फोटो आके देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
3: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
2: फोटो? बहुत अच्छा है, सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बिखा दिए यार, सारे दिमाग।
3: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
2: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
3: मैंने देखी खुद अपने हाथ से। सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए एक से बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
2: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
3: अरे शर्म की क्या बात है सर,
2: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये?
3: किसी का
2: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
3: लगाया नहीं
2: क्या, कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े
3: गायब
2: नहीं। मैं कल को
3: फोटो खींचे,
2: अरे लेंस ऐसे
3: पूरे
2: कपड़े कौन से, मैंने शेरवानी पहन रखी थी, शेरवानी गायब है अंदर से, सब दिख रहा है यार। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी।
3: नहीं सर शेरवानी गायब नहीं है, बहुत अच्छे फोटो है। अरे
2: मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
3: नहीं साहब देखिए, केस वेस की बात मत कीजिए, इसलिए हमारा नाम है इलाके में।
2: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे।
3: नहीं सर क्या बात, चुन के बनाया है?
2: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू, उसका चलो छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं है, वो खड़ा है, जितने बराती आए हैं सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
3: अरे नहीं सर कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
2: गड़बड़
3: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
2: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी।
3: दिखाइए
2: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
3: कोई सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए।
2: ऐसा सिस्टम है, एक जगह होता है।
3: कहाँ होता है बताइए?
4: रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: क्या आपको हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकेयर या गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स को लेकर कोई सवाल है? तो यूनाइटेड हेल्थ केयर प्राउडली अनाउंस करता है हमारा नया एडिसन एशियन रिसोर्स सेंटर की ओपनिंग।
9: ये सेंटर कन्वीनियंटली लोकेटेड है 561 US Highway 1 एडिसन विक शॉपिंग मॉल के अंदर।
8: यहाँ आपको अपने हेल्थ केयर बेनिफिट्स और कवरेज ऑप्शंस समझने के लिए पर्सनलाइज्ड सपोर्ट मिलेगा। हमारी प्रोफेशनल टीम आपको फ्री कंसल्टेशन देगी ताकि आप मेडिकेयर, इंडिविजुअल और फैमिली हेल्थ प्लान्स और गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स को बेहतर समझ सके। तो आज ही विजिट कीजिए एडिसन एशियन रिसोर्स सेंटर।
10: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर, बाय नाउ एंड पे लेटर। आरके ज्वेल्स,
11: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
12: कंडीशंस अप्लाई।
13: मोदक से लेकर लड्डू तक, इस गणेश चतुर्थी हर स्वीट और स्वीट विशेस का भोग चढ़ेगा सिर्फ राजभोग के यहाँ से। राजभोग विशेस यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी। Orders on Rajbhog.com or visit your local grocery store.
14: Food?
15: Yes.
14: Shopping?
15: Yes.
14: Entertainment?
15: Double yes.
14: Or health fair?
15: Of course. Sab kuch ek hi jagah. Indo-American Community Fair. September 12th or 13th. Sri Krishna Mandir, Morganville.
16: For vendors and information, visit www.krishnatemple.org.
17: It's 2 a.m. Her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
18: Don't worry. I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
17: Wait, they can see us on Sunday?
18: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
19: Wow! Yahi to hai mera dream lehenga.
3: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
19: Explore our stunning bridal lehengas or exclusive reception wear.
3: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
19: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue.
6: तेरा क्या होगा कालिया?
8: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
6: अब मिर्ची खा।
12: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

मिर्ची पर आप और श्रेया के साथ ओनली ऑन पुरानी जीन्स। बॉबी फिल्म का ये गाना जिसको शैलेंद्र सिंह ने गाया, आनंद बख्शी साहब ने लिखा था। एंड जब बॉबी फिल्म की बात आती है ना, तो ऑफकोर्स मैं तो थी नहीं जब ये फिल्म रिलीज हुई, लेकिन मेरी मम्मी बताती है कि क्या क्रेजीनेस हुई थी टू वॉच दिस फिल्म। आई मीन देयर वर फैमिलीज जो वापस बार बार जा रही थी मूवी देखने, हॉल्स भरे हुए थे महीनों तक। एंड इतना ज्यादा ट्रेंड चला था बॉबी जूड़ा पिंस का, जो मुझे लगता है मुझे आज भी कई बार दिखती हैं वो जो जूड़ा पिंस है। सो शी सेड कि बॉबी नाम पे इतने सारे प्रोडक्ट्स आ गए थे कि एवरीबडी वाज वेयरिंग कोई ना कोई बॉबी का प्रोडक्ट। जैसे कि बॉबी में यू नो डिम्पल कपाटिया ने बहुत जगहों पे पोलका डॉट्स पहने, वो आज तक फेमस है एज बॉबी पोलका डॉट्स। जैसे कि बॉबी जूड़ा पिन तो मैंने आपको बताई, जैसे कि बॉबी बाइक जिस पे उड़ा के लेकर के जाते हैं ना ऋषि कपूर डिंपल कपाटिया को, वो बाइक भी एक्सट्रीमली फेमस हुई थी और रातों रात उसकी बिक्री बढ़ गई थी। ये होता था उस जमाने की फिल्मों का क्रेज जो इस जमाने में नहीं मिलता, करेक्ट। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ उस जमाने के गाने, इस जमाने की श्रेया। सो कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Oh no!
4: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
5: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए। आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर, बाय नाउ एंड पे लेटर। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
6: कंडीशंस अप्लाई।
7: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री।
8: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन। देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस। अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप। लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस।
2: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, दैट इज 732-339-3155।
9: यार इस वीकेंड कोई जबरदस्त प्लान बताना।
10: अरे मेरा बच्चा है तू, चल तुझे हंसी की फुल डोज दिलवाता हूँ यार।
11: प्रयोग थिएटर ग्रुप के 50th फेस्टिवल में धुरंधर फेम राकेश बेदी और अनंत महादेवन का प्ले लास्ट ओवर, और साथ में कलरफुल नौटंकी आला अफसर भी है।
12: संडे सितंबर 27th 4 PM, जोएन मजेस्ट्रो परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर, ईस्ट ब्रंसविक। बुक योर सीट्स एट प्रयोगथिएटर.com।
13: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
14: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
13: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
15: Listener mein back to back gana sunega.
16: Back to back gana sunega.
15: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Ah,
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

किशोरदाना बाकी सबके लिए रूल्स फॉलो करते थे, लेकिन जब उन्हें पता चलता था कि ये गाना उनके दोस्त पे पिक्चराइज होना है तो फिर सारे रूल्स ड्रॉप। वेल, ये जो गाना अभी आपने सुना इज फ्रॉम द फिल्म नमक हराम, विच इज पिक्चराइज ऑन काका यानी राजेश खन्ना। और काका और किशोरदा और पंचमदा, इन तीनों की तिकड़ी भाई इंडस्ट्री में धमाल कर रही थी, कमाल कर रही थी। काका का ये रूल था कि उनके सारे गाने किशोरदा गाएंगे, और किशोरदा भी हैप्पीली अपने दोस्त के लिए सारे गाने गाते थे। मतलब बाकियों के लिए तो उनके पास फिर भी रूल्स थे कि क्या गाने का पैसा ऑलरेडी एडवांस में पे हो चुका है, जब हो जाता था तभी वो रिकॉर्डिंग सेशन में, रिकॉर्डिंग स्टूडियो में अंदर घुसते थे। लेकिन जब बात होती थी काका की तो ये सब कुछ नहीं पूछा जाता था। वन मेजर रीजन वॉज ऑल्सो बिकॉज बोथ ऑफ देम सॉ द सक्सेस इन देयर करियर्स टुगेदर। वो गाना है ना, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आर डी बर्मन साहब ने गाना कंपोज किया और इसको गाया अफकोर्स किशोरदा ने। और इस पे ये किस पे पिक्चराइज था, काका पे। सो होता ये है कि मेरे सपनों की रानी कब आएगी तो इससे पहले किशोरदा ने जितने गाने गाए थे ना वो इतने पॉपुलर नहीं हो रहे थे। आर डी बर्मन साहब ने उनसे कहा था, किशोर बस ये आखिरी गाना है, अगर तुमको इस गाने के साथ सक्सेस नहीं मिली तो तुम्हें जो करना है करना, अगर तुम्हें अपने गांव वापस जाना है तो वहां भी ले जाना। लेकिन इस एक गाने ने किशोरदा की तकदीर बदली एंड ऑफकोर्स काका बिकेम अ सुपरस्टार। पुरानी जीन्स पे उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें, इस जमाने की श्रेया के साथ। सो कम बैक राइट हियर।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बा देखल बे ना इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपनी अपनी कालीन अब चद्दर बिछाकर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, वह जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खूनरेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ये भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक ऑल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखो, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो हैं। ये का भौकाल मचाया मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां भूलना मत, हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3.5 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @ मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: हेल्थकेयर में एक सक्सेसफुल करियर की तरफ आपके हर कदम पर एम्स कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज हमेशा आपके साथ है।
5: चूज करियर फोकस सर्टिफिकेट एंड डिग्री प्रोग्राम्स इन MRI, अल्ट्रासाउंड, कार्डियोवैस्कुलर, न्यूरोडायग्नोस्टिक, एनेस्थीजिया, सर्जिकल टेक्नोलॉजी और मेनी मोर विद हैंड्स ऑन क्लिनिकल एक्सपीरियंस।
4: एम्स एजुकेशन इज नाउ वेलकमिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड ऑफरिंग I-20 टू एलिजिबल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स परस्यूइंग एन F1 स्टूडेंट वीजा। विजिट aimseducation.edu। योर हेल्थकेयर फ्यूचर स्टार्ट्स विद एम्स।
6: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए। आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर, बाय नाउ एंड पे लेटर। आरके ज्वेल्स,
5: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस,
4: कंडीशंस अप्लाई।
7: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
8: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
8: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
7: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

रेखा जी और विनोद मेहरा की ये फिल्म का गाना है जो अभी अभी मैंने आपको सुनाया, पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची। एंड ये गाना इज फ्रॉम द फिल्म घर, जिसमें रेखा जी थी, विनोद मेहरा थे। लेकिन रेखा जी से पहले इस फिल्म की एक्ट्रेस होने वाली थी मौसमी चैटर्जी। मौसमी चैटर्जी और विनोद मेहरा का उस टाइम पे ना बड़ा रूमर्स थे कि दे आर सीइंग ईच अदर। और भाई उस टाइम तो फिल्म मैगजीन्स ऐसे छटपट बिकती थी कि पूछो नहीं। सो हर फिल्म मैगजीन में उनके बारे में लिखा जा रहा था। मौसमी चैटर्जी को लगा कि भाई ये तो बेसलेस है, एंड अगर मैंने इस समय विनोद मेहरा के साथ काम किया तो फिर इन रूमर्स को और हवा मिल जाएगी, एंड दैट्स वाई शी डिनाइड डूइंग द रोल। और फिर ये गया रेखा जी के पास, जो उस समय इनिशियली अपना करियर बिल्ड कर रही थी, और जैसे ही उनको ये गुलजार साहब की फिल्म मिली उन्होंने झट से पकड़ ली। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ किशोरदा का ये गाना था। अब आ रहा है किसका गाना, ये बहुत अलग गाना है, खुद सुन लो।

0: 92.7 FM, Radio Mitri, New Jersey, South Asia's number one radio station, also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

मनमोहन देसाई की डायरेक्टेड ये सुपर हिट फिल्म जिसका गाना अभी आपको सुनाया, दिस इज फ्रॉम द फिल्म अमर अकबर एंथनी। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग गुफा पे इस फिल्म में, बताती हूँ आपको व्हाट हैपेंड। तो अगर आप ये फिल्म देखोगे ना, सो नीतू सिंह और ऋषि कपूर का जो इंट्रोडक्शन सीन है उसमें नीतू सिंह प्लेज अ डॉक्टर रोल। इस डॉक्टर का कैरेक्टर नेम है डॉक्टर सलमा। लेकिन जब ऋषि कपूर नीतू सिंह से पहले सीन में मिलते हैं तो वो उन्हें डॉक्टर सलमा नहीं कहते, वो उन्हें नीतू कहते हैं। एंड द फनीएस्ट पार्ट इज कि मूवी की एडिटिंग हो गई, मूवी रिलीज हो गई, देयर वाज नो एफर्ट टेकन टू एक्चुअली यू नो रेक्टिफाई दिस मिस्टेक। मतलब लोगों ने बस जाने दिया कि हाँ ठीक है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि इस गूफ अप को जो हम सब नोटिस कर सकते हैं वो किसी ने नोटिस नहीं किया हो। ऑफ कोर्स डायरेक्टर, कैमरामैन या एडिटर किसी ने तो किया होगा, बट उस टाइम के लोग ना इमोशंस पे ज्यादा जाते थे, मुझे ऐसा लगता है, रादर देन यू नो गोइंग बाय द बुक्स कि इस चीज को ऐसे ही शूट करना है, उस चीज को ऐसे ही शूट करना है। अरे फ्लो फ्लो में निकल गया यार, इमोशन तो इंटैक्ट है। पुरानी जींस में, दिस इज मी श्रेया, कम राइट बैक।

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची इसका बाना उसका बाना सबका बाना बाना मुर्गा मुर्गा नबी वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
2: हेलो
3: मिल गया
4: मैडम, आप मयूर विहार में हमारा रक्षा पे बैठ के मयूर विहार फेज वन से फेज टू गई थी, याद आया है आपका?
2: नहीं, नंबर कहाँ से मिल गया?
4: वही आपको बता रहे हैं, आप जब उतर के गई है ना अपने घर, और घर के जो आपके पड़ोसी हैं हम उनसे नंबर आपका लिए हैं, मोबाइल नंबर जो आप बोले हैं दाएं को मुड़ने के लिए, जब दाएं मुड़े हैं ना हम, मैडम आपका रास्ते में फोन भी आया था, जब आपका फुनवा बजा है तो आपकी आवाज़ सुने हैं हम, बहुत अच्छा लगा है आवाज़ सुन के। आप जब रिक्शा पे बैठी है ना, मैं हम कसम खा रहे हैं, हम जब से आप बैठे हो सीट को हम छूने भी नहीं दिए, हम धोलाए भी नहीं है।
2: क्या तुझे पागल
4: नहीं? मैडम हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे।
2: क्या कहना है?
4: मैडम आई लव यू, हम आपको देख के इतना
2: मेरी
3: बात है। अच्छा चारू चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना, चारू चारू चलो। हेलो हेलो हेलो हेलो चारू, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे किसी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने मुझे बताया कि तुमने रिक्शा पे ट्रैवल किया था, रिक्शा पे बैठ के गई थी, मैंने तो मजाक किया, तुम्हारा मुर्गा बना दिया। आई लव यू बट मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ यार, आई लव यू, मैं रिक्शा नहीं चलाता हूँ। चारू प्लीज बुरा मत मान यार, थोड़ा सा नहीं, रिक्शा मैं चलाने को तैयार हूँ यार तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम प्लीज जरा थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो, मेरे साथ प्यार से हंस के बोल दो।
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री।
8: सिंस ओवर 15 इयर्स लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन। देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस, अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलोअप। लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस।
6: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, दैट इज 732-339-3155।
9: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर, बाय नाउ एंड पे लेटर। आरके ज्वेल्स,
10: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस,
11: कंडीशंस अप्लाई।
12: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ, जेसन एंड समीर आर बैक एट एसडी कैपिटल फंडिंग, बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे।
13: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
14: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
13: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
14: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
13: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
15: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
16: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
15: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
17: Batting to kafi sare karte hain, Virat ek hi hota hai.
18: Kohli goes down the ground, Kohli goes out of the ground.
17: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
19: Ise apni jeb mein rakh le Peter. अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
17: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
14: एक ही होता है।
17: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

सूरज बिरजातिया ने नूतन जी को प्रॉमिस किया था कि उनके बेटे का कैरेक्टर बहुत ही सॉलिड निकलेगा, इवन दो ही इज प्लेइंग द व्हाट डू आई से, ही वाज एक्चुअली प्लेइंग एन एजुकेटेड विलेन. पुरानी जीन्स पे श्रेया के साथ, एंड ये जो गाना है इज फ्रॉम द फिल्म मैंने प्यार किया. इसमें अपना डेब्यू करने वाले थे मुनीष पहल. डेब्यू क्या, उससे पहले भी उन्होंने फिल्में की थी जिसमें ही वेंट अननोटिस्ड. अब ये सूरज बिरजातिया की जो फिल्म थी जिसमें सलमान खान अपना डेब्यू कर रहे थे, भाग्यश्री अपना डेब्यू कर रही थी, उसके बीच में नूतन जी का बेटा जो है वो विलेन का कैरेक्टर प्ले करेगा, ये बात नूतन जी को समझ नहीं आ रही थी. तो उन्होंने ना सूरज बिरजातिया जो कि उनके बहुत क्लोज दोस्त थे उनसे जाकर के रिक्वेस्ट की कि क्यों नहीं मेरे बेटे का रोल चेंज कर दे रहे हो, उसे कोई और रोल दे दो, उसे वो दोस्त वाला रोल दे दो, सलमान के फ्रेंड वाला. लेकिन सूरज बिरजातिया ने कहा कि तुम्हारे बेटे का रोल विल बी एच्ड इन हिस्ट्री, लोगों को याद रहेगा, मैं इतना सॉलिड बनाऊंगा. एंड इट एक्चुअली हैपेंड. मनीष बहल का रोल इन दिस फिल्म वाज आइकॉनिक, मतलब लोगों को आज भी याद है. लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं होते. पुरानी जीन्स पे दिस इज मी श्रेया.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: क्या आपको हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकेयर या गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स को लेकर कोई सवाल है? तो यूनाइटेड हेल्थकेयर प्राउडली अनाउंस करता है हमारा नया एडिसन एशियन रिसोर्स सेंटर की ओपनिंग।
4: ये सेंटर कन्वीनियंटली लोकेटेड है 561 US Highway 1 एडिसन विक शॉपिंग मॉल के अंदर।
3: यहाँ आपको अपने हेल्थ केयर बेनिफिट्स और कवरेज ऑप्शंस समझने के लिए पर्सनलाइज सपोर्ट मिलेगा। हमारी प्रोफेशनल टीम आपको फ्री कंसल्टेशन देगी ताकि आप मेडिकेयर, इंडिविजुअल और फैमिली हेल्थ प्लान्स और गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स को बेहतर समझ सके। तो आज ही विजिट कीजिए एडिसन एशियन रिसोर्स सेंटर।
5: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए। आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर। बाय नाउ एंड पे लेटर। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
6: कंडीशंस अप्लाई।
7: मैनू नवे नवे सॉफ्टवेयर खरीदने पसंद है, जदे एक दूजे दे नाल काम ना करे।
8: आई एंजॉय यूजिंग इनएफिशिएंट एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर मामा।
9: अरे मुझे कोई ट्रैक करे, मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा।
6: अगर आप इनमें से नहीं हैं, तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है। Zoho One इज एन ऑल इन वन इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सुइट, जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। यस, योर एंटायर बिजनेस। Zoho One इज इजी टू यूज, साथ साथ प्राइवेसी और प्रोटेक्शन का भी बड़ा ध्यान रखता है। काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One। गेट योर फ्री ट्रायल एट zoho.com/one।
10: निहाल सिंह नू बंगाली कुड़ी नाल किवें होया प्यार?
11: यू बॉयफ्रेंड?
12: नो नो नो नो बॉयफ्रेंड।
11: सेम, नो गर्लफ्रेंड।
10: कि निहाल बंगाली कुड़ी दी सच्चाई फड़ पाएगा? वेखो सिंह वर्सेस कौर 2, रिलीजिंग ऑन 11 सितंबर, स्टारिंग गिप्पी गरेवाल, शहनाज गिल, डायरेक्टेड बाय नवनीत सिंह, प्रोड्यूस्ड बाय गिप्पी गरेवाल, रवनीत कौर गरेवाल, श्रीकांत मोहता एंड महेंद्र सोनी।
13: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
14: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
13: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
15: Tera kya hoga, Kalia?
16: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
15: Ab, mirchi kha.
17: Radio Mirchi, it's hot.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

इस फिल्म का पहले नाम होने वाला था राग रागिनी, लेकिन फिर ऋषिकेश दा को लगा कि नहीं यार, कहीं लोगों को इससे गलत इन्फॉर्मेशन ना मिले कि द फिल्म इज ऑल अबाउट म्यूजिक एंड लोग देखने ही ना है। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, ये जगाना भी आपने सुना इज फ्रॉम द फिल्म अभिमान, यानी बच्चन साहब की फिल्म एंड ऑफकोर्स जया जी की फिल्म। तो ऋषिकेश दा जब ये फिल्म बना रहे थे ना, इनफैक्ट जब वो क्लैप्स होती है ना, मुहूर्त होता है, उसमें भी लिखा गया था राग रागिनी। बट लेटर ऑन जैसे जैसे फिल्म स्टार्टेड प्रोग्रेसिंग, ही स्टार्टेड रियलाइजिंग कि नहीं, अगर हमने इसका नाम राग रागिनी रखा तो लोगों को ये लग सकता है कि सिर्फ म्यूजिक पे फिल्म होगी, और इसकी वजह से फिल्म का असली एसेंस, अभिमान या फिर ईगो प्रॉब्लम ले लो, वो कहीं छूट ना जाए। द प्राउड दैट ही वॉन्टेड टू शो बिटवीन यू नो अमंग्स रिलेशनशिप, एंड दैट्स वाई ही चेंज द नेम, उन्होंने राग रागिनी से हटा के इसे रखा अभिमान। पुरानी जीन्स पे आप खुश रहिया के साथ, इन केस मुझसे कुछ बात करनी है, कोई शिकायत भी करनी है तो एकदम धड़ल्ले से कर सकते हो। फेसबुक एंड इंस्टा माई हैंडल इज आरजे श्रेया विद लव, दैट्स आरजे एस एच आर ई वाई श्रेया विद लव।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
1: मोदक से लेकर लड्डू तक इस गणेश चतुर्थी हर स्वीट और स्वीट विशेस का भोग चढ़ेगा सिर्फ राजभोग के यहाँ से। राजभोग विशेस यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी। ऑर्डर्स ऑन राजभोग.com और विजिट योर लोकल ग्रोसरी स्टोर।
4: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए। आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर। बाय नाउ एंड पे लेटर। आरके ज्वेल्स,
5: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
6: कंडीशंस अप्लाई।
7: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
8: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
8: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
7: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
9: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
10: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी। स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इजलिन, न्यू जर्सी।
11: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
12: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
13: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

मूवी के प्रीमियर पे ना इंडस्ट्री के सारे दिग्गज आते थे, और जब फिल्म खत्म हो जाती थी तो ना अगर उन्हें अच्छी लगती थी तो वो जाकर के अप्रिशिएट करते थे, नहीं अच्छी लगती थी तो भी बिना कुछ कहे निकल जाते थे। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ। इस फिल्म के प्रीमियर पे राजेश खन्ना साहब को कोई पूछ भी नहीं रहा था, ही वॉज द हीरो ऑफ द फिल्म। स्टिल आराधना की बात कर रही हूँ जिसका गाना भी मैंने आपको सुनाया। तो कहते हैं कि काका ना वो जो स्टेज होती है ना, सीढ़ियाँ होती हैं, उस पर कोने में खड़े हुए थे। भाई इंडस्ट्री के लोगों ने उन्हें देखा बट इग्नोर कर दिया, बिकॉज इस फिल्म से पहले काका की सारी फिल्में फ्लॉप हुई थी। बट आफ्टर दे वॉच द फिल्म एट द प्रीमियर, एवरीबडी स्टार्टेड आस्किंग कहाँ है खन्ना, कहाँ है खन्ना। दैट हैपेंड क्योंकि लोगों को पता चल गया था, ओहो राजेश खन्ना has arrived after Aradhana। पुरानी जीन्स पे उस जमाने के गाने और बातें तो चलेंगी, लेकिन मैं कौन हूँ ये याद रखना बहुत जरूरी है आपके लिए। रोज रात में मिलती हूँ, मेरा नाम है श्रेया, only on मिर्ची।

0: 92.7 FM. Radio Mitri, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

रोल चाहे जितना भी खास हो, जितना भी मीठी हो, लेकिन उस जमाने के एक्टर्स दोस्त हुआ करते थे और इस कदर की दोस्ती निभाते थे कि जाकर के पूछते थे, अरे ये रोल तू नहीं कर रहा क्या, क्यों, क्या रीजन है? पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ ये जो गाना अभी आपने सुना इस फ्रॉम द फिल्म तीसरी मंजिल। इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले थे नासिर हुसैन साहब और फिल्म में मेन लीड करने वाले थे देव साहब। अब हुआ ये कि दोनों के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ जिसकी वजह से देव साहब लेफ्ट द फिल्म। अब नासिर हुसैन साहब शम्मी कपूर के पास गए इस फिल्म का मेन लीड का रोल लेकर के। ही प्रपोज द रोल टू हिम। शम्मी साहब जो उस समय डायर नीड ऑफ अ गुड रोल थे, एक अच्छी फिल्म टू बी डायरेक्टेड बाय अ गुड डायरेक्टर, कि उनके करियर का ग्राफ उड़े, वो चाहते थे ये रोल, दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा चाहते थे। लेकिन पता है उन्होंने क्या किया? देव साहब क्योंकि उनके सबसे अच्छे दोस्त थे, उन्होंने देव साहब को कॉल किया और ये कंडीशन उन्होंने नासिर हुसैन के सामने भी रखी कि अगर देव विल बी ओके विद इट तभी मैं ये रोल करूंगा। सो भाई उन्होंने कॉल किया, देव साहब ने कहा हाँ हाँ कर ले, तेरा ही रोल था वो। तब शम्मी साहब ने इस फिल्म में स्टार किया एंड द मूवी वॉज अ सुपर डुपर हिट, वन ऑफ शम्मी कपूर मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म्स। रफ़ी साहब ने गाना गाया पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ। ऐसे बहुत सारे किस्से एक एक करके शेयर करूंगी, कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: हेलो
2: मुकेश जी।
1: कौन?
2: मुकेश जी मैं ये प्रताप बोल रहा हूँ राणा मोटर से। आपने जो 1000 दी थी ना उसका वो जो कार्बोरेटर साफ होना था वो सर हो नहीं पाया एक्चुअली थोड़ा।
1: नहीं हो पाया भाई?
2: हाँ वो नहीं हो पाया सर।
1: हाँ नहीं हो पाया
2: सर, वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा सर आप बता रहे थे ना पीछे बोनेट से आवाज आ रही है आपकी गाड़ी की। सर वो भी हो नहीं पाई है, वो उसमें थोड़ा हो नहीं पाया हमसे अभी।
1: नहीं क्या नहीं पाया तुम्हारे यार, रोज गए तुम्हें जब भी गाड़ी तो नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया, क्या मजाक ही क्या है ये?
2: नहीं मुकेश जी मैं समझ रहा हूँ वो एक
1: क्या समझ रहे हो भाई।
2: नहीं नहीं आप सही कह रहे हैं। अच्छा मुकेश जी आपने एक बताया था ना ब्रेक ऑयल डलना है, ब्रेक काम नहीं कर रहे। सर वो ऑयल डल नहीं पाया थोड़ा।
1: अरे तो हो क्या पाया है तुमसे
2: सर, वो
1: ये नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया, मुझे फोन करना है, मुझे फोन इसलिए कराया कि ये नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया।
2: नहीं सर
1: आपको तो फोन इसलिए करना था कि भाई ये जो काम दिया गया आपको वो कर दे।
2: नहीं सर कुछ हो नहीं पाया।
1: क्यों नहीं हो पाया
2: सर? वो रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी
1: है।
2: सर रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी।
1: अरे तेरा दिमाग खराब है क्या?
2: अरे सर मैं वही आपसे कह रहा हूँ, मतलब हम
1: क्या करा दू
2: सर, मतलब आप ये आप आके FIR लिखवा देंगे अपनी गाड़ी की?
1: कैसी FIR, दिमाग खराब हो गया तेरा, पागल तो नहीं है तू?
2: अरे सर जितने की गाड़ी थी इतना दे देंगे, आप गुस्सा तो मत करिए कम से कम।
1: क्या गुस्सा ना करूं, नई गाड़ी थी हमारी।
2: नहीं सर आप आपकी नई गाड़ी थी तो सर हमारा भी तो उसमें कुछ गया है, हमने भी तो ग्रीस व्रीस लगाया।
1: उसमें
2: ग्रीस ग्रीस लगाया, उसमें हमने पेट्रोल डाला है।
1: ग्रीस कितने का? 5 रुपए का लगाया। आग लगा दूंगा मैं तुम्हारे शोरूम में, तुम्हारे वर्कशॉप में।
2: अच्छा सर
1: मुझे चाहिए अपनी वापस।
2: सर आप इतना गुस्सा ना करें,
1: जिम्मेदारी तुम्हारी है FIR वगैरह कराने की।
2: सर बिल्कुल आप गुस्सा ना करें। अच्छा सर ऐसा चल सकता है जैसे आप गाड़ी ना लेके कॉम्पोजिट कर दें, हम आज शाम आपको मुर्गा खिला दें और मुकेश वो बन भी गया मुर्गा।
3: मुकेश मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, छोटा सा मजाक किया तुम्हारे साथ, मुर्गा बना दिया तुम्हारा।
1: तो जान निकाल दी हमारी।
3: मुकेश आपकी गाड़ी वही खड़ी है आपकी वर्कशॉप में, बस उसको धक्का लगाना है और आपको धक्का हम लगा देंगे। मेरे साथ जरा प्यार से कह दीजिए, गुस्सा खत्म करिए।
1: कुकड़ू कू
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: Did you see my new couch? We picked it up from Incanto in Italy. And that dining table? It's from Catalan, Italia.
8: Ye Mrs. Chopra na keeps showing off her furniture just because her husband's business picked up recently. When did she visit Italy? Chopra saab, so how was Italy?
9: Italy? Oh, all the stylish furniture is from Italmode Furniture on 685 New Jersey, 17 South in Paramus, New Jersey. They carry stylish premium Italian brand like Estero Milano, Pietro Costantini and much more.
8: What? Italmode Furniture in Paramus? Aji sunte ho? To abhi chalo, Italmode Furniture pe. Agli party, hamare ghar pe.
10: Italmode Furniture, 685 New Jersey, 17 South, Paramus, New Jersey. Or shop online at italmodefurniture.com and have it delivered anywhere in the US.
11: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए। आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर, बाय नाउ एंड पे लेटर। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
12: कंडीशंस अप्लाई। अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
13: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
14: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
13: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ऋषि कपूर एंड डिम्पल कपाड़िया की डेब्यू फिल्म बॉबी। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ शैलेंद्र जी ने गाना गाया। एंड ऋषि कपूर जब ये फिल्म बनने वाली थी उससे पहले एक ट्रेनिंग सेंटर जाया करते थे, काइंड ऑफ ए जिम। ओके, उसमें उनकी जो ट्रेनर थी शी वॉज अ पारसी गर्ल जिसका नाम था यास्मिन, एंड ही फेल इन लव विथ हर। आई मीन वो उनका पहला प्यार थी। अब जब ऋषि कपूर की फिल्म रिलीज हुई एंड ही बिकेम अ ह्यूज स्टार, तो कुछ कारणवश दे बोथ पार्टेड वेज। कहते हैं कि ऋषि कपूर थोड़े एरोगेंट भी हो गए, थोड़ा कम टाइम भी दिया, जिसकी वजह से दे बोथ ब्रोक अप। अब असली बात क्या थी ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ ये डेफिनेटली पता है दैट यास्मिन वॉज गॉर्जियस, शी वॉज प्रिटी, शी वॉज ब्यूटिफुल, और ये ऋषि कपूर ने अपनी बायोग्राफी में भी लिखा है। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, कम राइट बैक।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: It's 2 a.m. Her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
3: Don't worry. I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
2: Wait, they can see us on Sunday?
3: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
4: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए. आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर. बाय नाउ एंड पे लेटर. आरके ज्वेल्स,
5: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
6: कंडीशंस अप्लाई. हेल्थ केयर में एक सक्सेसफुल करियर की तरफ आपके हर कदम पर एम्स कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज हमेशा आपके साथ है.
7: चूज करियर फोकस सर्टिफिकेट एंड डिग्री प्रोग्राम्स इन MRI, अल्ट्रासाउंड, कार्डियोवैस्कुलर, न्यूरोडायग्नोस्टिक, एनेस्थीजिया, सर्जिकल टेक्नोलॉजी और मेनी मोर विद हैंड्स ऑन क्लिनिकल एक्सपीरियंस.
6: एम्स एजुकेशन इज नाउ वेलकमिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड ऑफरिंग I-20 टू एलिजिबल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स परस्यूइंग एन F1 स्टूडेंट वीजा. विजिट aimseducation.edu. योर हेल्थ केयर फ्यूचर स्टार्ट्स विद एम्स.
8: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं. ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स.
9: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल. ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का. सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी. स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी.
10: तेरा क्या होगा कालिया?
11: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
10: अब मिर्ची खा.
12: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.
13: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

रजिया सुल्तान का ये गाना वो जिस संग में लता जी ओनली ऑन पुरानी जीन्स, मैं हूँ श्रेया। अच्छा, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हो गई थी। कुछ लोग इसका कारण कहते हैं कि फिल्म में उर्दू का बहुत ज़्यादा यूज था। कुछ लोग इसका कारण कहते हैं कि कमाल अमरोही जिन्होंने ये फिल्म बनाई थी उन्होंने फिल्म को बनाने में बहुत साल लगा दिए। ही टुक 5 years टू मेक द फिल्म। जब ये फिल्म फ्लॉप हुई तो भाई इंडस्ट्री ने उनको काफ़ी क्रिटिसाइज किया और ये भी कहा कि इंडस्ट्री को एज एट यू नो एज द एंटायर इंडियन सिनेमा की इंडस्ट्री को डेट में लाने वाले कमाल अमरोही साहब की ये फिल्म थी। बट कमाल अमरोही मेड अ वेरी वैलिड पॉइंट। उन्होंने कहा कि 5 साल तक फिल्म का जो प्रोडक्शन हाउस था, फिल्म के जो कास्ट एंड क्रू थे, फिल्म का कैमरामैन, लाइट मैन, एवरीबडी, सबको काम मिला अपना घर चलाने के लिए। और मुझे तो ये फिल्म बहुत पसंद है। आई मीन हेमा मालिनी ना आपको एकदम अलग ही अवतार में दिखेंगी। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बा देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपनी अपनी कालीन अब चद्दर बिछाकर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, वह जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खूनरेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ये भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक और त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो हैं। ये का भौकाल मचाया मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां, भूलना मत हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू के हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3.5 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @ मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है।
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: मोदक से लेकर लड्डू तक इस गणेश चतुर्थी हर स्वीट और स्वीट विशेस का भोग चढ़ेगा सिर्फ राजभोग के यहाँ से। राजभोग विशेस यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी। ऑर्डर्स ऑन राजभोग.com और विजिट योर लोकल ग्रोसरी स्टोर।
5: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए। आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर, बाय नाउ एंड पे लेटर। आरके ज्वेल्स,
6: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
7: कंडीशंस अप्लाई।
8: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
9: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
9: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
8: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
10: This September 12th and 13th, join us at the Indo-American Community Fair at Shri Krishna Mandir, Morganville.
11: Enjoy delicious Indian food, shopping, live cultural performances, a health fair, kids activities and much more. Morning 10 a.m. to 7 p.m.
12: For vendors and information, visit www.krishnatemple.org.
13: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
14: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
13: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
15: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
16: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
15: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
17: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
15: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
18: एक ही होता है।
15: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

दोस्तों, फ्राइडे की शाम में ना कुछ अलग ही जादू होता है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और जहाँ पूरा हफ्ता हम सब अपनी अपनी लाइफ के सपोर्टिंग कैरेक्टर्स बने होते हैं, मीटिंग्स, ईमेल्स, ट्रैफिक, डेडलाइंस, न जाने क्या क्या चीज़ें हैंडल कर रहे होते हैं, फिर आता है फ्राइडे और वो बोलता है कि यार अब तो हीरो बन जाओ, क्योंकि फ्राइडे इवनिंग का मूड ना बिल्कुल बॉलीवुड ओपनिंग सीन जैसा होता है। लाइट्स थोड़ी ब्राइटर लगती है, म्यूजिक थोड़ा बेटर लगता है और प्लान्स चाहे बड़े हो या ना हो, एक्साइटमेंट फ्री में मिल ही जाती है। यार कोई मूवी नाइट प्लान कर रहा है, कोई फ्रेंड्स के साथ डिनर जा रहा है और कुछ लोग बस घर पहुंच के एसी और काउच के साथ कमिटमेंट कर चुके हैं। लेकिन यार सच्ची बताऊं ना तो बॉलीवुड में ना हमें यही सिखाया गया है कि जिंदगी परफेक्ट होने का वेट नहीं करना चाहिए, बैकग्राउंड में अच्छा म्यूजिक चलाओ और सीन एंजॉय करो। तो चलिए आज की शाम शानदार में भी हम वही करेंगे, थोड़ी मस्ती, थोड़ा म्यूजिक और थोड़ा बॉलीवुड मैजिक। तो आप भी बताओ दोस्तों, अगर आपकी फ्राइडे नाइट एक बॉलीवुड मूवी होती तो उसका जॉनर क्या होता? कॉमेडी, रोमांस, एक्शन या फुल ऑन फैमिली ड्रामा? टेल मी ऑन इंस्टाट आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और इस फ्राइडे शाम को शानदार बनाने के लिए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Buscaba la buscabana, sacabana.
2: ¡Cámbala!
1: ¡Murga, murga! ¡La viva la murga!
2: ¡Mirchi, murga!
3: हेलो
4: मिल गया मैडम, आप मयूर विहार में हमारा रक्षा पे बैठ के मयूर विहार फेज वन से फेज टू गई थी, याद है आपको?
3: नहीं, नंबर कहाँ से मिल गया?
4: वही आपको बता रहे हैं, आप जब उतर के गई है ना अपने घर, और घर के जो आपके पड़ोसी हैं, हम उनसे नंबर आपका लिए हैं, मोबाइल नंबर जो आप बोले हैं दाएं को मुड़ने के लिए, जब दाएं मुड़े हैं ना हम, मैडम आपका रास्ते में फोन भी आया था, जब आपका फोनवा बजा है तो आपकी आवाज सुने हैं हम, बहुत अच्छा लगा है आवाज सुन के। आज जब रिक्शा पे बैठी है ना, मैं हम कसम खा रहे हैं, हम जब से आप बैठे हो उस सीट को हम कि छूने भी नहीं दिए, हम धुलाए भी नहीं है।
3: क्या तुझे पागल लगता
4: नहीं
3: है?
4: वो मैडम, हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे।
3: क्या कहना है?
4: मैडम आई लव यू, हम आपको देख के इतना मेरी बात है, चारू चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना। हेलो, चारू मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे किसी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने मुझे बताया कि तुमने रिक्शा पे ट्रैवल किया था, रिक्शा पे बैठ के गई थी, मैंने तो मजाक किया, तुम्हारा मुर्गा बना दिया। आई लव यू बट मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ यार, आई लव यू, मैं रिक्शा नहीं चलाता चारू प्लीज बुरा मत माने यार, थोड़ा सा नहीं, रिक्शा मैं चलाने को तैयार हूँ यार तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम प्लीज जरा थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो, मेरे साथ प्यार से हंस के बोल दो।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
8: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर, बाय नाउ एंड पे लेटर। आरके ज्वेल्स,
9: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
10: कंडीशंस अप्लाई। देसी खाना,
11: देसी शॉपिंग,
10: देसी कल्चर
11: और देसी एंटरटेनमेंट,
10: बस एक ही डेस्टिनेशन,
11: इंडो अमेरिकन कम्युनिटी फेयर, सितंबर 12th और 13th, श्री कृष्णा मंदिर मॉर्गनविल।
12: फॉर वेंडर्स एंड इन्फॉर्मेशन विजिट www.krishnatemple.org।
13: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
14: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
13: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
14: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
13: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, हिजलिन।
15: The mortgage industry has changed over the years, par hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
16: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
15: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
16: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
17: It's 2 a.m. Her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
18: Don't worry. I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
17: Wait, they can see us on Sunday?
18: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
19: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
3: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
19: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
0: Beta, शादी next week है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
5: अरे माँ, अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटेटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में।
0: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
18: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS, NMLSID 2108069।
7: तेरा क्या होगा कालिया?
8: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
7: अब मिर्ची खा।
20: Radio Mirchi. It's hot.
21: Sham Sharda, let's go non-donkey, have a funky time.
22: दोस्तों हम सब ना अपनी कार में दो अलग पर्सनालिटीज लेके चलते हैं। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और वैसे तो हम बिल्कुल डिसेंट से सीधे साधे इंसान होते हैं, लेकिन जैसे ही हमारा फेवरेट बॉलीवुड गाना बजता है, स्टेयरिंग व्हील माइक बन जाता है, विंडशील्ड ऑडियंस और पूरी कार एक पर्सनल कॉन्सर्ट स्टेज। यार किसी को लिरिक्स परफेक्ट आते हो या नहीं आते हो, कोई सिर्फ लाला ला पे काम चला लेता है, और कुछ लोगों का कॉन्फिडेंस तो इतना सॉलिड होता है कि एकदम कॉन्फिडेंस से गलत गाना गा देते हैं कि ओरिजिनल सिंगर भी सोचने लगता है कि भाई क्या गा रहे हो। तो चलिए आज एक काम करते हैं, जो अगला गाना है जो मैं बजाने वाली हूं आपके लिए, उसे सिर्फ सुनना मत, जहां भी हो, कार में, किचन में, ऑफिस से घर जाते हुए, चैलेंज ये है कि उसके साथ आपको जोर से ये गाना गाना है। क्योंकि बॉलीवुड के गाने सिर्फ सुनने के लिए थोड़ी ना बने यार, वो तो साथ गाने के लिए भी बने हैं, अपना भी तो टच होना चाहिए। और हाँ, बाद में डीएम करके जरूर बताना कि आज के गाने में लिरिक्स याद भी थे या फुल कॉन्फिडेंस पे गलत गा रहे थे। टेल मी ऑन इंस्टेड आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। तो चलिए फ्राइडे कार म्यूजिक शुरू करते हैं राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
3: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
2: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
4: टैप टैप सेंड डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
5: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए। आरके ज्वेल्स देता है

0: हर स्वीट और स्वीट विशेस का भोग चढ़ेगा सिर्फ राजभोग के यहाँ से। राजभोग विशेस यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी। ऑर्डर्स ऑन राजभोग.com और विजिट योर लोकल ग्रोसरी स्टोर।
1: कि जसनीत नू निहाल सिंह वापस पिंड लेके आ पाएगा?
2: जे तू जसनीत नू वापस ना ना लेके आया पुत, तो मेरा भी मरी दा मुंह देखेगा।
1: कि पिंड वाले जसनीत नू वापस पिंड देख पाणगे? वेखो सिंह वर्सेस कौर 2 रिलीजिंग ऑन 11 सितंबर, स्टारिंग गिप्पी गरेवाल, शहनाज गिल, डायरेक्टेड बाय नवनीत सिंह, प्रोड्यूस्ड बाय गिप्पी गरेवाल, रवनीत कौर गरेवाल, श्रीकांत मोहता एंड महेंद्र सोनी।
3: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
4: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
3: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
5: From the finest kitchens in India, a 1,000-year-old tradition of Khandani chef's recipes. Comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
6: Listener, mein back to back gana sunega.
7: Back to back gana sunega.
6: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
8: Sham Shandar, let's go not donkey, have a funky time.
9: कुछ कॉन्सर्ट्स का काउंटडाउन कैलेंडर से नहीं, गानों से होता है, और आज मिर्ची पर वो काउंटडाउन फुल वॉल्यूम में होने वाला है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और सबसे पहले आप सबको बहुत सारा शुक्रिया, एवरीवन हु पार्टिसिपेटेड इन द सोनू निगम कॉन्टेस्ट। आपके आंसर्स, आपके फेवरेट सॉन्ग्स और इतना सारा एक्साइटमेंट देखकर एक बात तो क्लियर है, न्यू जर्सी इज एब्सोल्युटली रेडी फॉर सोनू निगम। और इसी एक्साइटमेंट को और बढ़ाते हुए अब मिर्ची पर सुनेंगे सोनू निगम के बैक टू बैक गाने, क्योंकि कल यानी शुक्रवार सितंबर 11 को सोनू निगम लेकर आ रहे हैं रिवॉल्यूशन टूर एट हार्ड रॉक लाइव ईटिस एरिना अटलांटिक सिटी में, प्रेजेंटेड बाय अमित जेटली ऑफ सा यूएसए INC। तो अगर टिकट्स अभी तक नहीं लिए तो चेकआउट ticketmaster.com, saiusainc.com या फिर sulekha.com, क्योंकि बहुत ही कम टिकट्स बचे हैं, तो जल्दी से जाइए। और अब बातें कम, म्यूजिक ज्यादा, सोनू निगम बैक टू बैक ओनली ऑन मिर्ची। It's hot.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chefs' recipes comes the Naan. The same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
4: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए। आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर। Buy now and pay later. आरके ज्वेल्स,
5: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
6: Conditions apply.
7: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
8: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
9: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
9: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
8: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, हिजलन।
10: तो हो जाइए तैयार एक ऐसी यादगार शाम के लिए जहां होगा संगीत, मस्ती, नॉस्टैल्जिया और उषा उथुप का वही लेजेंडरी इलेक्ट्रिफाइंग अंदाज। इस दुर्गा पूजा न्यू जर्सी झूमेगा एक लेजेंड के साथ।
11: अक्टूबर 11th अग्रानी दुर्गा पूजा NJ। टिकट सेलिंग फास्ट ऑन सुलेखा। कॉल 9549188589।
12: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
13: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
12: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं काम भी फास्ट।
11: टैप टैप सेंड डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
14: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
15: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, best quality at the lowest prices.
14: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.

दोस्तों कितनी खूबसूरत बात है ना कि इस एक लम्हे ने हम सबको जोड़ दिया है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और इसी वक्त न्यू जर्सी में कितनी सारी गाड़ियां चल रही होंगी, किसी के ऑफिस से घर की ड्राइव है, कोई ग्रोसरी लेने जा रहा होगा, कोई बच्चों को पिकअप करके आ रहा है, और शायद किसी की रोड ट्रिप ऑलरेडी शुरू भी हो चुकी है। सबकी डेस्टिनेशन अलग है, लेकिन कुछ देर के लिए ना हम सब एक ही गाना, एक ही कहानी और एक ही फ्रीक्वेंसी शेयर कर रहे हैं। और शायद इसीलिए रेडियो मुझे सबसे ज़्यादा खास लगता है, क्योंकि ये सिर्फ गाने नहीं बजाता, ये अलग अलग सफरों को कुछ मिनटों के लिए ना एक साथ ले आता है। तो अगर आज मिर्ची आपके सफर का हिस्सा बनी है तो मुझे जरूर बताना कि इस वक्त न्यू जर्सी के किस कोने से सुन रहे हो। टेल मी ऑन इंस्टा @RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि इस पल में हम सब जुड़े हुए हैं। तो चलिए इस खूबसूरत पल को सेलिब्रेट करते हैं विद दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: हेलो,
1: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
0: हाँ जी।
1: यार कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचे थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
0: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
1: अरे फोटो आकर देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
0: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
1: फोटो बहुत अच्छा है? सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बका दिए यार, सारे दिमाग।
0: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
1: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
0: मैंने देखी खुद अपने हाथ से एल्बम। सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए एक से बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
1: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
0: अरे शर्म की क्या बात है सर,
1: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये?
0: किसी
1: का कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
0: लगाया नहीं
1: क्या, कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े
0: गाय
1: नहीं दीदी, मैं कल को
0: फोटो खींचे।
1: अरे लेंस ऐसे
0: पूरे
1: कपड़े कौन से, मैंने शेरवानी पहन रखी थी, शेरवानी गायब है, अंदर से सब दिख रहा है यार। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी।
0: अरे
1: मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
0: नहीं साहब, देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसने हमारा नाम है इलाके में।
1: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे हैं।
0: सर क्या बात, सुन के बनाया है?
1: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू उसका, चलो छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं है, वो खड़ा है, जितने बराती आया है सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
0: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
1: गड़बड़
0: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
1: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी।
0: दिखाइए
1: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
0: कोई सिस्टम ही नहीं है, कपड़े गायब हो जाए।
1: ऐसा सिस्टम है, एक जगह होता है,
0: कहाँ होता है बताइए।
2: रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
4: ये पकड़ा।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए डीप फूड्स चटनी। डीप, खाओ तो जानो।
8: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर, बाय नाउ एंड पे लेटर। आरके ज्वेल्स,
9: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस,
10: कंडीशंस अप्लाई।
11: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
12: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
11: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
12: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Izzilin।
13: It's 2 a.m. Her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
14: Don't worry. I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
13: Wait, they can see us on Sunday?
14: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
15: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
16: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
17: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
16: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
18: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
19: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में।
18: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
14: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
2: यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
0: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
0: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
2: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
9: तेरा क्या होगा कालिया?
10: सरदार
4: मैंने आपका नमक खाया सरदार,
10: अब मिर्ची खा।
20: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
21: शाम शानदार, लेट्स डू नॉटंकी, हैव अ फंकी टाइम।
22: शुक्र है, शुक्रवार आ चुका है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और फ्राइडे ना दोस्तों सिर्फ वीक का एंड नहीं होता है, कभी कभी नए आइडियाज की बिगिनिंग भी होती है। क्योंकि जब दिमाग थोड़ा रिलैक्स हो जाता है ना, तभी हम वो सवाल पूछ पाते हैं जो बिजी वीकेंड्स में कहीं ना कहीं रह जाते हैं, कि क्या मैं सही फाइनेंशियल डिसीजंस ले रहा हूं, या क्या होम बाइंग का ये सही वक्त है, या फिर मेरे एग्जिस्टिंग मॉर्गेज के बेटर ऑप्शंस हो सकते हैं। तो अगर ये सवाल आपके भी माइंड में है तो आज का सेगमेंट बिल्कुल आपके लिए है। मेरे साथ है मेरे दोस्त बीश फ्रॉम लैंड मॉर्गेज। ओवर टू यू बीश।
23: शुक्र करो शुक्रवार है भाइयों बहनों, मैं हूं आपका दोस्त बीश फ्रॉम लैंड मॉर्गेज, गिविंग यू फाइनल रेट अपडेट फॉर द वीक। And America remembers 25 years after 9/11. Well, what happened this week? And here's the important part. Don't let a headline about mortgage rates make you put your home ownership plans on hold. Right now, the market is giving buyers something they haven't had in a while. More homes to choose from and a little more negotiating room. At the same time, higher rates are keeping some buyers on the sidelines. Existing home sales fell 2% in August, while inventory has climbed to roughly a decade high level. And here's another reason why I'm watching the market closely. Inflation came in stronger than expected, which is putting pressure on the bond market and mortgage rates heading into next week's Federal Reserve meeting. So my advice this weekend is simple. Don't try to perfectly time the market. Know your numbers. If you're thinking about buying, refinancing or moving up, or even just wondering what you qualify for, give Lion Mortgage a call at 732-339-3155. Lion Mortgage, 732-339-3155. Looking at your mortgage rates today, the 30-year fixed mortgage rate, 6.625%. 20-year fixed mortgage rate, 6.5%. 15-year fixed mortgage rate, 6.125%. Friends, you can always visit our user-friendly website at www.lionmtg.com, and it is lionmtg.com. Friends, I'm your local mortgage professional reminding you, the right mortgage isn't just about getting the lowest rate. It's about finding the right loan for your overall financial goals. So call Lion Mortgage today at 732-339-3155. Lion Mortgage, 732-339-3155. With that, have a wonderful weekend. Thank you very much. Bye-bye.
24: This mortgage update is brought to you by Lion Mortgage.

0: flavor and freshness. Guaranteed. Deep Cow, to jaano.
1: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए. आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर. बाय नाउ एंड पे लेटर. आरके ज्वेल्स,
2: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
3: कंडीशंस अप्लाई.
4: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
5: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
4: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
5: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
4: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन.
6: तो हो जाइए तैयार एक ऐसी यादगार शाम के लिए जहां होगा संगीत, मस्ती, नॉस्टैल्जिया और उषा उथुप का वही लेजेंडरी इलेक्ट्रिफाइंग अंदाज. इस दुर्गा पूजा न्यू जर्सी झूमेगा एक लेजेंड के साथ.
7: अक्टूबर 11th अग्रणी दुर्गा पूजा NJ. टिकट सेलिंग फास्ट ऑन सुलेखा. कॉल 9549188589.
8: मोदक से लेकर लड्डू तक इस गणेश चतुर्थी हर स्वीट और स्वीट विशेष का भोग चढ़ेगा सिर्फ राजभोग के यहाँ से. राजभोग विशेष यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी. ऑर्डर्स ऑन राजभोग.com और विजिट योर लोकल ग्रोसरी स्टोर.
9: क्या आपको हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकेयर या गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स को लेकर कोई सवाल है? तो यूनाइटेड हेल्थ केयर प्राउडली अनाउंस करता है हमारा नया एडिसन एशियन रिसोर्स सेंटर की ओपनिंग.
10: ये सेंटर कन्वीनियंटली लोकेटेड है 561 US Highway 1 एडिसन वीक शॉपिंग मॉल के अंदर.
9: यहाँ आपको अपने हेल्थ केयर बेनिफिट्स और कवरेज ऑप्शंस समझने के लिए पर्सनलाइज सपोर्ट मिलेगा. हमारी प्रोफेशनल टीम आपको फ्री कंसल्टेशन देगी ताकि आप मेडिकेयर, इंडिविजुअल और फैमिली हेल्थ प्लान्स और गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम को बेहतर समझ सके. तो आज ही विजिट कीजिए एडिसन एशियन रिसोर्स सेंटर.
11: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं. ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स.
12: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल. ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का. सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी. स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी.
13: बेटा, शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है.
14: अरे माँ, अभी भेजता हूँ. टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे. टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में.
13: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट.
15: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे. टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069.
16: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है.
17: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड.
16: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
18: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
16: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
19: एक ही होता है.
16: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची. बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.
20: 20 minutes of back-to-back music brought to you by RK Jewels. Best quality, best price. Only on Radio Mirchi 92.7 FM and 103.3 FM HD2. It's hot. Whoa.

एक तरफ वीकेंड खत्म भी नहीं हुआ और दूसरी तरफ ओटीटी ने वॉच लिस्ट और भी लंबी कर दी। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और इस हफ्ते स्ट्रीमिंग पर काफी मिक्स प्लेटर आ रहा है। द रिवॉल्यूशनरी हिस्टोरिकल ड्रामा लेकर आ रहा है, घमासान क्राइम ड्रामा जोन में है और चंबक थोड़ा लाइटर फैमिली कॉमेडी स्पेस में है। मतलब एक ही घर में तीन लोग रिमोट पकड़ के तीन अलग मोड्स में डिमांड कर सकते हैं। और यार मुझे तो ओटीटी का ये पार्ट सबसे ज्यादा फनी लगता है कि डिसीजन ना कॉन्टेंट का कम नेगोसिएशन का ज्यादा होता है कि यार आज कुछ सीरियस देखना चाहिए कि नहीं नहीं यार आज थोड़ा लाइट देखना चाहिए। अरे यार 40 मिनट्स का ही एपिसोड है, मतलब ये कॉन्वर्जेशन हमारे डेली लाइफ के पार्ट बन चुके हैं और 20 मिनट सिर्फ चूज करने में ही निकल जाते हैं। तो आज का सवाल बहुत सिंपल है, आपकी वॉचलिस्ट मूड से डिसाइड होती है या कास्ट देखकर? मतलब डीएम करना आरजे मिर्ची सिद्धि को SIDDHI। वैसे ये रिमोट सबसे ज्यादा किसके हाथ में रहता है? और जब तक ओटीटी डिसाइड होता है प्लेलिस्ट का डिसीजन तो हम ले चुके हैं, क्योंकि अगला बॉलीवुड गाना राइट हियर फॉर यू ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतूराज only on मिर्ची it's hot।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई यानी 2018 में जिन लोगों ने ये सीरियल बात देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपनी अपनी कालीन अब चद्दर बिछाकर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौज है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खूनरेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ये भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक कॉल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो ये का भौकाल मचाया मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां, भूलना मत हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते हैं ना भैया, अमा पनवा चटाई के जब धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगा है कि ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3:30 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
0: साथ जीतूराज only on Mirchi, it's hot।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: मोदक से लेकर लड्डू तक इस गणेश चतुर्थी हर स्वीट और स्वीट विशेस का भोग चढ़ेगा सिर्फ राजभोग के यहाँ से। राजभोग विशेस यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी। ऑर्डर्स ऑन राजभोग.com और विजिट योर लोकल ग्रोसरी स्टोर।
5: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर, बाय नाउ एंड पे लेटर। आरके ज्वेल्स,
6: बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस,
7: कंडीशंस अप्लाई।
8: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
9: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
9: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
8: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
10: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
11: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
12: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
11: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
8: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
9: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
8: Explore our stunning bridal lehengas or exclusive reception wear.
9: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
8: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islington.
13: तेरा क्या होगा कालिया?
14: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
13: अब मिर्ची खा।
15: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
16: शाम शानदार, लेट्स गो नॉट डंकी, हैव अ फंकी टाइम।
17: एक एल्बम जिसके सारे के सारे गाने सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जहाँ इतने सारे गाने बनते हैं, कभी कोई हिट होते हैं, कभी कोई फ्लॉप, लेकिन कभी कभार कुछ ऐसे एल्बम्स बन जाते हैं ना जिसके सारे के सारे गाने एक से बढ़कर एक होते हैं, जिसको आप स्किप ही नहीं कर सकते और वो टाइमलेस रह जाते हैं। जी हाँ, 2007 की मूवी सलाम इश्क, वो एक ऐसा बॉलीवुड म्यूजिक का एल्बम था जिसके यार इतने अमेजिंग गाने थे। मतलब ये एल्बम नहीं था, ये तो थी म्यूजिकल थाली, क्योंकि 6 अलग कहानियां और उससे भी ज्यादा उनके अमेजिंग से जज्बात जो कि कैप्चर हुए थे हर एक गानों में। तो चलिए, इसी का एक गाना है सलाम इश्क द टाइटल ट्रैक। दोस्तों, इसमें तो यार 6 जोड़ियां एक ही फ्रेम में दिख रही थी और लोगों ने कहा कि ये ना कहीं ना कहीं बॉलीवुड का एवेंजर्स मोमेंट था, क्योंकि वैसे तो एवेंजर मोमेंट 2008 में आया था, लेकिन बॉलीवुड ने बहुत ही पहले, इट वॉज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम इन 2007, इतने सारी जोड़ियां एक साथ, इतने सारी सिंगर्स एक साथ आए थे इस एक गाने के लिए, सलाम ए इश्क द टाइटल ट्रैक। वैसे तो यार सॉन्ग का स्केल और ग्रैंडियर देख के यही लगता था कि किसी अवार्ड शो के लिए ही ये गाना बनाया हो, क्योंकि शूटिंग के लिए भी इतना मैसिव सेट डिजाइन हुआ था और सारी जोड़ियों को एक ही दिन में सिंक प्रैक्टिस करनी थी। तो जी हाँ, सारे जो बॉलीवुड की जोड़ियाँ थी वो तो इस गाने में थी, लेकिन सारे जो म्यूजिकल सिंगर्स यानी सोनू निगम, श्रेया घोषाल, कुणाल गांजावाला और भी कई सारे सिंगर्स एक ही साथ इस गाने में थे, तो ये गाना तो एक शादी थीम बनना ही था। चलिए सुनते हैं सलामे इश्क टाइटल ट्रैक फ्रॉम द मूवी सलामे इश्क। लेकिन आप भी बताइए वो कौन सा ऐसा एल्बम है जिसका कोई भी गाना आप स्किप नहीं कर पाते। टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्दी SIDDHI। और तब तक सलामे इश्क का ये टाइटल ट्रैक राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसके सारे के सारे गाने सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, बातें हो रही है यार कि कभी कभी कुछ ऐसे एल्बम्स बन जाते हैं कि जिसका कोई भी गाना मन ही नहीं करता कि हम स्किप करें। और वो जब जमाना आता था ना कि जब कैसेट्स आती थी, तो एक ऐसी कैसेट उस एल्बम की बाय करना तो फुल ऑन पैसा वसूल लगता था। और ऐसा ही एक एल्बम था 2007 का, सलामे इश्क, जिसके यार हर एक गाना बहुत ही अमेजिंग था। सलामे इस टाइटल ट्रैक के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं, लेकिन और एक गाना इस एल्बम का, तेनू लेके, जो कि गाया गया है सोनू निगम एंड महालक्ष्मी अय्यर ने। वैसे तो यार इस गाने के लिए सलमान खान ने जो डांस किया था और उनकी जो एंट्री आई थी, वो एंट्री कई सारी शादियों का एंथम बन गया था। मतलब इतने सारे दुल्हों ने उसी गाने पर अपनी एंट्री की है कि यार बस तेनू मैं लेके जावांगा, ये एक शादी के लिए बहुत ही बेस थीम बन गया था। और ना सिर्फ शादी के लिए यार, मतलब प्रपोजल के लिए भी यही गाना यूज करते थे। जी हाँ, ऑलमोस्ट फॉर अ डेकेड ये चला, जब तक कि नए गाने नहीं आए। तो वन ऑफ द हिट सॉन्ग्स ऑफ दिस एल्बम, तेनू लेके मैं जावांगा, सोनू निगम और महालक्ष्मी अय्यर ने गाया हुआ ये गाना, वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट आइकॉनिक सॉन्ग। तो चलिए इसे प्ले करते हैं। लेकिन और भी एक गाना बाकी है इसी एल्बम का। वैसे आप भी मुझे अपनी रिक्वेस्ट जल्द से जल्द भेज सकते हो, डीएम मी ऑन इंस्टा @RJMirchiSiddhi, SIDDHI, कि इस एल्बम का आपको कौन सा गाना पसंद है, जल्दी से बताइए। और तब तक के लिए तेनू लेके मैं जावांगा, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, pues cabana, sacabana.
2: ¡Rámbala!
1: Burga, burga. La vieja la burga.
2: ¡Mirchi, burga!
3: हेलो
4: हेलो मुकेश जी.
3: कौन
4: मुकेश जी? मैं ये प्रताप बोल रहा हूँ राणा मोटर से. आपने जो 1000 दी थी ना उसका हाँ, वो जो कार्बोरेटर साफ होना था वो सर हो नहीं पाया एक्चुअली. थोड़ा
3: नहीं हो पाया भाई.
4: हाँ वो नहीं हो पाया सर.
3: हाँ नहीं हो पाया
4: सर, वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी. अच्छा सर, आप बता रहे थे ना पीछे बोनेट से आवाज आ रही है आपकी गाड़ी की. सर वो भी हो नहीं पाई है, वो उसमें थोड़ा हो नहीं पाया हमसे अभी.
3: नहीं, क्या नहीं पाया तुम्हारे यार, रोज गए तुम्हें जब भी गाड़ी पे नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया है. क्या मजाक ही क्या है ये?
4: नहीं मुकेश जी मैं समझ रहा हूँ वो एक
3: क्या समझ रहे हो भाई.
4: नहीं नहीं आप सही कह रहे हैं. अच्छा मुकेश जी आपने एक बताया था ना ब्रेक ऑयल डलना है, ब्रेक काम नहीं कर रहे. सर वो ऑयल डल नहीं पाया थोड़ा.
3: अरे तो हो क्या पाया है तुमसे
4: सर? वो
3: ये नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया. मुझे फोन करना है, मुझे फोन इसलिए कराया कि ये नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया.
4: नहीं सर एक्चुअली
3: आपको तो फोन इसलिए करना था कि भाई ये जो काम दिया गया आपको वो कर दे.
4: नहीं सर कुछ हो नहीं पाया.
3: क्यों नहीं हो पाया
4: सर? वो रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी.
3: है
4: सर रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी?
3: अरे तेरा दिमाग खराब है क्या?
4: अरे सर मैं वही आपसे कह रहा हूँ. मतलब हम
3: क्या करा दू
4: सर? मतलब आप ये आप आके FIR लिखवा देंगे अपनी गाड़ी की?
3: कैसी FIR? दिमाग खराब हो गया तेरा, पागल तो नहीं है तू?
4: अरे सर जितने की गाड़ी थी इतना दे देंगे आप? गुस्सा तो मत करिए कम से कम.
3: क्या गुस्सा ना करूं, नई गाड़ी थी हमारी.
4: नहीं सर आप आपकी नई गाड़ी थी तो सर हमारे भी तो उसमें कुछ गया है. हमने भी तो ग्रीस व्रीस लगाया.
3: उसमें
4: ग्रीस ग्रीस लगाया, उसमें हमने पेट्रोल डाला है.
3: ग्रीस कितने का? 5 रुपए का लगाया. आग लगा दूंगा मैं तुम्हारे शोरूम में, तुम्हारे वर्कशॉप में.
4: अच्छा सर
3: मुझे चाहिए अपनी वापस.
4: सर आप इतना गुस्सा ना करें,
3: जिम्मेदारी तुम्हारी है FIR वगैरह कराने की.
4: सर बिल्कुल आप गुस्सा ना करें. अच्छा सर ऐसा चल सकता है जैसे आप गाड़ी ना लेके कॉम्पोजिट कर दें, हम आज शाम आपको मुर्गा खिला दें और मुकेश वो बन भी गया मुर्गा.
5: मुकेश मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, छोटा सा मजाक किया तुम्हारे साथ, मुर्गा बना दिया तुम्हारा.
3: तो जान निकाल दी हमारी.
5: मुकेश आपकी गाड़ी वहीं खड़ी है आपकी वर्कशॉप में, बस उसको धक्का लगाना है और आपको धक्का हम लगा देंगे. मेरे साथ जरा प्यार से कह दीजिए, गुस्सा खत्म करिए.
3: कुकड़ू कू
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
7: This gold update is brought to you by Raj Jewels, Kingdom of Jewels, where tradition meets style.
8: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
9: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
10: Honey, it's 11 p.m. our bedtime. Where are you?
11: I am not going to bed with you ever again.
10: But why? What did I do?
11: That bed is horrible. It's outdated and when we are on it creaks so loud ki sabko pata hai ki ghar pe kya chal raha hai.
10: Oh honey, those days are gone. I bought a new bedroom furniture set from J&M Furniture today.
11: Wow, you mean J&M Furniture on 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey? The ones who carry stylish furniture from Alf Italia?
10: Yes, yes, yes. Yes, come soon. Honey!
11: Thank you, Janu. Let's make this a night to remember.
12: J&M Furniture, 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey. Or shop online at jnmfurniture.com and have it delivered anywhere in the US. Your bedroom will never be the same again.
13: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए. आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर. बाय नाउ एंड पे लेटर. आरके ज्वेल्स,
14: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
15: कंडीशंस अप्लाई.
16: क्या आपको हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकेयर या गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स को लेकर कोई सवाल है? तो यूनाइटेड हेल्थकेयर प्राउडली अनाउंस करता है हमारा नया एडिसन एशियन रिसोर्स सेंटर की ओपनिंग.
17: ये सेंटर कन्वीनियंटली लोकेटेड है 561 US Highway 1 एडिसन विक शॉपिंग मॉल के अंदर.
16: यहाँ आपको अपने हेल्थ केयर बेनिफिट्स और कवरेज ऑप्शंस समझने के लिए पर्सनलाइज्ड सपोर्ट मिलेगा. हमारी प्रोफेशनल टीम आपको फ्री कंसल्टेशन देगी ताकि आप मेडिकेयर, इंडिविजुअल और फैमिली हेल्थ प्लान्स और गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम को बेहतर समझ सके. तो आज ही विजिट कीजिए एडिसन एशियन रिसोर्स सेंटर.
18: फ्रॉम द फाइनेस्ट किचन्स इन इंडिया, अ 1000-year-old ट्रेडिशन ऑफ खानदानी शेफ्स रेसिपीज कम्स द नाम. द सेम ट्रेडिशनल टेस्ट, फ्लेवर एंड फ्रेशनेस गारंटीड. तो जानो.
19: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन
0: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी.
19: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
0: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, इजलिन.
15: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
20: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
15: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
21: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
22: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
21: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं काम भी फास्ट।
23: टैप टैप सेंड डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
24: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा।
25: Only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot. Yeah.

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शादा लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धी। और वैसे इतने सारे गाने जहाँ बनते हैं, कुछ फ्लॉप कुछ हिट, लेकिन यार कुछ ऐसे एल्बम्स बनते थे जिसका हर एक गाना एक से बढ़कर एक होता था। और 2007 में रिलीज हुआ एक ऐसा एल्बम सलामी इश्क, जी हाँ, शंकर महादेवन के मैक्सिमम कंपोजिशंस इस एल्बम के लिए थे। और हर एक गाना यार ब्लॉकबस्टर था, मतलब आप स्किप भी नहीं कर सकते, चाहे वो बाबू जी धीरे चलना का रिमिक्स वर्जन ही क्यों ना हो। तो यार इसी एल्बम का एक जो सॉन्ग है वो बहुत ही खास है, एंड दैट इज मेरा दिल दिल मेरा, संग बाय शान एंड निहिरा जोशी। वैसे तो यार इस गाने को जब फिल्माया गया था तो इतने सारे कपल्स हैं इस मूवी में, जॉन अब्राहम विद्या बालन हो, उनकी केमिस्ट्री तो बहुत ही अमेजिंग थी, फिर चाहे हमारी प्रियंका चोपड़ा और सलमान खान हो, लेकिन यार सबसे ज्यादा जो अमेजिंग केमिस्ट्री थी जिसने लोगों का दिल जीत लिया था, दैट वॉज शैनन एसरा एंड गोविंदा की। मतलब ये गाना स्पेसिफिकली जिसमें शैनन एसरा ने बहुत सारे एथनिक कॉस्ट्यूम्स पहने थे और गोविंदा बीन गोविंदा अलग अलग जगहों पे डांस किए जा रहे थे, मतलब कहीं हवेलियों के सामने कहीं ट्रक पर, दिस सॉन्ग वॉज रियली रियली ब्यूटिफुली पिक्चराइज। और गोविंदा के डांस मूव्स, मतलब दे वर किलिंग इट, दे वर टोटली किलिंग इट। तो वेरी वेरी क्यूट सॉन्ग और बहुत ही क्यूट जोड़ी लग रही थी शैनन एसरा और गोविंदा की। वैसे यार ये गाना इतना

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਖਰੀਦਣੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ।
3: ਆਈ ਐਂਜੋਏ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਐਂਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਮਾਮਾ।
4: ਅਰੇ ਮੁਝੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰੇ ਮੁਝੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਕਾ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੇ ਬਾਬਾ।
5: ਅਗਰ ਆਪ ਇਨਮੇ ਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਆਪਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੇ ਲਈ ਜ਼ੋਹੋ 1 ਸਹੀ ਹੈ। ਜ਼ੋਹੋ 1 ਇਜ਼ ਐਨ ਆਲ ਇਨ 1 ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸੂਟ ਜਿਸਸੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾ ਸਕਤੇ ਹੈਂ। ਯੈਸ, ਯੋਰ ਇੰਟਾਇਰ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਜ਼ੋਹੋ 1 ਇਜ਼ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਯੂਜ਼, ਸਾਥ ਸਾਥ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਾ ਵੀ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਤਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਅਨੇਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ 1 ਜ਼ੋਹੋ 1। ਗੈਟ ਯੋਰ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਐਟ zoho.com/1।
6: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए। आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर। बाय नाउ एंड पे लेटर। आरके ज्वेल्स,
7: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
8: कंडीशंस अप्लाई।
9: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती। वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
10: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
11: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
10: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
12: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
13: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
12: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
13: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन।
14: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आर

0: स्वीट सेवर टुडे।
1: मोदक से लेकर लड्डू तक इस गणेश चतुर्थी हर स्वीट और स्वीट विशेस का भोग चढ़ेगा सिर्फ राजभोग के यहाँ से। राजभोग विशेस यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी। ऑर्डर्स ऑन राजभोग.com और विजिट योर लोकल ग्रोसरी स्टोर।
2: फेमस इंडियन एस्ट्रोलॉजर पंडित रामदेव इज नाउ इन न्यू जर्सी। एक्सपर्ट इन पाम रीडिंग, फेस रीडिंग, हॉरोस्कोप्स एंड बर्थ चार्ट। कॉल पंडित रामदेव फॉर ऑल योर एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस ऑन लव, रिलेशनशिप्स, बिजनेस एंड करियर। कॉल 732-366-6777।
3: 20 minutes of back-to-back music brought to you by RK Jewels. Best quality, best price. Only on Radio Mirchi 92.7 FM and 103.3 FM HD2. It's hot.

शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और स्वागत है आपका आज की इस खूबसूरत शाम में। वैसे खूबसूरत शाम के खूबसूरत गाने तो बज ही रहे हैं, लेकिन यार एक ऐसा खूबसूरत एल्बम निकला था जिसके सारे के सारे गाने अमेजिंग थे। 2007 की रिलीज्ड सलामे इश्क की मूवी का जो गाना है, सॉरी जो एल्बम है, उसके सारे के सारे गाने अमेजिंग थे यार। शंकर एहसान लॉय ने इस एल्बम को कंपोज किया था और इसके काफ़ी सारे गानों के बारे में हमने ऑलरेडी बात की है, लेकिन एक गाना है जो आपने रिक्वेस्ट किया है। जी हाँ, आदित्य पाटिल एडिसन में जो रहते हैं, उन्होंने एक गाना रिक्वेस्ट किया इसी एल्बम का, एंड दैट इज दिल क्या करे संग बाय अदनान सामी। वैसे तो यार दोस्तों, सलामे इश्क का टाइटल ट्रैक तो अमेजिंग था ही, लेकिन उसी टाइटल ट्रैक का एक अलग वर्जन बनाया गया था दिल क्या करे इस गाने में, अदनान सामी की मैजिकल वॉइस में। और एक खास बात थी इस गाने की कि यार इस गाने का जो पूरा मूड है, पूरा रोमांटिक मूड है, यू नो पूरा रोमांस ओवरलोडेड है इस गाने में, लेकिन उस रोमांस के वाइब को रखने के लिए यानी सेटअप करने के लिए रिकॉर्डिंग स्टूडियो में ना सिर्फ एक कैंडल जलाई थी ताकि एक नो अच्छा सा मूड सेट हो जाए और अदनान सामी एकदम हैप्पी लिए गाना गा पाए, एकदम अमेजिंग मूड में, शाम वाले मूड में। और ऐसा ही कुछ हुआ, बस रिकॉर्डिंग स्टूडियो में एक कैंडल जलाई गई थी और उसी कैंडल की लाइट में अदनान सामिक ने अपनी मैजिकल आवाज में ये गाना गाया। तो चलिए आदित्य के लिए बजाते हैं दिल क्या करे फ्रॉम द वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक एल्बम्स सलामे इश्क 2007 की रिलीज। वैसे दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा कोई एल्बम पता है जिसके सारे के सारे गाने आपको पसंद है तो टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDH चाहे, क्योंकि बजाते हैं यार उस एल्बम के सारे गाने राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
5: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए। आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर, बाय नाउ एंड पे लेटर। आरके ज्वेल्स,
6: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
7: कंडीशंस अप्लाई।
8: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री।
9: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन। देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस। अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलोअप। लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस।
3: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, दैट इज 732-339-3155।
10: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
11: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
10: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
12: बेटा, शादी next week है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ, सिर्फ डायलॉग ही है।
13: अरे माँ, अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना। इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटेटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में।
12: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
14: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS, NMLSID 2108069।
15: तेरा क्या होगा कालिया?
16: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
15: अब मिर्ची खा।
17: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

बॉलीवुड की सबसे बड़ी सुपर पावर पता है क्या है? ये हमें हर इमोशन के लिए गाना दे ही देता है। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और बारिश हो तो अलग प्लेलिस्ट, लॉन्ग ड्राइव हो तो अलग, हार्ट ब्रेक के लिए अलग और सेलिब्रेशन के लिए अलग। और मज़े की बात तो ये है कि कभी कभी हम फीलिंग्स बाद में समझते हैं और बॉलीवुड पहले ही उसके लिए गाना बना चुका होता है। और इसीलिए कुछ सॉन्ग्स ना सिर्फ हिट नहीं होते, वो हमारी लाइफ के माइलस्टोन्स बन जाते हैं। चाहे फिर स्कूल फेयरवेल हो, पहली सैलरी हो, पहला प्यार हो, या फिर फैमिली रोड ट्रिप, हर मेमोरी के बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं एक बॉलीवुड सॉन्ग जरूर बज रहा होता है। तो दोस्तों, आज का सवाल बहुत ही आसान है। अगर आपकी लाइफ पर फिल्म बने तो उसका टाइटल ट्रैक कौन सा बॉलीवुड गाना होगा? DM ऑन इंस्टाट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और चलिए देखते हैं कि आज का अगला गाना किसकी कहानी का बैकग्राउंड म्यूजिक बनने वाला है। ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और आज हंगामा आ रहा है ट्रेन की छत से। जी हाँ, छैया छैया यार, ये गाना तो आप सबने सुना ही होगा। इसमें SRK है, मलाइका है और हवाएं हैं, स्वैग है, तो लगता है कि बस डांस करो और हिट हो जाओ। पर यार पर्दे के पीछे का सीन ना लिटरली बैलेंस का एग्जाम था। मलाइका जी ने बताया था कि ट्रेन के ऊपर हवा इतनी ज्यादा तेज थी कि कभी वो दाएं कभी बाएं तरफ स्वे कर रही थी, तो टीम ने ना उन्हें रोप से ट्रेन के साथ टाई कर दिया था ताकि सिंक भी रहे और सेफ्टी भी। और जब वो रोप निकाला गया, वेस्ट पे ना उनके काफी सारे कट्स आ गए थे और सेट पे सब परेशान हो गए थे, सारे पैनिक मोड में आ गए थे कि यार मलाइका जी ठीक तो है ना। मतलब सोचिए, ट्रेन के ऊपर छैया छैया करना इतना आसान भी नहीं था। तो समझे दोस्तों, बॉलीवुड में ना हिट सॉन्ग कभी कभी पहले सर्वाइवल सॉन्ग बन जाता है और बाद में हिट बन जाता है। ऐसे ही पर्दे के पीछे के सॉलिड बॉलीवुड किससे चाहिए तो जरूर बताना। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Nechi. Buscabana, buscabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. La vieja la burga.
1: Nechi, burga. हेलो
2: मिल गया मैडम, आप मयूर विहार में हमारा रक्षा पे बैठ के मयूर विहार फेज वन से फेज टू गई थी, याद है आपका?
1: नहीं, नंबर कहाँ से मिल गया?
2: वही आपको बता रहे हैं, आप जब उतर के गई है ना अपने घर, और घर के जो आपके पड़ोसी हैं, हम उनसे नंबर आपका लिए हैं, मोबाइल नंबर जो आप बोले हैं दाएं को मुड़ने के लिए, जब दाएं मुड़े हैं ना हम, मैडम आपका रास्ते में फोन भी आया था, जब आपका फुनुआ बजा है तो आपकी आवाज सुने हैं हम, बहुत अच्छा लगा है आवाज सुन के। आप जब रिक्शा पे बैठी है ना, मैं हम कसम खा रहे हैं, हम जब से आप बैठे हो उस सीट को हम छूने भी नहीं दिए, हम धोलाए भी नहीं है।
1: क्या तुझे पागल लगता
2: नहीं वो? मैडम हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे।
1: क्या कहना है?
2: मैडम आई लव यू, हम आपको देख के इतना
3: मेरी बात है। अच्छा चारू, चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना, चारू चारू चलो। हेलो हेलो हेलो हेलो चारू, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे किसी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने मुझे बताया कि तुमने रिक्शा पे ट्रैवल किया था, रिक्शा पे बैठ के गई थी, मैंने तो मजाक किया, तुम्हारा मुर्गा बना दिया। आई लव यू बट मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ यार, आई लव यू, मैं रिक्शा नहीं चलाता हूँ। चारू प्लीज बुरा मत मान यार, थोड़ा सा नहीं, रिक्शा मैं चलाने को तैयार हूँ यार तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम प्लीज जरा थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो, मेरे साथ प्यार से हंस के बोल दो।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: यार इस वीकेंड कोई जबरदस्त प्लान बताना।
8: अरे मेरा बच्चा है तू, चल तुझे हंसी की फुल डोज दिलवाता हूँ यार।
9: प्रयोग थिएटर ग्रुप के 50th फेस्टिवल में धुरंधर फेम राकेश बेदी और अनंत महादेवन का प्ले लास्ट ओवर, और साथ में कलरफुल नौटंकी आला अवसर भी है।
10: संडे सितंबर 27th 4 PM जोएन मजेस्ट्रो परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर ईस्ट ब्रंसविक, बुक योर सीट्स एट प्रयोगथिएटर.com।
11: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर, बाय नाउ एंड पे लेटर। आरके ज्वेल्स,
12: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस,
13: कंडीशंस अप्लाई।
14: जय गुरुदेव, अवसर आवी ने उभो छा आंगणे, चलो भेगा मड़ी गणेश जी ना आगमन नी तैयारी करिए। आपने गायत्री चेतना सेंटर ना गणेश उत्सव मा जोड़ायो, जेमा
15: 13 सितंबर रविवार
14: सांजे 4 वागे थशे गणेश स्थापना, अने सांजे 7 वागे थशे गणेश आरती, अने 20 सितंबर सांजे 4 वागे विसर्जन। वधु माहिती माटे कॉल गायत्री चेतना सेंटर, विस्काटवे ऑन 732-357-8200। जय गुरुदेव।
16: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
17: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
16: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
17: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन।
18: मोदक से लेकर लड्डू तक इस गणेश चतुर्थी हर स्वीट और स्वीट विशेस का भोग चढ़ेगा सिर्फ राजभोग के यहाँ से। राजभोग विशेस यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी। ऑर्डर्स ऑन राजभोग.com और विजिट योर लोकल ग्रोसरी स्टोर।
19: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
0: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
19: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
9: Tera kya hoga, Kalia?
5: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
9: Ab, mirchi kha.
7: Radio Mirchi, it's hot.
3: Sham Shardar, let's do not donkey, have a funky time.
16: बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शादा लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और आज हंगामा आ रहा है ग्रैंड हैवी इमोशन सॉन्ग के पीछे से। जी हां, हम सबका फेवरेट डोला रे डोला। यार जब आप डोला रे डोला देखते हो तो लगता है कि बस ग्रेस, रिदम और शान ही शान है, क्योंकि माधुरी और ऐश्वर्या का डांस और प्योर पोइट्री है। पर पर्दे के पीछे एक सीन फुल पावर कंजम्पशन मोड में था। जी हाँ, ये गाना इतने बड़े सेट पर शूट हुआ था, इतनी ज़्यादा लाइटिंग और इतने जनरेटर्स के साथ, कि पूरी यूनिट मोस्टली रात को ही काम करती थी, और लाइट्स इतनी हैवी थी कि मुंबई के इवेंट वालों को जनरेटर्स मिलना मुश्किल हो गया था, क्योंकि देवदास के सेट ने ऑलमोस्ट सब कुछ बुक कर लिया था। मतलब देवदास का जो दर्द था ना, वो स्क्रीन पे तो चल ही रहा था, और जो भी शादी वाले लोग हैं उनका दर्द रियल ग्राउंड में दिख रहा था क्योंकि जनरेटर्स ही नहीं मिल रहे थे। तो समझे दोस्तों, बॉलीवुड में ना जब इमोशंस बड़े होते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ब्लॉकबस्टर लेवल का होता है। ऐसे ही पर्दे के पीछे की फिल्मी हंगामे चाहिए तो जरूर बताना, टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल सुनते ये अगला हॉट सा गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स

0: prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: हेल्थकेयर में एक सक्सेसफुल करियर की तरफ आपके हर कदम पर एम्स कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज हमेशा आपके साथ है.
3: चूज करियर फोकस सर्टिफिकेट एंड डिग्री प्रोग्राम्स इन एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, कार्डियोवैस्कुलर, न्यूरोडायग्नोस्टिक, एनेस्थीजिया, सर्जिकल टेक्नोलॉजी और मेनी मोर विद हैंड्स ऑन क्लिनिकल एक्सपीरियंस.
2: एम्स एजुकेशन इज नाउ वेलकमिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड ऑफरिंग I-20 टू एलिजिबल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स परस्यूइंग एन F-1 स्टूडेंट वीजा. विजिट aimseducation.edu. योर हेल्थकेयर फ्यूचर स्टार्ट्स विद एम्स.
4: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए. आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर. बाय नाउ एंड पे लेटर. आरके ज्वेल्स,
3: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
5: कंडीशंस अप्लाई.
6: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
7: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
6: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
7: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
6: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन.
8: फेमस इंडियन एस्ट्रोलॉजर Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
9: क्या आपको हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकेयर या गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स को लेकर कोई सवाल है? तो यूनाइटेड हेल्थकेयर प्राउडली अनाउंस करता है हमारा नया एडिसन एशियन रिसोर्स सेंटर की ओपनिंग.
10: ये सेंटर कन्वीनियंटली लोकेटेड है 561 US Highway 1 एडिसन विक शॉपिंग मॉल के अंदर.
9: यहाँ आपको अपने हेल्थ केयर बेनिफिट्स और कवरेज ऑप्शंस समझने के लिए पर्सनलाइज सपोर्ट मिलेगा. हमारी प्रोफेशनल टीम आपको फ्री कंसल्टेशन देगी ताकि आप मेडिकेयर, इंडिविजुअल और फैमिली हेल्थ प्लान्स और गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स को बेहतर समझ सके. तो आज ही विजिट कीजिए एडिसन एशियन रिसोर्स सेंटर.
11: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
12: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
11: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
13: Batting to kafi sare karte hain. Virat, ek hi hota hai.
14: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
13: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
15: Isse apni jeb mein rakh le Peter. अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
13: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
16: एक ही होता है.
13: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची. बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.
17: Sham Shardar, let's do Nautanki, have a funky time.
18: बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा. शाम शाम द लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि. और आज का हंगामा आ रहा है धूम थ्री के मलंग गाने से. जी हाँ दोस्तों, स्क्रीन पर कैटरीना कैफ का एरियल एक्ट यानी जितने भी सर्कस स्टाइल परफॉर्मेंसेस थे, फ्लिप्स थे, बैलेंस थे, ग्रेस था, सब कुछ एकदम परफेक्ट. लेकिन पर्दे के पीछे इस गाने के लिए ना एक फुल ऑन ट्रेनिंग प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड था, क्योंकि कैटरीना ने इस गाने के लिए प्रोफेशनल एक्रोबैटिक ट्रेनिंग ली थी, बॉडी कंडीशनिंग की थी और मंथ्स तक रिहर्सल किए थे, क्योंकि ये कोई रेगुलर बॉलीवुड डांस नहीं था. इसमें स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और टाइमिंग सब कुछ एक साथ चाहिए था. और शूट के टाइम पर भी ना सेफ्टी और प्रिसीजन का पूरा ध्यान रखा गया था. तो सोचिए दोस्तों, जो परफॉर्मेंस हम बस 3 मिनट के लिए पर्दे पर देखते हैं उसके पीछे महीनों के जिम और ट्रेनिंग छुपी होती है. तो इसका मतलब तो साफ है कि बॉलीवुड में ना कभी कभी सिर्फ डांस ही नहीं, फुल एथलीट बनना पड़ता है. और शायद इसीलिए कहते हैं बॉलीवुड का डांस नहीं है आसान. तो चलिए सुनते हैं धूम थ्री का मलंग गाना राइट हियर ऑन मिर्ची. वैसे आप भी मुझे बता सकते हो कि कौन से गाने के पर्दे के पीछे के किस्से आपको सुनने हैं. टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI. और तब तक के लिए आपके लिए अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई। यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बात देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपने अपनी कालीन अब चद्दर बिछा कर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खून रेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है, कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ये भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक ऑल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो हैं, ये का भौकाल मचाए मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां भूलना मत, हमार रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमार कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3.5 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @ मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
0: मिर्ची साथ जीतूराज। ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
5: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
4: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
5: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Izzelin।
6: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए। आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर, बाय नाउ एंड पे लेटर। आरके ज्वेल्स,
7: बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
8: कंडीशंस अप्लाई। मोदक से लेकर लड्डू तक इस गणेश चतुर्थी हर स्वीट और स्वीट विशेष का भोग चढ़ेगा सिर्फ राजभोग के यहाँ से। राजभोग विशेष यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी। ऑर्डर्स ऑन राजभोग.com और विजिट योर लोकल ग्रोसरी स्टोर।
9: This September 12th and 13th, join us at the Indo-American Community Fair at Shri Krishna Mandir, Morganville.
10: Enjoy delicious Indian food, shopping, live cultural performances, a health fair, kids activities and much more. Morning 10 a.m. to 7 p.m.
11: For vendors and information, visit www.krishnatemple.org.
12: Listener mein back to back gana sunega.
13: Back to back gana sunega.
14: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
15: Sham Shandar, let's do not donkey, have a funky time.
16: गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक दोस्तों। चलिए 8 बजने वाले हैं, इसका मतलब मेरा वीकेंड शुरू होने वाला है और इट्स टाइम फॉर मी टू से गुड बाय, टाटा, सायोनारा टू यू गाइस। लेकिन आप कहीं ना जाइए क्योंकि आपकी पार्टी यहीं पर शुरू हो सकती है। जी हाँ, क्लब मिर्ची शो आ रहा है, तो बस डीजे की जरूरत ही नहीं है, गाने यहीं पे बजाइए और अपनी पार्टी शुरू कीजिए राइट हियर ऑन मिर्ची। शाम शादा लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, दिस इज मिर्ची सिद्धि साइनिंग ऑफ।

हेलो पीपल, वेलकम टू क्लब मिर्ची। वीकेंड आ गया और वीकेंड का मतलब प्लान्स। अब किसी के प्लान्स में गोवा है, किसी के प्लान्स में नाइट क्लब, और कुछ लोग हैं जो सिर्फ वीकेंड पे क्लब मिर्ची सुनते हैं विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका। क्योंकि वीकेंड के लिए भाई क्राउड जरूरी नहीं, थोड़ा म्यूजिक, थोड़ी मूड और जीरो रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर अ फ्यू आवर्स बस। So let's start this episode with our favorite Ek Din Teri Raho Mein. Let's go!